0: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड डेढ़ साल बीएड अढ़ाई साल जो दाखिलाऊं शुरू थी वयूं आहिन जेकॾहिं तव्हां जो ख्वाब उस्ताद बनजण आहे त ही बेहतरीन मौको हथनि मां न वञायो हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमी शोबे सां लागापियल केतिरनि ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स हाई स्पीड वाई फाई तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी मयारी तालीमी माहौल ख़ासि ऑफर महदूद वक़्त लाइ आहे तंहिं करे अॼु ई राब्तो करियो ऑनलाइन अप्लाई लाइ forwardcollege.pk वधीक ॼाण लाइ 03042827274 ऑफिस टाइम सुबुह 9 to 5 ताईं एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं वापरा कॉलोनी खैरपुर अॼु ई दाख़िला वठो पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बणजण पहिरियों कदम वधायो।

0: موجود آهن فوجي بائرن لاء خصوصي رعايت هندي رابطي لاء فوجي عبد الكريم 0301-54-456 توقير احمد 0306-16-23-793
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर 0300-338-5569।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट यू बाय
3: बैंक इस्लामी लाया, पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग।
4: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जैमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाए 0320180003।

0: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर आई जानवरन जे डॉक्टर खां नालो वठी खरीद करियो।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385699।

0: मेहराबपुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुशखबरी, पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज़ जे खर्च खां बचो। A1 ऑटोज पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहराबपुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीद करियो। स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे। उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 ऑटोज थरी रोड मेहराबपुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक रिक्शा, पेट्रोल लोडर, रक्षा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि। राब्ते लाइ मलिक खुशी मोहम्मद 0302-3295894 ऐं फेस मोहम्मद पहियार 0300-311-8956। A1 ऑटोस मेहराबपुर, नालो आहे एतमाद जो।
1: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ 2 मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन 2 ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है। हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के 2 कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
2: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया दा वधन था, पर पोलियो इन्हन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ऐं पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो खां बचाव जा 2 कतरा ज़रूर पीआरियो, छो त ये कतरा ॿारनि में मुदाफ़ती ताक़त खे वधाइनि था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾाम ॾियनि था। पोलियो मतलब ज़िंदगी भर जी माज़ूरी।

खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर

0: पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वहण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-96-898।
1: छा अव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी? हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम। अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक। रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो ख़ूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ख़ूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: बैंक इस्लामी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग।
4: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
5: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है। हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
6: नूरे जा पीओ रेडियो ते चारे मसाले जो बुधाइन पया, भला इहो त बुध ऐं वठी अच।
7: जीजा ढोर चारो मसालो हाज़मेदार, वधाए खीर ऐं गोश्त जी पैदावार। 50 सालनि खां आज़मायल सखर वारनि जो जीजा ढोर चारो मसालो हर पंसार ऐं जानवरनि जे डॉक्टरनि खां नालो वठी तलब कंदा।
8: हा भाग भरी चङो थो लॻे, मां हाणे ई थो वठी अचां।
9: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर ऐं जानवरनि जे डॉक्टर खां नालो वठी ख़रीद करियो।

0: सोच सोच हुंदियां ने हुण ते हैरानियां वे बाबला आ गईयां समझ।
1: हर साल तक की मुद्दत के साथ बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत व ज़वाबित
2: 642 आए 0315

0: अदा केड़ा आलन तबियत की आ खैर खैरियत दा प्रोग्राम सजो बुदो आ या हाने ट्यून के वाचड़ो
1: बाबा प्रोग्राम सजो बुदूंगा शुरू हुआ नई आउट्यू
0: अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह केड़ा आलन किया तो लगे प्रोग्राम
1: प्रोग्राम वीआईपी लगे तो अनी तमाम वरी के हर बोली में गलाए गायो ये मेरा तो
0: सिंधी बोली प्यारी बोली सिंधी बोली प्यारी बोली सिंधी बोली दिल वारी बोली यार बस इन के छे दे तू है मां के बुदाय था जेको आलू हुंदो आलू ना जो जेको चाचे जो पुटरा हो केड़ी सब्जी आ
1: चाचे पुटरा केड़ी सब्जी आ को मुझे समझ में तो
0: कोशिश कर ना यार केतरी सब्जी टमाटो ना जो चाचे जो पुटरा हलो है तां जो सवाल जो जवाब मां सान लिखिया तो अगर तां जो सवाल जो जवाब सही हुंदो त पो मां के 100 जो इजी लोड कराएं जो ठीक आला अच्छा कातों ता गाला है केड़े शहर में
1: बाबा गो थाजी गुलाम कासकेली लगी झंडो मरी मना उता का कुर्बान अली कासकेली मना डिस्ट्रिक्ट मना थेरी है सर मीरपुर खास
0: अच्छा मीरपुर खास जबरदस्त यार जबरदस्त थैंक यू सो मच अदा ता असान के कॉल की असान जो प्रोग्राम 11 बजे ताई तो जरूर बुझ जो ठीक है ना
1: ठीक है आला कर दो ना यो कल नेक्स्ट कलाम जी को लाइन
0: जी जी जी जी थैंक यू सो मच ऑल और मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे ट्रैक आप लोगों को सुनाऊं कि आप हैरान हो जाएं अजीज दी मेरी राजी बड़ी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने तुझे मुझसे हटाने की साजिश की है तुम तमाशा समझते हो
2: जो हमने कही
0: तुम तमाशा समझते हो खुदा राव वो जिंदगी हमारी जो तुमने कभी की ही नहीं मुझे वो मोहब्बत है तुमसे।

0: जल्दी ले लेते हैं कॉल और बातें करते हैं बहुत सारी, क्योंकि फिर वो कॉलर जो है मुझसे नाराज हो जाते हैं, खफा हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अदा
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से हमारे साथ? मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे हमदम, मेरे बंधु।
1: माशाल्लाह माशाल्लाह सर, मैं हूँ मीरपुर खास।
0: अच्छा, मीरपुर खास से मेरा दोस्त मुझे सुन रहा है। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं?
1: अल्लाह पाक का शुक्र है सर।
0: अच्छा, क्या कहना चाहेंगे जनाब? आज पहली दफा मुझे सुन रहे हैं?
1: जी जी।
0: अच्छा, तो कैसा लग रहा है? मेरी बुरी सी आवाज आपको कैसे लग रही है?
1: नहीं नहीं, आपकी बुरी नहीं, आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छी और आपकी कंपनी तो बहुत अच्छी।
0: अच्छा अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। क्या कहना चाहेंगे? आज आज आज का सवाल सुना था आपने?
1: जी जी, मैंने सुबह से सुन रहा हूँ। वो सब्जी के ना आलू का कदम, वो एक मेरे ख्याल में टमाटर या गोभी है।
0: टमाटर है, एक मिनट में लिख लेता हूँ, टमाटर या गोभी। आपका नाम क्या है?
1: रंजन।
0: रंजन, अच्छा रंजन, इंशाल्लाह मैं आखिर में बताऊंगा कि जो आलू का कजन होता है वो कौन सी सब्जी होती है। ठीक है
1: जी जी, कुछ दोस्त हैं
0: शामिल कर लें जल्दी जल्दी से, टाइम कम है, जल्दी करा।
1: जी जी, पहले तो आप आपके अली मुनवर, आपके मुस्तफा और जूनी के बरादरी, पूरी बरादरी, लाखा बरादरी।
0: ओके जनाब, ओके, बहुत ज्यादा शुक्रिया।

अच्छा बिल्कुल जनाब, थोड़ा सा बिल्कुल कमर्शियल ब्रेक में जो है 2 मिनट है, लेकिन कमर्शियल ब्रेक की जाने भी बढ़ेंगे। अच्छा इसके बाद आप लोग न्यूज़ भी सुनते हैं, न्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। न्यूज़ के बाद फिर छोटा सा कमर्शियल ब्रेक होता है, फिर हाजिर होऊंगा। और आपको पता है मैं आपका दिमाग खाने 2 घंटे के लिए आता हूँ, तो डोंट केयर। इंशाल्लाह मैं अभी चलूंगा न्यूज़ की जानिब, न्यूज़ की जानिब बढ़ेंगे, फिर आएंगे आपके लिए। कहीं भी नहीं जाएगा, मेरा साथ दीजिएगा। मुझे कहते हैं बूम बूम।

0: सचल की सरमस्त धरती,
1: फातिये मेहरान, सिंध की एक और पहचान,
0: GAFM 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: It's 10 a.m. This line check is brought to you by
3: D Skin Beauty Cream, असली ग्लो हर दिया जोशो, a product by Biocon International Pakistan.
4: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।

0: मार्च मुल्तवी करण जी दरख्वास्त कई। हाफिज नईम रहमान वजीर आजम के बुधायो त असां हुकूमत सां टकराव नथा चाहियूं, असां आवाम में हक़ लाइ निकिता आहियूं, हुकूमत खे उहो हक़ ॾियणो पवंदो। जेकॾहिं हुकूमत जी दरख़्वास्त ते मार्च मुल्तवी करे बि छॾियूं पर एतिजाज जे हक़ तां हथ न खणंदासीं। मार्च मुल्तवी करण जी दरख़्वास्त ते शूरा जे मशूरा बदि रद अमल ॾींदासीं। इस्लामाबाद जा 24 तइलीमी इदारा अॼु खां बंदि करण जो चवण आहे। सरकारी स्कूलनि में इज़ाफ़ी पुलिस नफ़री खे तरसाइण जा इंतज़ाम कया विया आहिनि। इस्लाम मामूल मूजिब रवां दवां आहे। रस्तनि ते कंटेनर मौजूद आहिनि। सिक्योरिटी ख़दशनि सां रेड ज़ोन खे सील कयो वियो आहे। ॿिए तरफ़ रावलपिंडी में तइलीमी इदारा मामूल मूजिब खुलियल आहिनि। जमायत इस्लामी जो पेट्रोल एम लेवी ख़िलाफ़ इस्लामाबाद तरफ़ निकितल ट्रेन मार्च मुल्तान पहुची वियो। मार्च में शरीक कारकुन अॼु राति मुल्तान में तरसण बि सुबुह जो इस्लामाबाद रवाना थींदा। जमायत इस्लामी जे अमीर हाफिज़ नईम रहमान चयो आहे त पहिरियों मरहलो गुज़री वियो, हू ॿिए मरहले में दाख़िल थी चुका आहिनि। बलोचिस्तान जे जबलनि ऐं मैदाननि मां बि मार्च शुरू थी चुको आहे। रुगो हिकु ई मुतालबो आहे त लेवी भतो ख़तम करियो। तेहरान जे दौरे ते पहुतल वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जी ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान सां मुलाक़ात। इलाइक़ाई ऐं आलमी सूरतहाल ते ख़्यालनि जी ॾे वठि। ईरानी सदर पाकिस्तान ऐं ईरान विच में राब्ता वधाइण ते ज़ोर भरींदे चयो आहे त पाकिस्तान ऐं ईरान गॾियल सरकार खे सभिनी शोबनि में वधी सघनि था।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड 1.5 साल ऐं बीएड 2.5 साल जूं दाख़िलाऊं शुरू थी वियूं आहिनि। मुंहिंजो ख़्वाबु

0: अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बणजण।
1: हर ॿार जा नंढड़ा कदम हिकु नई दुनिया ॾांहुं वधनि था, पर पोलियो इन्हनि कदमनि खे रोके बि सघे थो। इन्हीअ करे जॾहिं बि पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करनि जी दस्तक थिए त दर खोलियो ऐं पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो खां बचाव जा ॿ कतरा ज़रूर पीआरियो, छो त इहे कतरा ॿारनि में मुदाफ़ती ताक़त खे वधाइनि था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾाम ॾियनि था। पोलियो मतलब
2: इरशाद आठोस।

एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिये थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाए 03201800003।

0: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385569।
1: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए, और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार, मेहरापुर। 03000 3105109 03005109।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा?
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
2: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी।
5: 03013992836।
4: मोहम्मद उमेर गोरी 03119 15।

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चूप पर एतमाद अइमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ते जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-3592120
1: खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
2: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM
3: 94
4: पाकिस्तान जे पाकिस्तान जे तमाम चैनल ते कम कयो आ ठीक आ दा पिशावर कम कयो मां इस्लामाबाद कम कयो बस छड़ो कम कयो मां
3: सही अला कंदो तांजो प्यारो आवाज आ त मानु तांके घुरांदा न प्यारो
4: आवाज गाल हाने समझो जोरी घुराइंदा ते यार हाने छो न ईंदा से मोहब्बत आ हर के सा मोहब्बत आ सा जी त पो ईंदा हूं ना दा ठीक आ ना दा
3: बिल्कुल
4: साईं बिल्कुल तबियत सही आ
3: सब खैर लगो प्याला जो असा ने गर्मी दाडी लगी पे आ घोटकी में
4: हाय हाय हाने छा के एसी वठी दियां तो के
3: बस पको भी हले तो बस मा जान पांच प्रोग्राम बुझी ठा
4: पको भी तो टंग टंग करे तो ना अच्छा ए बुदाय दा आलू जो कजन जेको आ चाचे जो पुट केड़ो आलू जो
3: बस आलू दी गाल न कर बस आलू मारे छड़ियो
4: मन आलू खाई खाई तबा थियो सफा निकरो ही ना असा सिंधी कौम इन में नी निकरे
3: दोस्त शामिल कराने
4: हल जल्दी कर बा
3: यार दोस्त अलादर मार मोहम्मद अली खान पठान खान पटके अब्दुल्ला बंगवार गोरा बंगवार पोपट पिता की मोर सभी
4: अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज अल्लाह दिस इज बंगवार आए है।

0: बिल्कुल जनाब, बहुत ज्यादा शुक्रिया। महवेश हमें सुन रही है कराची से हमें महवेश सुन रही है, कहते हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा है आपकी तरह प्रोग्राम, आप आई लव दिस प्रोग्राम, बहुत ज्यादा शुक्रिया महवेश। और सरदार हमें सुन रहे हैं, सरदार भाई कह रहे हैं कि प्रोग्राम बहुत अच्छा है। उज़ैफा खान हमें पिशावर से सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच, कहते हैं कि जबरदस्त प्रोग्राम है। उसामा हमें सुन रहे हैं पिशावर से, थैंक यू सो मच। सईद भाई हमें सुन रहे हैं सखर से, थैंक यू सो मच सईद भाई, बहुत ज्यादा शुक्रिया। जान सैद खान हमें सुन रहे हैं पिशावर से, थैंक यू सो मच। और उसके साथ इनायतुल्लाह हमें सुन रहे हैं, इनायतुल्लाह मंगी साहब हमें सुन रहे हैं सखर से, कहते हैं प्रोग्राम बहुत जबरदस्त है। माहीन हमें सुन रही है पिशावर से, माहीन बहुत ज्यादा शुक्रिया। रफीउल्ला हमें सुन रहे हैं बहुत ज्यादा शुक्रिया। ताबिश हमें सुन रहे हैं सखर से, कहते हैं सलाम से। और नदीम भाई हमें सुन रहे हैं, कहते हैं बहुत अच्छा। मुख्तियार भाई हमें सुन रहे हैं, मुख्तियारा हमें सुन रही है, थैंक यू सो मच। और उसके साथ साथ असमत काकर खान अभी सुन रहे हैं, पुलिस वाला मेरा दोस्त है। और कहते हैं कि ज़ियारत खान मामा हमें सुन रहे हैं, बहुत ज्यादा शुक्रिया। मुस्तकीम हमें सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच मुस्तकीम। सर नाप लूंगा अभी हमें सुन रहे है। अच्छा इनायत हमें सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच। और नाइला हमें सुन रही है, बहुत ज्यादा शुक्रिया। शगुफ्ता हमें सुन रही है, बहुत ज्यादा शुक्रिया। उमेरा हमें सुन रही है, शुक्रिया। मुबशर हमें सुन रही है, अफजाल खान सुमरू हमें सुन रहे हैं, बहुत ज्यादा। राबिल हमें सुन रहे हैं,
1: यार सही नहीं नाम ले, नहीं तो गुद्दी मारूंगा मैं तेरे को।
0: अच्छा गजाल हमें सुन रहे हैं, सबाउन हमें सुन रहे हैं, थैंक यू। हिदायत हमें सुन रहे, थैंक यू। और हिना हमें सुन रही है, बहुत ज्यादा शुक्रिया हिना। के साथ आयजा हमें सुन रही है, यूनिवर्सिटी में हमें सुन रहे हैं। वाओ क्या बात है, यूनिवर्सिटी पढ़ा करें, सुना मुझे ना सुना करें, पढ़ा करें, अपना अपने काम से काम रखा करें। खान बहादुर हमें सुन रहे, थैंक यू। बुशरा हमें सुन रही है, थैंक यू सो मच, बहुत ज्यादा शुक्रिया। बुशरा कैसी है, अपने खर्चे पे डैड के खर्चे पे। मेरे नजीर भाई हमें सुन रहे, थैंक यू सो मच। आरिफ सुमरो हमें सुन रहे, बहुत ज्यादा शुक्रिया। अवान खान हमें सुन रहे,
2: थक गया मैं जब सो गाँव दूर दूर तक, कोई बच्चा रोता और वो सोता नहीं, तो माँ कहती है बच्चा है मुन्ना है बबलू, चुप हो जा वरना बबलू बम बम आ जाएगा। अब बम बम आते हैं तो हमारे तूफान में बदल जाती हैं।

0: थैंक यू सो मच सवामिका, और उसके साथ साथ बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, लेते हैं कॉल, देखते हैं हमारे कॉल। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: अदा क्या कहता
1: हूँ सर, मैं
0: अदा खैर, तबीयत सही है?
1: खैर नहीं
0: प्रोग्राम जी जी, थैंक यू सो मच। फर्स्ट टाइम असांगे बुधो ता ता
1: जी सही, पहले तो
0: पहले दफा किया लगे तो ता के मांजी आवाज किया लगे थी
1: प्रोग्राम सही मां फुटो
0: दा दा दा दा जी
1: प्रोग्राम तमाम
0: तमाम सुठो आ ता के सुठो तो लगे
1: जी सही।
0: अच्छा वडी मेहरबानी, वडी मेहरबानी। मुजो नालो छाय
1: सही आज प्रोग्राम तो ना
0: तुंजो नालो छाय
1: निसार मां पिताजी
0: निसार अहमद पताफी ता ना खबर है तां जे गोठ में आया हुआ मां ते दावत खाई वयो आ तां जे पताफियन जे गोठ में
1: अला काते भाई
0: यार है तां जो सरदार होयो कड़ो
1: मंतज
0: हां यार गुड गुड गुड गुड गुड गुड बिल्कुल बड़ी टेबल है तो शुरू थी वो खत्म न पई दोस्त भी बीठा होया मां छे यारणे में छा क्या मां के वठी विया साण गाड़ी में पो गाड़ी में छडी विया मां उन टाइम 90 घोटकी ते हुंदो याद याद आ तां के दोस्तन के भी शामिल करे वटे आलू जो कजन केड़ो सब्जी में केड़ो आ है चाचे जो पुट वांगण न जो कजन आ चाचे जो पुट आ
1: मता नहीं हुजे
0: मता हुजे मतलब
1: जी मता
0: मता मता मता ठीक आ ठीक आ दा बे खैर लगो पियो आ
1: खैर सही
0: हाल छुट्टी कराने ठीक आ
1: जी सही
0: अल्लाह हाफिज
2: फासलों पे यकीन क्यों बहुत है हमें दूर रहे।
0: अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। चलो टाटा बाय बाय कह देते हैं और क्या कहने रहे भाई, बात किया करें बात किया करें। मुझसे हर कोई वैसे बात नहीं कर सकता लेकिन कर लिया करें ठीक है ना। मैं असल में ये नहीं कि मुझसे बात करनी से मैं डरावना हूँ थोड़ा दिखने में।
3: यार डरावना तो तू मुझे कहता है, अपने आप को नहीं कहा कर यार।
0: अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम।
4: अस्सलामुअलैकुम।
0: दा वालेकुम अस्सलाम। केयर कहता हूँ बाबा सुठो लगो आवाज सही लगो मुझो चाहो प्रोग्राम के हवाले से जुमेरात जो भी बुद्धो मंगल जे दी भी बुद्धो अज जो जेको डी आ रात जो इतवार इतवार जे दी भी इंदम ठीक है बाबा
4: अच्छा
0: ये से मतलब बंद करे तो मां के मैसेज तक कन्या है पो
4: जी
0: केड़ो एफएम बंद थे तो मां के बुदाए जाए बाबा
4: मोरो मोरो
0: मोरो बंद थे तो 10 बजे रात मां पुछा कंदो माओ ठीक आ
4: सही सही
0: हां वडी मेहरबानी बुद्धारो ठीक आ दा
4: सही सही दोस्तान है
0: दोस्तन के भी शामिल करे वटे आलू जो कजन केड़ो आ
4: टमाटो
0: हां यार बिल्कुल गलत सही आखिर में बुधाइंदम ठीक आ
4: सही सही
0: दोस्तन के शामिल करे वटे हां
4: आप गुलजार मुरो आप गुलाम मुस्तफा मुरो जा के बुधन दासन के सलाम
0: वालेकुम अस्सलाम।

0: Assalamu alaikum.
1: Waalaikum salaam.
0: Who is there?
1: Fine, sir. Kiralan.
0: Tick tock, zabardast. Naam batao. Care karta hu, Baba.
1: ਭਾਈ ਮੋਜਾ ਕੁਰਬਾਨ ਅਲੀ ਕਾਸਕੀ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗੋਠਾ ਜੀ ਗੁਲਾਮ ਕਾਸਕੀ ਲਈ ਤੇ ਗੰਡੋ ਮਰੀ
0: ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹਾਲਨ ਤਬੀਅਤ ਸਹੀ ਆ ਖੁਸ਼ ਲਗਾ ਪਿਆ
1: ਦੁਆ ਲਗੀ ਬਈ ਅੱਲਾ ਜਾਏ ਸਾਰਾ ਨਾ ਬਾਹਰ ਵੀ ਦੁਆ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਨਾ
0: ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਆਂ ਲਗੇ ਤੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
1: ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀਆਈਪੀ ਲਗੇ ਮਸਤ ਸਫਾ ਹਾਂ ਰਾਤ ਜੇ ਬਤਾ ਰੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਦਨਾ ਹੈ ਨਿਰਪਿਆ
0: ਜੀ ਜੀ ਵਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦਾ ਵਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬੁੱਧਾ ਕਰੋ ਠੀਕ ਆ
1: ਬਿਲਕੁਲ
0: आवाज ठीक आते है मां अक्सर एकड़ी गोली इंडिया हो खाई पोरी प्रोग्राम करनो आवाज सुठी निकरन दिया
1: वो गोली गेड़ी है वो आता के बता के
0: सब वो चाचा रब्बू वटुन दिया ओ दींदो आमा के
1: तू बडा रब्बू को क्यों ना डाडे रब्बू को क्यों ना गलाए तो चाचा मु फार्म गदाए को गलाए
0: अच्छा अच्छा रब्बू दादा रब्बू हेदे
2: यार मां इनन सा नगलाए न पोंबा घणो गलाए दान मां इतरो नगलाए सकदो हां गलाए गलाए गलाए सन सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम
1: तो हां सो लंदो तो आयो वलीलो
2: यार एड़ी गाली न कंदो कर सही आवाज कटदो कर
1: ओ बाबी बाबी आया डाए मरी हुई
2: ओ आज मासी फुल्लो तो साजी मरी हुई यार बस दुआ कर
0: मासी ना है ना मासी भाई हली हुई मुझे ख्याल है काडे हली हुई काल चुकर जी हुई

बिल्कुल जनाब, बहुत ज्यादा शुक्रिया तमाम का जिन्होंने ट्यून किया हुआ है. बिल्कुल GFM 88 नेटवर्क, तमाम का तमाम आठों नेटवर्क पे हमारा प्रोग्राम हो रहा है. बहुत ज्यादा शुक्रिया. और अगर कॉल करना चाहें 03 00 11 34 88.

0: मेहराबपुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुशखबरी पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज जे खर्च खां बचो A1 ऑटोस पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहराबपुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक खरीद करियो स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मैकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 ऑटोस थरी रोड मेहराबपुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक इलेक्ट्रिक रिक्शा पेट्रोल लोडर रिक्शा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि رابطے لائے ملک خوشی محمد 0302-3295-894 ایں فیس محمد پہیار 0300-311-8956 A1 آٹوز مہراپور نالو آہے اعتماد جو खुशखबरी क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं अब फिक्र छोड़िए शहर मेहराबपुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर 0300-338-5569
1: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहराबपुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर

0: पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियो ॿारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियर दस्तियाब आहिनि
1: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी
2: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-3204-372 ऐं 0242-460100
3: उम्मीद के दिए जलते हैं
4: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतीज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 0300-002724 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-3865-453
5: अस्सलाम वालेकुम अदा
6: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
5: न अदा
1: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
5: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
6: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
5: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
1: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर
6: राबते लाए हाकिम अली जिसकाणी
7: 0301-399-2836
1: आई मोहम्मद उमर गोरी 0319-1557-724
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

और क्योंकि खुशी का ताल्लुक शुक्र से होता है और शुक्र हम में होता नहीं है, तो इसीलिए सब कुछ होते हुए भी अगर हम शुक्र ना करें, आप लोगों की मैं देख चुका हूँ, बातें सुन चुका हूँ कि जितना भी उनके पास माल दौलत चीज़ें एक्स वाई जेड सब कुछ होते हुए भी वो शुक्र नहीं करते, इसलिए फिर वो खुश भी नहीं होता है। कहते हैं कि खुशी का ताल्लुक शुक्र से है, गाड़ी बंगला दौलत शोहरत, ठीक है ना, हमारी नाशुक्री जो है वो शुरू होती है तो फिर ख़त्म ही नहीं होती। अक्सर जब हम दूसरे लोगों को देखते हैं तो उनसे हम इंस्पायर हो जाते हैं और कहते हैं कि यार इसके पास तो सब कुछ है, इसके पास हर चीज़ है, और जो अपनी जो है वो अपनी तरफ वो बहुत बुरी निगाह से हम लोग देख रहे होते हैं। और जितना आप लोगों के पास देखें, बहुत सारे मैंने देखे लोग और आई कम अक्रॉस लॉट्स ऑफ पीपल इन माई लाइफ, और मैंने देखा कि गाड़ी बंगला पैसा सब कुछ होते हुए भी वो खुश नहीं है, शुक्र, तो वो शुक्र जो है जो करेगा उसे खुशी नसीब होती है, वो फिर खुश रहने लगता है मोहतरम सामी। और हमें हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि यही बहुत बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें जो आंखें, हमारी नाक, हमारा पूरा स्ट्रक्चर बहुत ज़बरदस्त बना रखा है, तो ये एक एक चीज़, एक एक आज़ा जो हमारी बना रखी है, इसका शुक्र अदा करना बहुत ही ज़रूरी है, और फिर देखें आपकी ज़िंदगी में खुशी होगी। बहुत सारे लोग होते हैं कि सब कुछ होते हुए वो कहते हैं कि नहीं यार ऐसा नहीं है, अब उसके पास ऐसा है, मेरे पास ऐसा नहीं है। स्पेशली फ़ीमेल जो है बेचारी वो महीने में जो है एक सूट लेती है, स्पेशली फ़ीमेल टीचर्स की मैं बात करूँगा, बेचारी जो प्राइवेट स्कूलों में होती है 3,000 उनकी तनख्वाह होती है, अगर ज्यादा बढ़ जाए तो 5 हो जाती है, ज्यादा बढ़ जाए तो फिर 6 हो जाती है, ठीक है ना, इससे ज्यादा नहीं होती। और अगर बहुत बड़े स्कूल हैं तो उसमें 10-12-15,000 तक होती है, तो उसमें बेचारी 2-4 सूट ही ले लेती है और फिर जो है वो टिक टिक टिक टिक टिक टिक करके घूम रही होती है स्कूल के अंदर। तू चांदनी मैं राग हूँ, तू रागिनी मैं फूल हूँ, तू खुशबू है मैं राजा, तू हीर है खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दो दीवाने। तो हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और अच्छी अकल, हाथ पांव सलामत है, यही बहुत बड़ी बात है कि सारी की सारी चीजें जो है इससे बहुत जबरदस्त है कि अल्लाह ताला ने हमें जो है ना हाथ पांव और इसके अलावा जो है हमारे सारे बॉडी स्ट्रक्चर बड़ा खूबसूरत बना रखा है, तो ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंटल ट्रैक है, उसके साथ साथ आप लोगों के लिए कुछ पोइट्री है मेरे पास, आई वुड लाइक टू डेडिकेट ऑल ऑफ यू।

अरे बाबा बहुत नादा है वो, बहुत नादा है वो, जरा समझाइए इसको, बहुत नादा है वो, जरा समझाइए इसको। बात करने से, बात ना करने से मोहब्बत भला कम तो नहीं होती। आपको जिससे मोहब्बत होती है आप उसे बात करें ना करें, मोहतरम सामीन मोहब्बत का सिलसिला जो है वो कम नहीं होता है, मेरी बात याद रखिएगा, बड़ा अपने दिल पे लिख लीजिएगा।

बहुत गहरे ख्यालों में, बहुत गहरे ख्यालों में, मोहब्बत के हवालों में तुम्हारा नाम आ जाता है, मुझे अच्छा सा लगता है। बहुत गहरे ख्यालों में, मोहब्बत के हवालों में तेरा नाम आ जाता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है।

कहता है कि अगर तू मुझे छोड़ता है तो इसमें तेरी खता क्या है, अगर तू मुझे छोड़ता है तो इसमें तेरी खता क्या है। हर शख्स मेरा साथ निभाता नहीं, हर शख्स मेरा साथ निभा भी नहीं सकता।

कहते हैं कि इसलिए तो जमाने में अजनबी हूँ मैं, इसलिए तो जमाने में अजनबी हूँ मैं कि फरिश्ते हैं सारे लोग, फरिश्ते हैं सारे लोग आदमी हूँ मैं। हाय हाय, बहुत ज्यादा शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और इसके साथ साथ इंस्ट्रूमेंटल चलाना है मुझे, लेकिन ये चल गया कुछ और, डोंट वरी अबाउट दैट। और ऐसा करते हैं कि आपको सुनवाते हैं एक अच्छा सा ट्रैक और कॉल लेते हैं। कॉल इतनी आ रही है कि बस क्या बताऊं कितनी आ रही है, इसलिए कहता हूं कि कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कॉल भी लेते हैं और मेरे पास एक अच्छा सा ट्रैक भी है, ट्रैक भी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम।

क्योंकि जनाब इस टाइम कमर्शियल ब्रेक का टाइम हुआ चाहता है और आपको पता है कि अगर ब्रेक ना हो तो हमारी जिंदगी में ब्रेक आ जाएगा. तो बहुत सारी चीजें आपको कमर्शियल ब्रेक में मिलती हैं. एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, ब्रेक के बाद मिलते हैं. कहीं भी नहीं जाएगा, मेरा साथ दीजिएगा.

वो कहते हैं यहाँ पर हुज़ैफ हाफिज गुलाम मोहम्मद शनबानी, हाफिज गुलाम मोहम्मद शनबानी ने एक जॉक भेजा है और कहता है कि एक बहुत मोटी औरत साइकिल पे सवार थी, एक बहुत मोटी औरत साइकिल पर सवार थी और ये गाना गा रही थी, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, और बच्चे ने कहा कि भाई, बच्चा उसको सामने से गुस्से में देखते हुए गुजरा और कहने लगा कि देखा है पहली बार हाथी साइकिल पे हाथी सवार। वाह जबरदस्त। अच्छा जी हाफिज साहब आपको बहुत ज्यादा शुक्रिया, और मायरा हमें सुन रही है बहुत ज्यादा शुक्रिया, और रुमैमा हमें सुन रही है बहुत ज्यादा शुक्रिया, काबिया खान हमें सुन रही है बहुत ज्यादा शुक्रिया, सुफियान हमें सुन रहे हैं, फियोल्ला हमें सुन रहे हैं, ताबिश हमें सुन रहे हैं, थैंक यू। हाय हाय इतने मैसेज है, अलनूर जनरल स्टोर वाले मेरे दोस्त सुन रहे हैं न्यू पेंट से, अता भाई थैंक यू सो मच, अता कैसे हैं, सलमान हमें सुन रहे हैं ज़बरदस्त, जैद खान हमें सुन रहे हैं, बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका, और मेरे पास इतने अच्छे अच्छे ट्रैक हैं कि क्या बताऊँ, कितने अच्छे अच्छे ट्रैक हैं, और ट्रैक जो भी मैं आप लोगों के लिए प्ले करता हूँ बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा जी आज का क्वेश्चन हमने आपसे ये पूछा था, क्योंकि अभी बंद कर देते हैं इसको, सिस्टम को चेंज कर देते हैं, क्योंकि छुट्टी भी करनी है, टाटा बाय बाय भी कहना है आप लोगों से, मुझे कहते हैं मुनव्वर शहजाद, और प्रोग्राम मंगल के दिन ये होता है सुबह, मंगल और जुमेरात को सुबह आता हूँ और संडे को फिर रात को देर

पर तो बेहतरीन सा ट्रैक है, चलें ट्रैक सुनते हैं, ट्रैक के बाद फिर आपसे छुट्टी भी चाहेंगे क्योंकि 11 बजने वाले हैं। बहुत ज़्यादा शुक्रिया तमामी का जिन्होंने मैसेज किए, जिन्होंने कॉल किए, जिन्होंने सिर्फ खामोशी से सुना, उन तमामी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इंशाल्लाह जुमेरात को सुबह में 9 बजे से लेकर ठीक 11 बजे तक वंस अगेन हाजिर होऊंगा जुमेरात को।

0: जानती नहीं हो सुदीप, तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। तुम जब साथ होती हो ना तो दिल करता है कि हर वक्त बस फूलों की बारिश होती रहे। हमेशा के लिए तुम्हें इस मोहब्बत के रिश्ते में कैद करना चाहता हूँ।
1: लेकिन मैं तुमसे नफरत करती हूँ।

0: जिते ढोर इंसान जी खुशहाली जो जरियो आहिन उते सुठी खुराक ढोरन जी जरूरत आहे।
1: जी जा ढोर चारो मसालो हाजमेदार वधाए खीर ऐं गोश्त जी पैदावार 50 सालन खां आज़मायल सखरवारन जो जी जा ढोर चारो मसालो हर पंसार ऐं जानवरन जे डॉक्टरन खां नालो वठी तलब कंदा।
2: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
3: सोनी, अज त ॾाढी खुश थी लॻे।
4: हा साईं, ॻाल्हि बि अहिड़ी ई आहे।
3: भला मूंखे बि ॿुधाए कहिड़ी ॻाल्हि आहे।
4: चाचे, जुम्मन जी खुशहाली जो राज़ ख़बर पियो आहे।
3: छा छा?
4: उहे पंहिंजे ढोरनि खे जी जान सखर चारो मसालो पिया खाराइनि। हीअ चारो ढोरनि जो हाज़मो दुरुस्त करे थो, ढोर सिहतमंद थियनि था, गोश्त सां गॾो गॾु खीर बि वधे थो।
3: वाह सोनी, वाह वाह जी ॻाल्हि ॿुधाई। पर किथे मिलंदो इहो जी जान सखर चारो मसालो?
4: साईं, रेडीअ ते था ॿुधाइनि, ॿुध ऐं अची वठी अच।
3: मां हाणे ई थो वञा त जीअं असीं बि खीर वधायूं ऐं नोट कमायूं।
4: हा साईं, हा।
5: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर ऐं जानवरन जे डॉक्टर खां नालो वठी ख़रीद करियो।
6: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज़ GAFM 94।

खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।

0: वठणी पवंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचणु शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज़ फॉलिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज़ हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-3592-120
2: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है अब जिम्मेदारी हम सब की है हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी
3: मेहरापुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुश खबरी पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज जे खर्च खां बचो A1 ऑटोज पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहरापुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक खरीद करियो स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 ऑटोज थरी रोड मेहरापुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक इलेक्ट्रिक रिक्शा पेट्रोल लोडर रक्षा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि राबते लाइ मलिक खुशी मोहम्मद 0302-3295894 ऐं फेस मोहम्मद पहियार 0300-311-8956 A1 ऑटोस मेहरापुर नालो आहे एतमाद जो

0: It's 11:45 AM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमाट अइमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-3592120
3: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था पर पोलियो इनन कदमन के रोके भी सके तो इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ए पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जब कतरा जरूर प्यारियो छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था ए इनन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी
4: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते खुशखबरी क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं अब फिकर छोड़िए शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-33-85-69 खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-33-85-69 खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-33-85-69
5: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94

0: It's 12 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: पारा कोर हेडक्वार्टर पिशावर जो दौरो हर वक्त चौकस रहने ऑपरेशनल तैयारी बरकरार रखने की हिदायत SPR मौजूद फील्ड मार्शल के KPK जी सिक्योरिटी सूरतयाल से ब्रीफिंग डेनी वही सूबे में जारी दहशतगर्दन खिलाफ ऑपरेशनल सरहदी इंतजामन फॉर्मेंस के ऑपरेशनल तैयारियों बाबत भी आगाह किया फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर शहीदन के कुर्बानियों के विसारे न तो सके फौज दहशतगर्दन के शिकस्त दियण मुल्क में जटादार अमुन के कयाम लाय पुरअज़म है पाकिस्तान सऊदी अरब तुर्किया मिस्री परदेही वजीरन के न्यूयॉर्क में मुलाकात खिते की सूरतयाल समेत मुख्तलिफ मामलों से गालू खिते की सूरतयाल अमन के कयाम बारे

0: कब्जा में रवानी जंग बंदीअ जी भञकड़ी थी रही आहे। तकरार जे निबेरे लाइ तकड़ा कदम ज़रूरी आहिनि। फलस्तीनी बाबति कमेटीअ खे ख़िताब कंदे नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार चयो आहे त अमेरिका, मिस्र, कतर ऐं तुर्किया जूं फलस्तीनी मसइले ते कोशिशूं सारा जोगियूं आहिनि। गज़ा समेत फलस्तीन जो मसइलो हल करणु घुर्जाउ आहे। वरी वज़ीर सैद मुराद अली शाह सां खुराक जे आलमी इदारे जे नुमाइंदे अनीता हर्ष जी मुलाक़ात। स्कूलनि में खाधे जी फरामी, अॻुवाट क़दमनि ऐं समाजी तहफ़ुज़ लाइ सहकार वधाइण ते ग़ौर कयो वियो। सिंध हुकूमत ऐं गॾियल क़ौमनि जे खुराक बाबति आलमी इदारे विच में सहकार वधाइण ते इतफ़ाक़। सैद मुराद अली शाह चयो त सिंध मौसमियाती तब्दीली सबबि सभ खां वधीक मुतासिर थींदड़ ख़ितनि में शामिल आहे। ग़िज़ाई कोड खे मुंहुं ॾे ऐं स्कूलनि में हाज़िर बहितर बणाए मज़बूत सिंध जो बुनियादु रखियो पियो वञे। टंडो गुलाम हैदर वेझो परणियल नारीअ जो घर मां फाओ लॻल लाश एतवारसनि जो सहुरनि ते क़तल करण जो इल्ज़ाम। घोट जियो कोली में रवीना ज़ाल केवल कोली जो घर मां लाश मिलियो। पीउ ऐं चाचे पारां मुड़ुस ऐं सहुरनि ते नारी खे तशद्दुद करे क़तल करण जो इल्ज़ाम। जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करण जो मुतालबो। कंबर जे इलाइक़े कुबो सैद खान भरिसां गुज़िरियल ॾींहुं क़तल कयल नौजवान जे धड़ खां धार कयल सिसी हथ। नौजवान मंज़ूर चांडियो जो गुज़िरियल ॾींहुं सिसी खां धार कयल लाश मिलियो हो। कंदकोट में सिंध जे इम्कानी विरांगे ख़िलाफ़ एसटीपी जे एहतजाजी रैली। कारकुननि एसटीपी आफ़िस खां प्रेस क्लब ताईं रैली कढी एहतजाज कयो। अॻवाड़नि चयो त सिंध धरती असांजी माउ आहे, सिंध खे टोड़ण वारी साज़िश पूरी थियण न ॾींदासीं। मदेजी में ॿ महीना अॻु क़तल थियल नौजवान जे खून जो जरगो ज़रिए निबेरो। इल्ज़ाम हेठि आयल धरती धुर ते 55 लख रुपया ॾंड मुक़रर। कुमारिया हाउस ते नजफ़ ख़ान जे सरपंचीअ हेठि ओशाक जखरो जे क़तल जो जिर्गो थियो। क़तल जे इल्ज़ाम हेठि आयल जुणे जा शहर ऐं मंगरिया बिरादरी जे जवाबदारनि मथां 55 लख रुपया ॾंड लागू कयो वियो। ओशाक जखरो जे खून जे बहाउ 25 लख रुपया ऐं नाक क़तल करण जा 25 लख रुपया चटी विधी वई। धुरियूं मक़तूल जे वारसनि ॾे मेड़ खणी वेंदियूं। ॾंड जी रक़म मिलण बाद मुतासिर धुर राज़ीनामो लिखी ॾींदी।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड 1.5 साल ऐं बीएड 2.5 साल जूं दाखिलाऊं शुरू थी वयूं आहिनि। जेकॾहिं तव्हांजो ख़्वाब उस्ताद बणजण आहे त ही बहितरीन मौक़ो हथनि मां न वञायो। हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमी शोबे सां लाॻापियल केतिरनि ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे। तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे टीचिंग केरियर खे मज़बूत बुनियादु ॾियो। सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे, तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था। असां वटि मौजूदु आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स, हाई स्पीड वाईफाई, तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी, मयारी तालीमी माहौल। ख़ासि ऑफर महदूद वक़्त लाइ आहे, तंहिं करे अॼु ई राब्तो करियो। ऑनलाइन अप्लाई लाइ forwardcollege.pk। वधीक ॼाण लाइ 0304-282-7274। ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं। एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी, ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं, वापडा कॉलोनी, खैरपुर। अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बण पहिरियों कदम वधायो। खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385569।

0: जी जान तारो मसालो हर वे जे पंसार स्टोर आई जानवरन जे डॉक्टर खां नालो वठी खरीद करियो।
1: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000 3105109 0300 3105109।
2: फौजी पाई फैक्ट्री नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर असा जगह जो डारियो जगह जा पावा पाइप डेढ़ 4-6-9-12 इंच में प्लेन कॉलम में मौजूद आहिन। फौजी बायरन लाए खुसूसी रियायत होंदी। राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
3: هر ماشوم ورکوټي ورکوټي قدمونه د یو نوي دنیا په لور روان وي، خو د پولیو رنز دا قدمونه درولې هم شي. نو په دې وجه د پولیو د هر مهم په محل د پولیو ټیم د دروازې ټکولو جواب ورکوي او خپل ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي 2 څاڅکي ورکول مه هیروئ، ځکه چې همدغه څاڅکي د ماشومانو د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزر مومي. پولیو یعنی مستقل معذوری.
0: ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شوروم مہراپر، ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ائی با اختیار ادارو، ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شوروم مہراپر، نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے۔ सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर, राबते जे लाए 0302018-00003।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
4: न अदा?
6: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
4: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
5: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
4: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
6: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
5: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
7: 0301-399-2836।
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे ला

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निचो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ दी स्किन ब्यूटी क्रीम इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन का शो
2: सोनी अज तो ढी खुश थी लगे
3: हाँ साईं गाल भी एड़ी आहे
2: भला मुख्य भी बुधाए केड़ी गाल आहे
3: चाचे जुम्मन जी खुशहाली जो राज खबर पयो आहे
2: छा छा
3: उहे पेंजे ढोरन के जी जान सखर चारो मसालो पिया खाराइन ही चारो ढोरन जो हाजमो दुरुस्त करे थो ढोर सेहतमंद थेन ता गोश्त सा गडो गड खीर भी वधे थो
2: वाह सोनी वाह वाह जी गाल बुधाई पर किथे मिलंदो यो जी जान सखर चारो मसालो
3: साईं रेडियो थे ता बुधाइन बुध अजी वठी अज
2: मां हाणे ही तो वञा त जी असी भी खीर वधायूं ऐं नोट कमायूं
3: हा साईं हा
4: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर ऐं जानवरनि जे डॉक्टर खां नालो वठी ख़रीद करियो
5: खुशखबरी क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं अब फिक्र छोड़िए शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
6: धर माशुम वरकोटी वरकोटी कदमुना देयो निवी दुनिया पलोर रवानवी खुद पोलियो रंज दा कदमुना उद्रवले हुमशी नुपदी वजह द पोलियो द हर मुहिम पमहाल द पोलियो टीम द दरवाजे टकोलो जवाब वरकवई اخپل ماشومانو تا د پولیو د مخنیوی 2 ساسکی ورکول مهیروی زکه چه هم دغه ساسکی د ماشومانو د بدن دفاعی طاقت زیاتوی او د هغې د خوبونو الوت وزر مومی پولیو یعنی مستقله مازوری
7: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 0300-002-7234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-3865-453
8: बहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
9: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
8: हाँ यचो बहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
9: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 0242460100
2: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है सुनते रहो जी एफ एम 94

0: It's 12:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islamani Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: This program is brought to you by
1: Bank Islamani Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
3: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है. सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है. अब जिम्मेदारी हम सब की है. हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं. पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी.
4: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज़ GAFM 94.

0: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
3: केपीकेजी सिक्योरिटी सूरत हाल से ब्रीफिंग दिनी वही सूबे में जारी दहशतगर्दन खिलाफ ऑपरेशनल सर्दी इंतजाम फॉर्मेट की ऑपरेशनल तैयारियों बाबत भी आगाह किया वो फील्ड मार्शल सरदार सिंह उन्हें चयो तो शहीदन की कुर्बानी के विसारे नथो समझे फौज दहशतगर्दन के शिकस्त दियण मुल्क में चटदार अमुन के क्याम लाय पुरजम आए पाकिस्तान सऊदी अरब तुर्किया ए मिस्री परदेही वजीर की न्यूयॉर्क में मुलाकात खिते की सूरत हाल समेत मुख्तलिफ मामलों से गालू खिते की सूरत हाल ए अमुन के क्याम वारी कोशिशों जारी रखने से इतफाक नायब वजीर आजम इसाकदार सऊदी ए लिबाई परदेही वजीर से अलग अलग मुलाकातों भी कई निजाम रवानी जंगबंदी की भनगड़ी थी रही है तकरार के निबेरे लाए तकड़ा कदम जरूरी है फलस्तीनी बाबत कमेटी के खिताब कदे नायब वजीर आजम इसाक डार है अमेरिका मसर कतर ए तुर्किया जो फलस्तीनी मसले ते कोशिशों सारा जोगियो गिजा समेत फलस्तीन जो मसलो हल घुर्जा हुआ है।

0: लालानी रोड मैरापुर असा वट जगह जो जा रही हूं जगह जा पावा आई पाइप डेढ़ ब चार छह नव आई बारह इंच में प्लेन आई कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बायरन लाए खसूसी रियायत होंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456
1: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे दाग धब्बे झुर्रियां और कील माह से फौरन कम करे इस्तेमाल का आसान तरीका रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम मिल्क राइज ब्यूटी सोप मिल्क राइज एक्नी क्रीम हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक शाही बाजार मेहरापुर 03000-3105-109
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाए 0320180003
3: खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03008569 खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03000-3385-69
4: अस्सलाम वालेकुम अदा
5: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न अदा
6: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
4: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
5: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
4: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
6: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
5: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
7: 03013992836
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94
7: हैदराबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डीज कैन ब्यूटी शो। बिल्कुल सुना प्रोग्राम आप लोगों तक नशर किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से, और यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो कि आपके खूबसूरती के लिए हैं जनाब लेकर हाजिर खिदमत हो चुके हैं। अगर आप भी हसीन बनना चाहते हैं, खूबसूरत बनना चाहते हैं, खूबसूरती की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं तो बिल्कुल सही जगह पर मौजूद है। यहाँ पर प्रोग्राम में आप लोगों को बताया जाता है कि आप किस तरह से अपने खूबसूरत से चेहरे को मजीद खूबसूरत बना सकते हो, किस तरह से उन खूबसूरतियों को मेंटेन भी रख सकते हैं, क्योंकि कई मरतबा हम जरा इन चीजों को लेकर भी परेशान हो जाते हैं कि भाई खूबसूरती तो चले हम जैसे तैसे हासिल ना कर ही लेते हैं, लेकिन खूबसूरती मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। या फिर आप ऐसा वाला सीन बन जाता है कि बहुत ज्यादा वाली टोटके यूज करने वाले इंसान बन चुके हैं, या फिर आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है लेकिन आपको ये लगता है कि भाई खूबसूरती तो हमें कैसे भी करके हासिल करनी चाहिए। तो खूबसूरती को हासिल करना और खूबसूरती को मेंटेन करना ये बहुत ही जरूरी सी बातें बन जाती है। तो ये जरूरी सी बातें इस प्रोग्राम में आप लोगों को पता चलेंगे कि कैसे आप जो है ना हासिल कर सकते हैं खूबसूरती और खूबसूरती को मेंटेन भी रख सकते हैं। इसी के साथ साथ डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों के साथ बातें होने वाली हैं, और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए जनाब बहुत ही कमाल के प्रोडक्ट्स लेकर हाजिर खिदमत है, जिनमें आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है और डी स्किन फेस वॉश मिल रहा है। तो ये दोनों प्रोडक्ट्स जो कि आपकी खूबसूरती के मुताबिक ही तैयार किए गए हैं, आप हर एक इंसान की स्किन से रिलेटेड ही जनाब ये प्रोडक्ट तैयार किए गए हैं, क्योंकि अगर आपकी स्किन सेंसिटिव हो, ऑयली हो, ड्राई हो, नॉर्मल हो, कॉम्बिनेशन टाइप हो, तो हर तरह से अगर आप अपनी स्किन को लेकर परेशान रहते हैं तो भैया आपकी परेशानियों को दूर किया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपकी खूबसूरती के लिए क्यों और कैसे जरूरी है। बिल्कुल जनाब बहुत ज्यादा वाली बातें हैं जो कि आप लोगों के साथ करनी है, लेकिन कहते ना कहते नहीं जल्दी क्या है, अभी तो हमने स्टार्ट किया है। तो बिल्कुल सर अपना भी तारीफ करवाते हैं, सो लिसनर्स फॉर रिसेंटिंग द मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर यू आर जे एंड योर डीजे सिद्रा मुस्कान, नाम तो सुना ही होगा। तो बिल्कुल आपकी सिद्रा के साथ मौजूद है जनाब इस ब्यूटीफुल से प्रोग्राम में आप लोगों को ब्यूटीफुल बनाने के लिए। चलिए जी यहाँ पर जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद है रेडी खेडी हो जाइए जरा खूबसूरती की दुनिया में कदम रखने के लिए और खूबसूरत बनने के लिए, और इसी के साथ साथ अपने हाल चाल बताते जाइए। सो डियर लिसनर्स अंत के हालत कैसे ही आपकी हालत उम्मीद है शदीदन की बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सुपकुल मूड के साथ सुपकुल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे। तो आपके जो इंतजार की घड़ियां थी ना वो खत्म हो चुकी है, फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मारी ली है। आपको पता है जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं, तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहने वाला है ठीक अब से लेकर पूरी पूरी 3 बजे तक, यानी कि 2 घंटे हमारे पास मौजूद होने वाले, और 2 घंटों में हम करेंगे आप लोगों के साथ इन्नी शाली बातें, और इन्नी शाली बातों में जाहिर सी बात है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का जिक्र तो होने ही वाला है। और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए भाई, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करें, कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें तो उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करें तो वो क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। और कई मरतबा अगर आप किसी की स्किन देखें जो कि खराब हो चुकी हो या फिर उसे जरूरत हो कोई अच्छा सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के, तो आप उसे झट से बता सकेंगे भाई आपकी स्किन को नीड है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स की, और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपकी स्किन के ऊपर किस तरह वर्क करते हैं इसके बारे में भी बातें की जाएंगी। यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए यानी कि फ्री होकर हमारा इंतजार कर रही थी, ऐसी बहुत सारी आंटियां अम्मियां खालाएं बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान, सभी अपने काम भी कीजिए हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुने लिए हैं तो जनाब अब जबरदस्ती गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए, आपके होंठों पर 440 उल्की सुमाल आने का काम करेगी भाई जान ये सिद्रा। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 उल्की सुमाल लाते हैं, यहाँ पर ऐसा करते हैं आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं, और आगे से प्रोग्राम करेंगे जनाब एक बहुत ही प्यारे से कलाम के साथ, तो बहुत ही खूबसूरत सा कलाम जो कि हमारी लिस्ट में मौजूद है। तो आइए जरा पहले सबसे पहले हम कलाम को सुन लेते हैं, कलाम सुनने के बाद हम जैसे ही वापस दोबारा आप लोगों के पास मुखातिब होते हैं तो बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में क्या होने वाला है। और आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, लगाते रहिए और खूबसूरतियाँ हासिल करते रहिए।

0: पथरी मसाने की पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे की खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301-9196-851।
1: जा पीउ रेडियो ते चारे मसाले जो बुधाइन पया भला इहो त बुध ऐं वठी अच
2: जीजा ढोर चारो मसालो हाजमेदार वधाए खीर ऐं गोश्त जी पैदावार 50 सालन खां आज़मायल सखरवारन जो जीजा ढोर चारो मसालो हर पंसार ऐं जानवरन जे डॉक्टरन खां नालो वठी तलब कंदा।
3: हा भाग भरी चंगो थो लगे मां हाणे ई थो वठी अचां।
4: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर ऐं जानवरन जे डॉक्टर खां नालो वठी खरीद करियो।
5: धर माशुम वरकोटी वरकोटी कदमुना दयो नवी दुनिया पलोर रवानवी خدا پولیو رنز دا قدمونو درولی همشی نو پدی وجا دا پولیو دا هر مهم پا محال دا پولیو تیم دا دروازی تکولو جواب ورکوی او خپل ماشومانو تا دا پولیو دا مخنیوی دو ساسکی ورکول ماهی روی زکه چه هم دا غساسکی دا ماشومانو دا بدن دفاعی تا کز زیادوی او دا حقی دا خوبون والوت وزاری مومی پولیو یعنی مستقل مازوری।
6: दुनिया के ज्यादातर मुमालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो मुमालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
7: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ। बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
8: जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडिएंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां, हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं, बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज़। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

तैयार किया है जो कि आपकी स्किन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं. तो जो आपकी स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं बिल्कुल उन्होंने मिलकर टी स्किन ब्यूटी क्रीम को तैयार किया गया है. तो इसका फार्मूला जो है ना वो मेडिकेटेड फार्मूला है. तो ये भी टेंशन दूर हो गई कि भाई आप अपनी सेंसिटिव स्किन के ऊपर लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे. तो हर स्किन के ऊपर आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप मर्द हजरात हैं चाहे आप खवातीन हैं. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कीजिए और हमेशा के लिए खूबसूरत हो जाइए. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में ये बात भी आप लोगों के साथ शेयर करती चलूं, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना ये 2-in-1 फार्मूला है. 2-in-1 फार्मूला मतलब ये कि भाई ये एक नाइट क्रीम तो है, बजाहिर नाइट क्रीम है, लेकिन इसका जो रिजल्ट आपको मिलेगा ना वो ऐसा मिलेगा जैसे आपने कोई महंगा सा फेशियल कराया हो, आपने कोई महंगी सी स्किन ट्रीटमेंट ले ली हो. क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर विटामिन ई बीट्स हैं, माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन है, अल्फा आर्बुटीन है, कॉजिक एसिड है, ग्लूटाथायोन है, ये तमाम चीजें ऐड की गई हैं जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम कुल मिलाकर आप लोगों की खूबसूरती में 4 चांद लगाने का काम करते हैं. और ये जो विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स का मैं जिक्र करती हूँ ना, इसका ये काम होता है कि भाई पूरे पाकिस्तान में आप जरा रिसर्च करेंगे या फिर आप जानेंगे ना, तो पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 2 से 3 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनके अंदर विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स ऐड किए गए हैं. और ये जो विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स होते हैं ना, इनका ये काम होता है कि भाई अगर आपने देखा होगा ना बहुत सी खवातीन जो कि महंगे महंगे फेशियल्स कराती हैं, तो उनको जो रिजल्ट्स मिलते हैं ना वो इसी वजह से मिलते हैं क्योंकि उनके जो फेशियल के अंदर विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन की एडिशन की गई होती है. तो अगर आप भी चाहते हैं कि भाई आपके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं कि आप महंगे से फेशियल कराएं, या फिर फेशियल कराने में टाइम भी बहुत ज्यादा लग जाता है, आप चाहते हैं बस कोई ऐसा सा प्रोडक्ट हमें बता दे जो हम लगाएं और हमें चुटकियों में निखार मिल जाए, तो बिल्कुल आपके लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम हाजिर खिदमत है जनाब. आपकी खूबसूरती में 4 चांद लगाने का काम करती है. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप हर टाइम लगा सकते हैं, यानी कि आप ऐसा है कि आप सारे स्किन के ऊपर इस्तेमाल करें, सारी स्किन के मतलब जो आपकी स्किन सेंसिटिव हो गई, कॉम्बिनेशन टाइप हो गई, ऑयली हो गई, ड्राई हो गई, नॉर्मल हो गई, तो हर स्किन के ऊपर आप आराम से डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर सकते हैं. और डी स्किन का यूज करने के फौरन बाद ही जो है ना आप लोगों को रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि सिर्फ 2 रातों के इस्तेमाल से आपको अच्छे खासे रिजल्ट्स मिल जाते हैं. तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको अच्छा सा रिजल्ट मिल जाए अच्छे से मुनासिब से पैसों के अंदर, तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज जरूर करके देखिएगा. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल जो है ना वो आप लोगों को जरूर बताऊंगी कि आपने कैसे करना है. लेकिन डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन का फेस वॉश भी मिल रहा है. तो अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज करें तो साथ में डी स्किन फेस वॉश तो लाजमी लीजिए, क्योंकि डी स्किन का जो फेस वॉश है ना ये भाई इतना कमाल का एक फेस वॉश तैयार किया गया है जिसके अंदर हाइलोरोनिक एसिड सीरम का जो है ना वो एडिशन की गई है. और हाइलोरोनिक सीरम एडम जो है ना इसके अंदर, तो उसका ये फायदा आपको मिलेगा कि भाई आपकी स्किन जो है वो हमेशा मॉइस्चराइज रहेगी, आपकी स्किन डीपली क्लीन रहेगी, आपकी स्किन जो है ना वो हमेशा ग्लो करती रहेगी. तो अगर आप भी कोई अच्छा सा फेस वॉश ढूंढ रहे हैं, कोई अच्छा सा फेस वॉश इस्तेमाल करने वाले हैं, तो डी स्किन फेस वॉश का यूज आप लोग जरूर करके देखिएगा. और डी स्किन का फेस वॉश जो है ना ये भाई आपकी खूबसूरती के लिए जो है ना वो बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा. आपकी स्किन के अंदर तक जाकर आपके चेहरे को निखारता है, आपके चेहरे की स्किन को मॉइस्चराइज रखता है. और आप अपनी डेली रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर डी स्किन का फेस वॉश एड कर लीजिए, मतलब समझ लीजिए कि आपकी जो आधी जिंदगी की प्रॉब्लम है ना स्किन से रिलेटेड वो सारी खत्म हो जाएंगी. क्योंकि आपके लिए इतना अच्छा प्रोडक्ट हमने तैयार किया है जो कि लगाते ही साथ ही आपकी खूबसूरती में आए हाय क्या ही इजाफा आ जाता है. और अगर आप चाहते हैं कि भाई हमारे करीबी जनरल स्टोर्स पर ये तमाम प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहे, हम क्या कर सकते हैं, कैसे अवेलेबल करा सकते हैं, कहां से जाकर परचेज कर सकते हैं, तो इसका हल भी हमारे पास मौजूद है. आपने कुछ ज्यादा नहीं करना, बस ऐसा कीजिए जो नंबर्स अभी आप लोगों को बताऊंगी ना उन नंबर्स के ऊपर रابطہ कीजिए. और रابطہ करने के फौरन बाद ही आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम हो या फिर डी स्किन फेस वॉश हो वो अवेलेबल करा दिए जाएंगे. तो डायल कीजिए 03-12-50-25-907 बुरी 312 50-25 970 एंड योर नंबर आहे 03-27-38-43-09 बुरी 332 73-84-309 ही नंबर साइन बाबा. अगर हिकड़ो बंद हो जे हिकड़ो रिसीव नथी ता बेते कॉल करे सगो था बेते मैसेज करे सगो था आई हिक न हिक त तमा के जरूर रिस्पांस दिंदो ही तमा उन के बुधायो त किथे किथे डी स्किन ब्यूटी क्रीम है किथे किथे डी स्किन जो फेस वॉश अवेलेबल अन्या ताई कोन थियो आहे त हु अवेलेबल कराए छडींदा.
ऐं तव्हांजे लाइ आसानी थी वेंदी। पोइ तव्हां वञो बसि उतां वठी ऐं आराम सां अचो, इस्तेमालु कयो ऐं पंहिंजे ख़ूबसूरती जो ख़्यालु रखो। तो चाहे आप मर्द हज़रात आहिनि, चाहे आप ख़वातीन आहिनि, हर कोई डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज़ कर सकता है और डी स्किन ब्यूटी क्रीम से फ़ायदा हासिल कर सकता है, क्योंकि भाई इतना कमाल का प्रोडक्ट जब आपके पास मौजूद है तो उसे हाथ से मत जाने दीजिए, इस्तेमाल करके देखिए, यकीनन आपको बहुत अच्छे वाले रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कीजिए, अपनी खूबसूरती का ख्याल रखिए और हमेशा के लिए हसीन बनते जाइए। और हमें बताइए कितने सारे लोग हैं जिन्होंने डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर लिया है और कहां कहां पर अभी अवेलेबल कराने बाकी है, ये भी आप मेरे साथ शेयर कीजिए। बाकी आप लोगों को वेलकम इन खुशामदीद कहा जाता है, आपकी मोहब्बत और समात और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। आप लोग पोस्ट को जरा लाइक और शेयर करते जाइए। और यहां पर आज मैंने आप लोगों से सवाल पूछ लिया प्रोग्राम के अंदर कि वो कौन सा जानवर है जो कोई आवाज नहीं निकाल सकता। हाँ जी बिल्कुल, आपने सही सुना, वो कौन सा जानवर है जो कोई भी आवाज नहीं निकाल सकता। आपने इस सवाल का जवाब देना है और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाना है। अगर आप हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं तो जनाब क्या बात है, ये आपकी मोहब्बतें होती हैं। बाकी अगर आप हमारी पोस्ट को जरा लाइक और शेयर कर देते हैं तो ये बहुत ज्यादा डबल वाली मेहरबानियां हो जाती हैं। तो पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए और मुझे बताइए आप कहां कहां से हमें सुन रहे हैं और कहां कहां पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल कराने बाकी है मेरी जान। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कीजिए, खूबसूरतियों को जरा वेलकम कीजिए और हमेशा के लिए हसीन और खूबसूरत होते जाइए। अच्छा आज आप लोगों के ऐसे कमेंट्स की तो बारिश हो रही है, भाई बारिश हो रही है क्या बात है। मैं जरा कोशिश करूंगी जल्दी से कमेंट्स पढ़ते जाए ताकि ऐसा हो कि तकरीबन सब लोगों के कमेंट्स शामिल प्रोग्राम होते रहे। और यहाँ पर हाफिज गुलाम मोहम्मद सांभल भाई हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं प्यारे भाई को, आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आता है, कहते हैं प्रोग्राम के बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छी रखती हैं आप और पसंद आते हैं, मेरी तरफ से आपकी पूरी टीम को लिसनर्स को सलाम। वालेकुम अस्सलाम प्यारे भाई, आपको वेलकम कहा जाता है। और अलीशा क्वीन हमारे साथ है, अलीशा क्वीन कहती है आपकी आवाज बहुत अच्छी है, थैंक यू वेरी मच अलीशा क्वीन। और उनके अलावा सिराज अहमद जतोई हमारे साथ है, आपको भी वेलकम कहते हैं। और मोहम्मद जमान भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। हिदायतुल्लाह कहते हैं कि कौन कहता है पाकिस्तानी ड्रामे, बस उस दिन मैंने इसी के बारे में बात कर दी थी, छोड़ दें इस चीज को। अच्छा दर्दी दिल हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम गुड आफ्टरनून माय फेवरेट आज चंदा जानी, कैसी हो, मैं ठीक हूँ तुम बताओ कैसी हो। और निदिली कहती है कि हेलो मेरी प्यारी जानी पानी, शोना मोना क्यूटी स्वीटी ओपा बाबू जाना जाना शोना और अलाई शाहजा सीधा सीधा हेलो बोलो ना। और फहीम भाई आपने टॉपिक का जवाब दिया है, ठीक है जी बढ़िया हो गया। साजिद अली हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। निदली कहती है कि आज इतनी पोइट्री सेंड की है सबने, चलो मैं भी करती हूँ, करो करो बाबा करो करो। और सहारो अली रिंद बलोच हमारे साथ है भाईजान, आपको भी वेलकम हो गया। अलीशा कहती है आपकी आवाज बहुत अच्छी है, थैंक यू वेरी मच अलीशा। और निदली कहती है कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में आकर हमें ये सिखा जाते हैं कि हर किसी से दिल लगाना जरूरी नहीं होता, कभी कभी इंसान सिर्फ ये चाहता है कि कोई उसे समझ ले, छोड़ कर ना जाए, खामोश दर्द और गहरी यादें क्या बातें। अच्छा हाफिज गुलाम मोहम्मद सांभल भाई लिखते हैं कि रिश्ते और मौसम दोनों एक जैसे होते हैं, कभी हद से ज्यादा अच्छे और कभी बर्दाश्त से बाहर, फर्क बस इतना है कि मौसम जिस्म को तकलीफ देता है और रिश्ते रूह को। अच्छा हजार भाई कहते हैं कि सिस्टर आपका शो सुनकर दिल को सुकून मिल जाता है, अल्लाह जाए विधा। अलीशा कहती हैं कि जरूरत ई न पई कंहिंखे आज़माइण जी, वक्त सां गॾु सभई पंहिंजा रंग ॾेखारी विया। हक़ीक़त भाई सोणो मुंहिंजो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज़ करे थो, तव्हां कयो पिया कोन ॿुधायो त सही ख़बर त पवे। फरवा गुल तांचो मबतुआन प्रोग्राम बुधो पया। फहीम भाई कहते हैं जब तक आप शो को लाइक नहीं करती तब तक हमें शो, भाई थोड़ा तो सबर कर लिया करें, प्रोग्राम स्टार्ट हो करने दिया करें, क्या मतलब साना पटियामा। अच्छा दर्दी दिल कहती है कि वो मकाम शिकवे का होता है, वही मकाम शुक्र का भी होता है, लेकिन हम उस मकाम पर शिकवा जल्दी और शुक्र देर से अदा करते हैं, हर बात में खैर ढूंढा करें और अल्हम्दुलिल्लाह कहने की आदत अपनाएं। बिल्कुल जी आपने सही कहा। मुख्तार अली लाशारी भाई हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। नजीर खोसु भाई हमें सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया। निदली लिखती है कि ओ माई हबीबी माई हयाती माई उमरी, अब इसका मतलब सुनो, माई हबीबी मतलब मेरा प्यार, माई हयाती मतलब मेरी जिंदगी, माई उमरी मतलब हमेशा उसे प्यार करेंगे जैसे प्यार करते हैं। ओके ओके।

भाई गरीब खे बिल्कुल साव आहे पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल भी कयो बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम तमाजे खूबसूरती में चार सेंटर लगाने जो कम करी रही आहे सो तमा बाबा पानी चेहरे जो ख्याल छो न रखी रहा आयो तमा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम तमा के सफाई चिकनो चिकनो बनाए छडींदी अगर तमा पाजी स्किन से रिलेटेड परेशान आयो तमा के खबर नथी पई त केडो प्रोडक्ट लगाण घुरजे केडो प्रोडक्ट असान जी स्किन जलाए बेहतर रहंदो तो तमा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो ट्राई करे दिसो बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम तमा के सफा वीआईपी बनाए छडींदी आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी या गाल मुखे तमाम घणी पसंद आए तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम में को मेडिकेटेड फार्मूलो आए यानी कि कहीं जी भी स्किन के कोई भी नुकसान न पहुंचंदो आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम तमा आराम से हर स्किन जी मथा अप्लाई करी सगो था आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम मर्द आयो खवतीन आयो हर कोई लगाए सके तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगायो बाबा सोना सोना थी वे

0: अच्छा भाई, सबने टॉपिक का जवाब बता दिया है, क्या बात है जी, अच्छी बात है, अच्छी बात है, होशियार हो चुके हैं। इंतजार भाई हमारे साथ है। इंतजार भाई वालेकुम अस्सलाम, आप भी हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। और नाजिक अली हमें सुन रहे हैं, कहते हैं गुड गुड, थैंक यू वेरी मच। अच्छा तुम्हारा प्रोग्राम जो अच्छा टॉपिक के फॉलो करो, सही सही वासु भाई हमारे साथ ही। वालेकुम अस्सलाम वासु भाई, ठीक ठाक है, खुशबाश। अच्छा जैन अली कहते हैं कि नहीं मिला है कोई तुस्सा आज तक मुझको, फिर ये सितम अलग है कि मिला तो तू भी नहीं। वाह वाह वाह वाह। अच्छा फहीम भाई कहते हैं कि दादा मैडम कह रही है डी स्किन ब्यूटी क्रीम बहुत अच्छी है। वही तो ॾिसो, मैडम इस्तेमाल कई त हुनखे पसंद अची वई, हाणे तव्हां बि इस्तेमाल कयो तव्हांखे बि ॾाढी पसंद अची वेंदी। अच्छा पोस्ट खे लाइक कयो अथव, कोन कयो अथव या सिर्फ़ कॉमेंट जो वसकारो आहे?
1: जाइ
0: ॿुधा कसम थी।

ध्यान जी लश पर से सोनो मुंजो आई सफा लश सोनो मुंजो आई सोनो लश आहे बाबा छो त सोनो जेको आयो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे पयो ऐं तव्हां बि अगरि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो पिया त तव्हां बि लश पश थी वेंदा सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल तव्हांखे सफ़ा ईअं सोनो ख़ूबसूरत ऐं प्यारो प्यारो बणाए छॾींदो डी स्किन ब्यूटी क्रीम त आहे पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम सां गॾु तव्हांखे डी स्किन जो फेस वॉश बि मिली रहियो आहे डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻायो डी स्किन जो फेस वॉश लॻायो ऐं हमेशह जे लाइ सुहिणा थी वञो अच्छा कुझु माण्हू वरी इहो सोचींदा आहिनि त बाबा असां क्रीम हणूं था पर जॾहिं असां क्रीम हणणु वरी बंदि करे छॾींदासीं त छा जेका ख़ूबसूरती असांखे मिली आहे उहा ख़तमु थी वेंदी अरे बाबा केरु थो चवे ख़तमु थींदी जेका तव्हांखे मिली वई ख़ूबसूरती तव्हांजी आहे तव्हांसां हमेशह गॾु रहंदी सो इन टेंशन जी वजह सां तव्हां अगरि प्रोडक्ट नथा इस्तेमालु कयो त कयो बाबा कयो मेडिकेटेड फार्मूलो आहे कोई नुक़सान आहे तव्हां सिर्फ़ु ख़ूबसूरत थींदा ऐं ख़ूबसूरती तव्हांजे दरमियान सिर्फ़ु डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो फ़ासिलो आहे हुन फ़ासिले खे तइ कयो ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कयो

आज के हिते यदि सिद्रा मेहरबानी करे असान के पंजी ओरिजिनल वॉइस में फायजा अली जो कलाम बुधायो दिल बच बच छा अच्छा हाने गा समझ में आई एम नॉट सिंगर यो तो बड़े ट्रेजेडी करे गाई दी है अच्छा नजीबुल्ला बिरोही भाई वालेकुम अस्सलाम मुगल उमरानी चाचा तमा एतरा कमेंट्स भला कया नहीं हुए भी स्टिकर मोकलिया तव थोड़ो रहम कयो बाबा मानन ते सालार अली हमें सुन रहे हैं सालार को आपका अच्छा सालार बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ है ओके हजार भाई कहते हैं कि तुम्हारी हर बात पर मुझे एतबार है मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत प्यार है मुश्किल वक्तों में भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा तुम्हारे हर कदम पर मेरा हाथ होगा परेशान मत हो सब कुछ ठीक हो जाएगा तुम्हारे हर ख्वाब को पूरा करेंगे मिलकर तुम्हारा हौसला कभी टूटना नहीं चाहिए मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ ये बात याद रखना वाह सही

বাকি করবো বারো আর तव्हां कहिड़ी दुनिया में आयो डीस्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो तव्हां बि सुहिणा थी वेंदा मीर ममताज जतोई भाई तव्हां सां गॾु मौजूदु आहियो वालेकुम अस्सलाम तव्हांखे असांजो प्रोग्राम पसंदि आयो सो मोहबतूं प्यारे सोणे भाजू ज़ेन कहते हैं कि नहीं मिला है कोई तुस्सा आज तक मुझे अच्छा यो वराए तहां करे छड़ियो आ कमेंट दिसो इन वजह सा ना मानन जा कमेंट ऊपर भटी विंदा आइन एको एको मोकलिंदा कयो जिन ता सब कमेंट शामिल प्रोग्राम थी सगन हिदायतुल्लाह कहते हैं कि ओके अनवर भाई हमारे साथ मौजूद है वालेकुम अस्सलाम कहते हैं बुझे बुझे से अजीब दिन है ख्वाब है ना ख्याल कोई ना मंजरों में कोई कशिश है ना मौसमों में जमाल कोई हम एक दूजे को अपनी अपनी अधूरी आंखों से देखते हैं हमारे बरसों की चाहतों में उतर रहा है जवाल कोई शायर छो था मोकलो भला बुधायो बुधायो डे स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कई कोन

हांजी वेयो इते ता टाइम देयर न्यूज़ ब्रेक जो ना का कोई शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक ना आपसे जल्दी मोटी तमारी चुंदा कारी नवन जो इते बैठा हो जो हिया मनी ओ हिया मोटा थी सो स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइटिश एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाइए और खूबसूरत हो जाइए

0: It's 2 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli glow har niya josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: G7 मुल्कन ईरान खां हुसैन जी हिमायत खत्म करण जो मुतालबो करे छड़े G7 मुल्कन ईरान खां हुसैन जी हिमायत खत्म करण जो मुतालबो करे छड़े गरियल कौमन में अमेरिका बरतानिया कैनेडा फ्रांस जर्मनी इटली जापान जे परदेही वजीरन जो इजलास हुसैन खां फौजी कार्रवाई करण रोकण धमकियुनि जो सिलसिलो बंद करण ऐं ॻाल्हियुनि तरफ़ वापसि अचण जो मुतालबो कयो वियो। ईरानी सदर मसूद पज़ेशान गॾियल क़ौमनि जे इजलास में शिरकत लाइ न्यूयॉर्क रवानो। परॾेही वज़ीर अब्बास इराक़ची पहिरें ई न्यूयॉर्क पहुतल। साफ़िन सां ॻाल्हाईंदे अब्बास इराक़ची चयो त गॾियल क़ौमूं आलमी अमुन ऐं सलामतीअ जो तहफ़ुज़ करण में ना

0: तमामु थियूं आहिनि। आलमी बिरादरीअ ते एतमाद बि ख़तम थी चुको आहे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। आप सुन रहे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: माशाला फौजी पाइप फैक्ट्री नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मैरापुर असां वटि जॻह जूं ॾियारियूं ऐं पाइप ॾेढ ॿ चार छह नव ऐं ॿारहं इंच में प्लेन ऐं कॉलम में मौजूदु आहिनि। फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
3: هر ماشوم ورکوټي ورکوټي قدمونه د یو نوې دنیا په لور روان وي، خو د پولیو رنز دا قدمونه درولې هم شي، نو په دې وجہ د پولیو د هر مهم په محل د پولیو ټیم د دروازې ټکولو جواب ورکوي او خپل ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي دوه ساسکي ورکول مه هیروي، ځکه چې هم دغه ساسکي د ماشومانو د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزر مومي. پولیو یعنی مستقل معذوری۔
4: ارشاد آٹوز ایں ہونڈا شو روم مہراپر، ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ایں با اختیار ادارو۔ ارشاد آٹوز ایں ہونڈا شو روم مہراپر نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے۔ सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
5: मालवन भारन लाए खुश खबरी, 50 सालन खां आजमायल सखर वारन जो जीजान ढोर चारो मसालो जानवरन में खीर ऐं गोश्त वधाए अव्हां के खुशहाल बनाए, हर पंसार ऐं जानवरन जे डॉक्टरन वट दस्तियाब आहे।
6: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
7: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
8: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियत दस्तियाब आहिनि।
7: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी।
8: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372 ऐं 0242-460100।
9: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000-31-05-5
10: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
11: अस्सलाम वालेकुम। अदा
12: वालेकुम अस्सलाम। अदा छो परेशान आई?
11: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
12: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
11: न? अदा
13: यार आजी कल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरापुर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
11: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
12: हां दा कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
11: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
13: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
12: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी,
14: 0301-399-2836।
15: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी एफ एम 94।
16: बुक स्टूडियो सीजन 15।

डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आप सारे लोग ही कर सकते हैं और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज आपकी खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप सारे लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब आपकी स्किन सेंसिटिव हो, ऑयली हो, ड्राई हो, नॉर्मल हो, कॉम्बिनेशन टाइप हो, मर्द हजरात है, खवातीन है, हर कोई डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर सकता है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि 2-in-1 फार्मूला है, यानी कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम को आप नाइट क्रीम के तौर पर यूज तो कर सकते हैं, लेकिन आपको जो रिजल्ट्स मिलने वाले हैं ना, वो ऐसे मिलेंगे जैसे आपने कोई महंगा सा फेशियल कराया हो, आपने कोई महंगी सी ट्रीटमेंट ले ली हो स्किन की। क्योंकि यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर जो है ना, आप लोगों के लिए विटामिन ई बीट्स एड किए गए हैं, माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन है जनाब, अल्फा हार्बोटीन है, कॉजिक एसिड है, ग्लूटाथायोन है, ये तमाम चीजें जो है ना, सुनकर मतलब ऐसा आपको महसूस हो रहा होगा कि भाई ये प्रोडक्ट तो बड़ा ही महंगा होगा, तो कोई भी महंगा प्रोडक्ट नहीं है, ये मुनासिब सी कीमतों में आपको प्रोडक्ट मिल रहा है। आप बस अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर चले जाइए, वहाँ से नाम लेकर तलब कीजिए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराइए। और जो नंबर आपको बता रही हूँ प्रोग्राम के अंदर, उसके ऊपर राबता करते रहिए ताकि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश अवेलेबल हो सके। बिल्कुल जनाब, डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना, आपकी खूबसूरती को मजीद निखारने के लिए अपनी रोजमर्रा ब्यूटी के रूटीन में आप शामिल कर सकते हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का जो एहसास होगा ना, वो आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाने का काम करता है, आपकी स्किन को नरम और खूबसूरत बना देगा, आपकी स्किन के रूटीन को मजीद खास बना देगा, आपके चेहरे पर जो है ना इतना अच्छा से निखार आ जाएगा, आपके चेहरे पर जो रिंकल्स हैं, फ्रेकल्स हैं, क्रेकल्स वगैरह हैं, आपके चेहरे पर ब्लैक हेड्स हैं, व्हाइट हेड्स हैं, एक्नी प्रॉब्लम है, या जितनी भी ये प्रॉब्लम्स आपके चेहरे पर मौजूद होती है ना, तमाम चीजों से आपको छुटकारा देकर आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखती है और आपके चेहरे को हमेशा के लिए ब्यूटीफुल, खूबसूरत और पुरकशिश बनाने का काम करती है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आप सारे लोग ही कर सकते हैं, जी दिल खोल कर कीजिए और जरा अपनी खूबसूरती का ख्याल रखते जाइए। और साथ साथ अगर आप डी स्किन का फेस वॉश यूज करने वाले हैं तो क्या ही बात है जनाब, लाजमी आप ट्राई करके देखिएगा, क्योंकि डी स्किन का जो फेस वॉश है ना, इसकी क्या ही मैं बात बताऊँ आप लोगों को, इतना प्रीमियम क्वालिटी का ये फेस वॉश जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप खुद ही कि भाई साहब ये क्या चीज बता दी है हमें, इतना प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट हमारे पास मौजूद था और हम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे थे। तो भाई अभी भी कोई देर नहीं हुई है, अभी भी आप जाकर परचेज कर सकते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश, लगाते रहिए और खूबसूरतियां हासिल करते रहिए। और हाँ, डायल करते रहिए 0332738 4309, बुरी 300 बच्ची है 73 84 309, आई बी ओ नंबर आहे 0312502509 07, बुरी 312 बुरी 312 पंजवी है पंजा है। भाई मेरा ध्यान पता नहीं कहाँ चला गया, नंबर दोबारा से नोट कीजिए, बड़ी 312 50 25 970, ही नंबर जो आए तुम डायल करे सगो था, नंबर ते तुम कॉल भी करे सगो था, तुम मैसेज भी करे सगो था, इनन का मालूमात भी वठी सगो था, बाबा प्राइस छा है या फिर किथा असा वनी परचेज करे सगो था, असा के करीबी जनरल स्टोर जो नालो बुधायो, इन का अलावा जेका भी मालूमात तुम के मतलब असन प्रोग्राम में न मिली सगी आ है, तो वह तुम इन नंबर से रातो करे पांजी करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अवेलेबल भी कराए सगो था, आई मालूमात भी हासिल करे सगो था। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश, लगाते रहिए और खूबसूरतियां हासिल करते रहिए। ओके, सो यहाँ पर जितने भी खूबसूरत से लोग हमारे साथ मौजूद है, सभी को वेलकम एंड खुशामदीद कहते हैं, आपकी मोहब्बतों, समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। और मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछा कि आप मुझे बताइए वो कौन सा जानवर है जो कोई आवाज नहीं निकाल सकता। हाँ जी बिल्कुल, आपने सही सुना, इस सवाल का आपने जवाब देना है और जरा मुझे बताना है कि आप लोग कहाँ कहाँ से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है और कितनी सारी प्यारी समातें हैं जो भाई हमारे प्रोग्राम को सुनते जा रहे हैं। और उसके अलावा

ओके सो जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद है फेसबुक पर, आप काइंडली पोस्ट को जरा लाइक और शेयर करते जाइए. बाकी आप लोगों के जो फीडबैक्स हैं वो शामिल प्रोग्राम रखे जाएंगे. और यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी हमारी लिसनर हमारे साथ मौजूद है. वो बड़ी भाई प्यार से और शौक से हमारा प्रोग्राम सुनती है और वो डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन का फेस वॉश भी यूज करती है. और भाई एक खत्म हो जाता है तो वो जाकर दूसरा परचेज कराती है. और ये हमारे साथ मौजूद है आयशा मेमन. आयशा मेमन हमारी बहुत ही प्यारी और सुंदर सी लिसनर है. अल्लाह पाक आपको खुश रखे आयशा, आप ऐसे ही हंसी मुस्कुराती रहे. और बहुत बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद हैं. रेगुलर आप हमारी मतलब लिसनर भी हैं और आप हमारा प्रोडक्ट भी परचेज करती हैं. सो थैंक यू सो मच आयशा, आप हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोग्राम सुनती हैं, ढेर सारा प्यार आपके लिए. और इसी के साथ साथ ऐसे ही प्रोग्राम को पसंद करती रहे और शामिल प्रोग्राम होती रहे. अच्छा और हमारे साथ हमारी फजली भी प्रोग्राम में मौजूद है. फजली आपको भी वेलकम कहते हैं वालेकुम अस्सलाम के साथ. और साथ साथ ये हमारे साथ जी मौजूद हैं इमदाद जतोई, अब्दुल खालिक जतोई, मुबशर हुसैन जतोई, किफायतुल्ला जतोई, फारूक हैदर जतोई, भाइयों को वेलकम कहते हैं. मीरपुर खास से अब्दुल्ला महर हमारे साथ हैं, वालेकुम अस्सलाम. अब्दुल्ला महर भाईजान जो हैं ये भी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं. तो अब्दुल्ला भाईजान बहुत बढ़िया, ऐसे ही इस्तेमाल करते रहिए. और शहर दादू खां, इमदाद अली जतोई, अब्दुल खालिक जतोई, मुबशर हुसैन जतोई और किफायतुल्ला जतोई, फारूक हैदर जतोई, भावनजू मोबतुआन तां प्रोग्राम बुधो पया इन डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल भी कयो पया. ये हमारे साथ ही वालेकुम अस्सलाम, वेलकम भाऊ. अब हेल्थ कैसी है? ठीक है, बस ये पूछने के लिए मैसेज किया. ख्याल रखिए अपना, ओके, और दवाई टाइम से ले. जी ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया. थैंक यू जयपाल भाई, हमारे साथ मौजूद है और तबीयत काफी बेहतर है. बस ये थोड़ा गला अभी तक जरा अपनी जगह पर नहीं आया. और ये हमारे साथ मौजूद है जी, वालेकुम अस्सलाम अलैहिस्सलाम मदर. प्यारी आरजे कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ जी, आप बताएं कैसी हैं? और मायरा हमारे साथ मौजूद है. मायरा आप भी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज कर रही हैं, क्या बात है मायरा, ऐसे ही इस्तेमाल करती रही हैं. और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल भी करा चुकी हैं, ये भी अच्छी बात है. मंजूर अली खास के लिए मैं सुन रही हूं, गोठ दाबूचा खास के लिए लग झंडो मरी. ओके जी, झंडो मरी खां तव्हां असांजो प्रोग्राम ॿुधो पिया ऐं झंडो मरी में भी तव्हां खे डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिली सघनि था. बस तव्हां उतां थोरो मालूमात वठो, अगर न बि मिलनि था त जेके तव्हां खे नंबर ॿुधाया न, उन नंबर ते तव्हां राबितो करे वठो ऐं पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर ते डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन जो फेस वॉश अवेलेबल करायो. अच्छा इरशाद अली लगारी हमारे साथ हैं फ्रॉम मीरपुर खास, कहते नियर चूना फैक्ट्री. इंसान दुख नहीं देते, इंसानों से वाबस्ता उम्मीदें दुख देती हैं. नाइस योर शो, थैंक यू वेरी मच. वैसे इरशाद भाई आपने क्या ही बात इरशाद कर दी है, बहुत बढ़िया. थैंक यू, आप हमारे साथ हैं. अच्छा मुनव्वर अली मुगल भाई हमारे साथ, कहते सलाम बहना, उर्दू सिंधी गड गड मजो अची वयो. ये बाबू भाई का स्टाइल है. मुनव्वर भाई बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं. अताउल्ला मरी हमारे साथ है, विलेज रमजान मरी मीरपुर खास से. ओके क्या बात है, मीरपुर खास वाले लोगों का भाई क्या कहना, वो बड़े हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं, बड़ी मोहब्बतों से हमारा प्रोग्राम सुनते हैं. बाकी माण्हू किथे आहे बाबा, ॿुधायो हाल अहिवाल ॾियो, किथां किथां असांखे ॿुधो पिया. ऐं तव्हांजे करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल थिया कोन, मूंखे इहो बि ज़रूर ॿुधाइजो, जे ख़बर पई दिलि जाए हुजे त बाबा हा तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कयो था.

भाई रुसो न रुसो न रुठल भला नायो लगंदा खिल भोग मस्ती मजाक में रहंदा कयो जिंदगी ॾाढी खूबसूरत आहे खूबसूरत तरीके से जिंदगी के एंजॉय कंदा कयो ऐं पाण के खूबसूरत बनायो बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो बतूल मेमन हमारे साथ ही बतूल बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ ही आपका गाना लगाते हैं जी मुझे मिल गया है आपका गाना और फहीम भाई कहते हैं थोड़ा थोड़ा शर्मीला है वाकई वाकई और नजर मोहम्मद भट्टी भाई आपका बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ है सैफुल्ला खोसू भाई हमें सुन रहे कहते हैं शो कहां से हो रहा है शो जी हो रहा है लाड़काना से बाकी हमारे साथ सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी मेहरापुर मातली नूरियाबाद ये सारे लोग मौजूद है सारे सिटीज में हमारा प्रोग्राम सुना जा रहा है तो सबको वेलकम हो गया और निदड़ी कहती है कि मतलब ये वॉइस तुम्हारी फेक है मतलब कुछ भी ऐसा भी नहीं है अच्छा हबीबुल्ला थेबू भाई वालेकुम अस्सलाम मुख्तियार लाशारी भाई के थी आज के सवाल का जवाब है ओके अली रजा लगारी भाई शमन का गाना सुनाते हैं थोड़ा सबर कीजिए और सर इरफान हमारे साथ मौजूद है महर इरफान सियाल साहब कहते हैं नाइस होस्टिंग मैम आज थैंक यू वेरी मच सर वेलकम सर अनवर भाई कहते हैं कि तुम्हारी आवाज में शायरी सुठी लगंदी आहे बाकी शायरी जा मौजू उहे कम त शायरन जो आहे असां केड़ा खुद शायर आयूं बाकी शायर जाने ऐं शायरी जाने ऐं शायर जाने सही सही हाणे ॻाल्हि समझ में आई और हनीफ अलबलोची कहते हैं कि उसको फुर्सत ही नहीं वक्त निकाले मौसिन उसे होते हैं भला ऐसे होते हैं भला चाहने वाले मौसिन याद के दश्त में फरता हूँ मैं नंगे पाऊँ आके देख पाओ के छाले मौसिन क्या बात है मौसिन को बोलो डे स्किन ब्यूटी क्रीम लगा ले और रमजान भाई वालेकुम अस्सलाम ठीक ठाक है प्रोग्राम में आपको वेलकम कहते हैं डे स्किन मेरे शहर में नहीं मिल रही है अवेलेबल करा दो आप भी गिफ्ट नहीं भेजती रमजान मरी आपका भाई रमजान भाई आप कहाँ से हमें सुन रहे हैं बताएं तो आपके करीबी जनरल स्टोर पर हम डे स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को अवेलेबल करा देते हैं ठीक है अच्छा मुजाहिद मलिक कहते हैं सिडो मेरी MP3 खराब हो गई है मैं आपका शो मोबाइल पे सुन रहा हूँ प्लीज आप दुआ करें MP3 बन जाए ताकि मैं आपको लंबी आवाज में सुनूं कम आवाज में मजा नहीं आता आपके शो का जी जी आपकी MP3 बन जाएगी और बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं अच्छा रुखसार मरी भी हमें सुन रही हैं रुखसार मरी बहुत शुक्रिया थैंक यू आप हमारे साथ हैं डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज कर रही हैं नहीं बताइएगा अली डिना भाई हमें कश्मीर से सुन रहे हैं और मुलायर अमीर बख्श हमें सुन रहे हैं

ओके अॼु मां कोशिश कई आहे पंहिंजी प्लेलिस्ट जेका आहे उहा सिंधी गाननि सां ज़रा भरी वञे सो सिंधी गाना अॼु जी प्लेलिस्ट में ॿुधंदासीं ख़बरदार के उर्दू गाने जी फरमाइश कई

जी सोन त खैर तव्हां वठो जॾहिं पर तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठो बाबा हुनखे चवेसि त बाबा हाणे जो हाणे आणे ॾे मूंखे डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु करणु स्टार्ट कयो डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांजे ख़ूबसूरती जे लाइ सफ़ा घणी फ़ाइदेमंद आहे सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज़ करे तव्हां सफ़ा सुहिणा सुहिणा थी वेंदा ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका आहे तव्हां हर कोई इस्तेमालु करे सघो था यानी मर्द हज़रात बि लॻाए सघो था ऐं ख़वातीन बि लॻाए सघो था सो लॻायो बाबा ऐं पंहिंजे चहिरे खे चमकायो ऐं सुहिणा सुहिणा थी वञो अच्छा माण्हू छो चवंदा त लाड़काणे जो सोन भलो न आहे हूंदो मां इलाही माण्हुनि खां ॿुधो आहे चवंदा लाड़काणे जो सोन भलो न आहे हूंदो हा वाक़ई हक़ीक़त में ॿुधायो त मूंखे ख़बर पवे

बिल्कुल जी, पोस्ट को लाइक और शेयर करती रहिए और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती रहिए. सालार कहते हैं योर प्रोग्राम बेस्ट. थैंक यू वेरी मच सालार. परवा को भी प्रोग्राम पसंद आ रहा है, बहुत शुक्रिया.

अच्छा दर्दे तो लगती है कि एक एक ही नजर में आप हमारे मेहमान बन गए, दो चार बातें क्या कर ली, सारा जहां बन गए, पास रहकर भी लोग हमें अपना ना बना पाए और दूर रहकर भी आप हमारी जान बन गए, अल्लाह रे। थैंक यू साजिद अली भाई के थे हर सवाल जो जवाब। जी बिल्कुल भाई साहब, आप सही कह रहे हैं। मुझे बताइए डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल किया या अभी सिर्फ सोच रहे हैं। अमानुल्ला महर हमारे साथी, अमानुल्ला महर भाई वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक हैं, खुशबाश हैं। अच्छा अलीशा कहती हैं कि थरू शाह से मेरा भाई सदाम हुसैन चांदियो आपका शो सुन रहा है। ओके आप दोनों को वेलकम कहते हैं। दर्दे दिल भी आप टॉपिक का जवाब दे चुकी हैं। ओके जी ओके। ताले मरी भाई हमें सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया ताले भाई, आपको वेलकम कहते हैं। ओके जी रहमान अली शंपानी भाई वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं, ठीक ठाक है। नजर मोहम्मद भट्टी भाई वालेकुम अस्सलाम, अटियारी खान तांसन प्रोग्राम बुध पया। अच्छा अदो चाहे तो अदा सर खालिद जी शादी आहे छा अड़ा गाना प्ले कया थी शादी आ तो घोट नजर कोन थो। हाँ चाचे जी शादी कराया था भला इन में छा है। एहसन अली बुक्ति भाई हमें सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया भाई आपको वेलकम हो गया। रशीद कोसु भाई तवांगे प्रोग्राम वणे पयो, थैंक यू। हजार भाई कहते सिस्टर में आपका शो शारजा से सुन रहा हूँ, जबरदस्त शो, थैंक यू वेरी मच प्यारे भाई। निधि कहती है कि सिंधी सॉन्ग्स के साथ वो सॉन्ग भी लगा दो, हाजिर हाजिर। रशीद भाई कहते हैं कि हैदराबाद में क्रीम मिल रही है और हम इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ओके क्रीम का नाम तो बताएं, कौन सी क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं।

0: हाँ जी, तो यहाँ पर टाइम हुआ है शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, जल्दी से वापस आप लोगों के पास आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहिएगा, सुनते रहिए और हमारा साथ ही पूरी पूरी 3 बजे तक। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ। सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट। लगाइए और खूबसूरत हो जाइए।
1: It's 2:30 p.m. This time check is brought to you.
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमार्ट, अइमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी अजे मुकरर कर रेट ते दस्तियाब है, सर्विस सेंटर, एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे, होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो, कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट, कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी, होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिला आसिम हुसैन आराई, 0307-359-2120।
3: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर, कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMB इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह, हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियो बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राबते लाए 0301-9196-851
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम बहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003
2: खुशखबरी क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं अब फिक्र छोड़िए शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
3: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स और विजुअल लेक्चर हुलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नताइज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 0300-002724 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-386-5453
4: सोना सिर्फ जेवर नहीं हर घर की अमानत होती है इसीलिए बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो आज ही 111-475-264 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें शराइत व ज़वाबित लागू

0: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
1: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ बिंडी हन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इन्हनि कदमनि खे रोके भी सघे थो। इन्हीअ करे जॾहिं बि पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करनि जी दस्तक थिए त दर खोलियो ऐं पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो खां बचाव जा ॿ कतरा ज़रूर पीआरियो, छो त इहे कतरा ॿारनि में मुदाफ़ती ताक़त खे वधाइनि था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾाम ॾियनि था। पोलियो मतलब ज़िंदगी भर जी माज़ूरी।
3: मेहराबपुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुशख़बरी, पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज़ जे खर्च खां बचो। A1 आटोस पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहराबपुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीद करियो। स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे। उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 आटोस थरी रोड मेहराबपुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक रिक्शा, पेट्रोल लोडर, रक्षा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि। आपते लाए मलिक खुशी मोहम्मद 0302-3295894 ऐं फेस मोहम्मद पहियार 0300-311-8956। A1 आटोस मेहराबपुर, नालो आहे एतमाद जो।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
4: हर माशूम वरकोटी वरकोटी कदमुना देव नवी दुनिया पलोर रवानवी, खुदा पोलियो रंज दा कदमुना उद्रवले हुमशी। नुपदी वजह द पोलियो द हर मुहिम पमहाल द पोलियो टीम द दरवाजे टकोलो जवाब वरकवई, अखबल माशुमानो ता द पोलियो द मखनिवी द्वसास की वरकवल महेरवई। जका चुहम द गसास की द माशुमानो द बदन दिफाई ता कज्यातवी और द हगी द खूबुन वलवत वजरी मुमी। पोलियो यानी मुस्तकिल माजूरी।
5: अस्सलाम वालेकुम। अदा
6: वालेकुम अस्सलाम। अदा छो परेशान आई?
5: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
5: न अदा
7: यार, आजकल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
5: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
6: हाँ अदा, कारोबारी इश्तेहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
5: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
7: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
6: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
8: 0301-399-2836।
7: मोहम्मद उमेर गोरी 0319-1550-724।
9: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो GFM 94।

बिल्कुल जी, दिल चए थी तू जो नालो मां सुकून रखी छॾियां। वाकई कुझु माण्हू असांजी ज़िंदगी में हूंदा आहिनि जेके असांजी ज़िंदगी में सुकून जो कमु कंदा आहिनि। चलो अगरि तव्हांजी लाइफ में बि कोई अहिड़ो मौजूदु आहे त हुनजो क़दुरु कयो ऐं हुनखे डी स्किन ब्यूटी क्रीम गिफ्ट कयो। बिल्कुल सुना वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं वाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं, मुझे बताइए जरा, ताकि मुझे पता चले कि भाई जितने भी ये खूबसूरत लोग हमारे आस पास घूम रहे हैं डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज कर रहे हैं। और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये चीज भी आप लोगों को पता होनी चाहिए कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना भाई, खूबसूरती हर किसी की ख्वाहिश होती है, लेकिन खूबसूरती के साथ साथ अपनी जिल्द का मुनासिब ख्याल रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप अपनी रोजमर्रा की ब्यूटी के रूटीन में एक खूबसूरत सा इजाफा करना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अपनी रूटीन का हिस्सा बना लीजिए। और ये क्रीम आपकी रोजमर्रा स्किन केयर को मजीद आसान और खूबसूरत बनाने के लिए बेहतरीन इंतखाब साबित हो सकता है। आपकी जल्द को नरम और मॉइस्चराइज रखने के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है जनाब। और अपनी स्किन केयर को ना तवज्जो देना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि कई मरतबा जब हम स्किन का ख्याल नहीं रख रहे होते हैं तो उसी वजह से हमारी स्किन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। और जब आपकी स्किन खराब हो चुकी होती है और बहुत ज्यादा आपके चेहरे पर प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तब जाकर आपको रियलाइज होता है कि भाई अब हमें चेहरे का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन कैसे रखें वो बहुत ज्यादा थोड़ा सा मुश्किल सा कंट्रोवर्शियल सा टॉपिक बन जाता है। तो अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करने वाले हैं तो लाजमी कीजिए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आपकी खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये मेडिकेटेड फार्मूला है। डी स्किन ब्यूटी क्रीम को जो है ना स्किन से रिलेटेड जितने डॉक्टर्स होते हैं ना, उन्होंने मिलकर तैयार किया है, तो कोई भी साइड इफेक्ट का इशू ही नहीं होगा। आपकी स्किन किसी भी टोन की ही आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। सेंसिटिव स्किन वाले लोग भी दिल खोल कर इस्तेमाल कर सकते हैं। मर्द हजरात हैं, खवातीन हैं, हर कोई लगा सकता है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर विटामिन ई बीट्स हैं, माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन है। तो ये जो विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स हैं ना, ये पूरे पाकिस्तान में अगर आप रिसर्च करेंगे प्रोडक्ट्स को लेकर, तो भाई पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 2 से 3 प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स जी इनकी एडिशन की गई है। और ये जो है ना, ये इतनी प्रीमियम क्वालिटी की चीजें होती हैं कि ये अगर आप देखेंगे ना भाई, जो खवातीन महंगे महंगे फेशियल्स कराती हैं बहुत महंगे हजारों वाले, उन फेशियल्स के अंदर विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स को ऐड किया जाता है। तो बिल्कुल ये 2-in-1 फार्मूला होने वाला है, यानी कि ये आपकी नाइट क्रीम तो है ही है, लेकिन ये आपको रिजल्ट तो देगी ना डी स्किन ब्यूटी क्रीम, ये ऐसे देगी कि भाई आपने जैसे कोई महंगा सा फेशियल कराया हो। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आप सारे लोग ही कर सकते हैं। आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करके सिर्फ 2 रातें इस्तेमाल करेंगे तो आपके चेहरे पर बहुत अच्छे खासे रिजल्ट आ चुके होंगे। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि बाहर के ममालकात में भी आपको मिल सकती है। तो जाइए और परचेज कीजिए और खूबसूरतियाँ हासिल कीजिए। और जनाब डायल करते रहिए 03-12-50-25-907 बुड़ी 312 50-25-970। अब यो नंबर आहे 03-27-38-43-09 बुड़ी 332 73-84-309 नंबर डायल कयो ऐं पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन जो फेस वॉश अवेलेबल करायो। छो त बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻायो ऐं डी स्किन जो फेस वॉश न लॻायो, ईअं मज़ो न ईंदो न। डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठो त गॾो गॾु डी स्किन जो फेस वॉश बि लाज़मी वठिजो। ॿई चीज़ूं गॾु गॾु इस्तेमालु कयो जीअं तव्हांखे ख़ूबसूरती मिले, मुकमल ऐं तव्हां सुहिणा हुजो।

0: वासाईवा शमन जो गानो एंजॉय कयूं पया ई प्रोग्राम में तवां के चौंदा भली करी आया प्रोग्राम तवां जो पांजो आए जितां जितां तवां सागे सोणा मानो बुधो पया सबनी जो मोहब्बतूं आहिन भाऊ एंड डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो भाऊ सोणा सोणा थी वणो जी अच्छा अली डना भाई में सुन रही है कश्मीर से थैंक यू के ते भाईजान को अमानुल्लाह महर आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है थैंक यू दर्दे दिल कहती है कि वाओ माय फेवरेट सॉन्ग शेला गुल वाला फरमाइश करने वाली थी अच्छा देखो देखो मैंने पहले लगा लिया अच्छा हिदायतुल्लाह कहते हैं पता नहीं एक चेन गिफ्ट करो फिर बताऊंगा
1: मुझे शहर जमा हूं
0: अब मैं क्या ही बोलूं अब मैं क्या बोलूं

अला घोट फेशियल कराइण वियो आहे घोट खे चयो बाबा फेशियल बेशियल खे छॾियो हाणे डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो फेशियल में वॾो टाइम लॻंदो आहे पैसा बि इलाही लॻंदा आहिनि डी स्किन ब्यूटी क्रीम बसि परचेज करे अचो ऐं तव्हां इस्तेमालु कयो डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांखे सफ़ा मिंटनि में बल्कि ॿ रातूं अगरि तव्हां इस्तेमालु कयो था त तव्हांखे भला रिज़ल्ट मिली वेंदा सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कयो छॾियो हिननि सभिनी चीज़ुनि खे अच्छा रमज़ान भाई हमारे साथ है रमज़ान भाई बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ है निसार महर में सुन रहे हैं हाय तालिब मेरी भाई हमारे साथ है बहुत शुक्रिया तालिब भाई रिजवान अली कहते हैं बहना कैसी हो येस्टरडे आपसे रिक्वेस्ट किया था आप अच्छा गाना आपका रह गया था चलिए ठीक है मैं देखती हूँ गाना लगा देंगे आपका और कहते हैं कि फकत निगाह से होता है फैसला दिल का ना हो निगाह में शोखी तो दिलबरी का क्या है वाह वाह वाह वाह

राजा साजिद हुसैन सुमरो हमारे साथ ही वालेकुम अस्सलाम कहते हैं शाहिद बबर का सॉन्ग फ्रॉम DIG ऑफिस लाड़काना से आप हमारा शो सुन रहे हैं भाई को वेलकम कहते हैं लाड़काना से भाई आप मार्केट से जो है ना डेज स्किन ब्यूटी क्रीम भी परचेज कीजिएगा डेज स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं ये तो बताइए गाने वाने तो हम सुनते रहेंगे हजार भाई कहते हैं कि बिल्कुल सिस्टर अच्छे लोगों की कदर करनी चाहिए लेकिन आजकल लोग अच्छे लोगों की कदर नहीं कर रहे हैं पर काई गाल कोने मां ताजी कदर कंदो पर शर्ता तांगे डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करनो पंदो ओ ये जियो करे इससे।

अच्छा हनीफ अलबलोची कहते हैं मैम गोल्ड सऊदी अरबिया का बेस्ट है। अच्छा सही है। साजिद कहते हैं बहुत बहुत अच्छी है भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम, माशाल्लाह डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते रहिए, वाकई आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। हजार भाई कहते हैं क्या अच्छा शायद मिल सकती हैं, आप जाइएगा और जरा मालूमात लीजिएगा, क्या पता मिल ही जाए। और मोहम्मद जमान भाई कहते हैं मेरा टॉपिक वाला कॉमेंट रीड नहीं हुआ, मैंने कर लिया था।

वाह साईं तव्हांजो मोहबतूं हूंदियूं आहिनि बाबा जेके प्रोग्राम में तव्हां सपोर्ट कंदा आहियो, प्रोग्राम में तव्हां साथ ॾींदा आहियो, माशाल्लाह तव्हांजा इलाही सारा सुठा सुठा फीडबैक्स मिलिया असांखे ऐं खोड़ सारे माण्हुनि असांजी पोस्ट खे लाइक बि कयो आहे ऐं शेयर बि करे छॾियो आहे ऐं तव्हां डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमालु बि करे रहिया आहियो ऐं डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमालु जेके बि माण्हू कयो था असांखे फीडबैक ज़रूरु ॾींदा कयो, जेके बि ॿुधंदड़ माण्हू आहिनि उन्हनि खे ख़बर पइजी वञे त बाबा डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो जेको इस्तेमालु आहे उहो अगरि असां कयूं त असांखे बि भला रिज़ल्ट मिली सघंदा, छो त कुझु माण्हू इन चीज़ में कंफ्यूज़ हूंदा आहिनि त असांजी स्किन त थोरी सेंसिटिव आहे, कोई प्रोडक्ट सूटी न आहे कंदो त असां लॻायूं या न लॻायूं, त तव्हां बि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु करे सघो था। डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जेकी आहे न हे सभिनी माण्हुनि जे लाइ आहिनि ऐं सभु माण्हू मतिलबु सभु माण्हू लॻाए सघंदा, चाहे तव्हां मर्द हज़रात आहियो चाहे तव्हां ख़वातीन आहियो। डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो यूज़ कयो ऐं सुहिणा सुहिणा थी वञो।

ये बहुत ही प्यारा ऐसा गाना एंजॉय कर रही हूँ, गाना एंजॉय करेंगे जनाब, लेकिन साथ साथ आप लोगों को बताते चलेंगे भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में तो आप अच्छी अच्छी बातें जानते हैं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम का आप इस्तेमाल करेंगे तो कितने सारे आपको फायदे मिलने वाले, लेकिन उन लोगों को जरा बताएं जो लोग डी स्किन का फेस वॉश यूज करने वाले हैं। तो डी स्किन का जो फेस वॉश है ना वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अब तो भाई अवेलेबल हो चुका है, हर जगह से आप जाकर परचेज कर सकते हैं। और डी स्किन का जो फेस वॉश है ना ये हाइलोरोनिक एसिड सीरम से तैयार किया गया है, और ये जो हाइलोरोनिक एसिड सीरम होता है ना यहाँ की स्किन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि वैसे ही होता है भाई अगर आप खाने पीने का ख्याल रखते हैं तब भी आपकी स्किन में बहुत सारी चीजें जो है ना वो अच्छा वर्क करती है, लेकिन ये भी चीज होती है कि सिर्फ अपने चेहरे पर जो है ना वो मुख्तलिफ प्रोडक्ट लगाना भी काफी नहीं होता, अगर आपके चेहरे पर कोई अच्छा सा प्रोडक्ट सूट नहीं करता या फिर आप चाहते हैं कि कोई अच्छा सा प्रोडक्ट हमें मिलना चाहिए जिसका इस्तेमाल करें, और इसी चक्करों में आप प्रोडक्ट जो है वो चेंज करते रहते हैं, कभी कौन सा साबुन कभी कौन सा फेस वॉश, तो जनाब इन चीजों से जरा छुटकारा हासिल कीजिए, जरा जिंदगी में सांस की सुकून की सांस लीजिए, और यहाँ पर आपके लिए डी स्किन का फेस वॉश आ चुका है। डी स्किन का जो फेस वॉश है ना ये इतना जबरदस्त और प्रीमियम क्वालिटी का फेस वॉश है जिसका इस्तेमाल आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाने का काम करेगा, और जब आप इस्तेमाल करेंगे डी स्किन का फेस वॉश तो आपकी स्किन के अंदर तक जाकर आपकी स्किन को डीपली जो है ना वो क्लीन करता है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, आपकी स्किन को हमेशा हाइड्रेट रखता है। तो बहुत सारे आपने फेस वॉश ट्राई करके देखे होंगे, लेकिन जब आप डी स्किन का फेस वॉश ट्राई करेंगे ना तो बात ही अलग होगी, और आपके चेहरे पर जो निखार आएगा खूबसूरती आएगी उसकी तो भाई क्या ही बात होगी। तो डी स्किन का जो फेस वॉश है ये जरूर आप ट्राई करके देखिएगा, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम क्रीमें नहीं लगा पाते, तो अगर आप क्रीमें नहीं लगा पाते या अभी तक आपकी उम्र नहीं हुई है क्रीमें लगाने की तो आप ऐसा कीजिए डी स्किन फेस वॉश का यूज कीजिए, और डी स्किन का फेस वॉश जो है ना ये आप हर उम्र में इस्तेमाल कर सकते हैं, हर स्किन के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो लाजमी इस्तेमाल कीजिए और जरा अपनी खूबसूरती का ख्याल रखिए और खूबसूरत खूबसूरत होते जाइए। अच्छा साजिद हुसैन कहते हैं जी अच्छी क्रीम है बिल्कुल डी स्किन ब्यूटी क्रीम, वासु भाई आपको भी प्रोग्राम पसंद आ रहा है, थैंक यू वेरी मच प्यारे भाई। हिदायतुल्ला कहते हैं सिद्रा मैंने सुना है, जी जी बिल्कुल आपने सही सुना, ये मैंने भी देखा था और मैं मुझे थोड़ी सी एक्साइटमेंट हो चुकी थी कि भाई हाँ मेरा फेवरेट ड्रामा आने वाला है तो अच्छी बात है। हजार भाई कहते हैं कि सिस्टर आपको शाम 5 बजे वाले प्रोग्राम में सॉन्ग की रिक्वेस्ट करूंगा, जी बिल्कुल मैं आपका गाना चलाऊंगी, दिल से आप फरमाइश किया करें आपका गाना दिल से लगाया जाएगा। और फहीम भाई कहते हैं फेस वॉश वाला मैं हूँ अदा, बिल्कुल आप फेस वॉश लगाइए और अच्छे से लगाइए। कहते हैं कि अदा जब आपका शो सुनता हूँ तब हमेशा सबकी कॉल आना स्टार्ट हो जाती है, ऐसा क्यों होता है दादा, मैं बात खत्म करना चाहता हूँ वो बात को लंबा करते हैं। अरे भाई ऐसा उनको बोल दिया करे कि 1 बजे से लेकर 3 बजे तक मुझे कॉल नहीं किया करे ये टाइम जो है ना ये हमारा है बस, तो हमें दिया करे। और निधि कहती हैं कि

अच्छा कहती हैं बाकी तीन लोग पोस्ट को लाइक करो फिर 60 लाइक्स हो जाएंगे, हर चीज पूरी अच्छी लगती है। मैं भी यही चाहती हूँ, सारी चीजें जो ना मतलब मुनासिब होनी चाहिए और मिकदार में होनी चाहिए, तो बाकी दो लोग अभी लाइक करें पोस्ट को। और इसी के साथ साथ बतूल ने हमें जिस गाने की फरमाइश कर दी थी, सो फाइनली वो गाना हम लगाते हैं जी, और ये गाना हम सुनेंगे। बड़ी कोशिशों के बाद ये गाना मुझे मिला है, तो हम सुनेंगे। और बतूल आप जरा गाना सुनिए अपना और नाराजगी खत्म कीजिए अपनी। रिजवान भाई कहते हैं कि बहन सॉन्ग प्ले करो। भाई आपका गाना हम 5 बजे वाले प्रोग्राम में सुनते हैं, ठीक है।

0: It's 3 p.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम, इसमें मौजूद विटामिन ई बी.
4: असली चीजां चारों मसालों जी सुनियाण पर ट्रेडमार्क नंबर चोटी है 2000 डीसी करे खरीद कंदा जी जान चारों मसालो ढोरे जो हाजमो दुरुस्त जी जान चारों मसालो ढोरे सेहतमंद जी जान चारों मसालो जी जान चारों मसालो हर वेजे पंसार स्टोर आई जानवरन जे डॉक्टर खां नालो वठी खरीद करियो.
5: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है. सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है. अब जिम्मेदारी हम सब की है. हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं. पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी.
6: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज. मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे झुर्रियां और की महासे फौरन कम करे. इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं. नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में. एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें. दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम. हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें. मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक.

शाही बाजार बहरापुर 03000310509 03003105109।

0: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 03201800003
1: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385 69

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त, बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
1: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी एफ एम 94।

0: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इन्हन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ऐं पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो खां बचाओ जा ॿ कतरा ज़रूर पीआरियो, छो त इहे कतरा ॿारनि में मुदाफ़ती ताक़त खे वधाइनि था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾाम ॾियनि था। पोलियो मतलब ज़िंदगी भर जी माज़ूरी।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मेहराबपुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुश खबरी, पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज जे खर्च खां बचो। A1 आटोज पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहराबपुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक खरीद करियो। स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे। उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 आटोज थरी रोड मेहराबपुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक रिक्शा, पेट्रोल लोडर, रिक्शा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि। राबते लाइ मलिक खुशी मोहम्मद 0302-3295894 ऐं फेस मोहम्मद पहियार 0300-311-8956। A1 आटोस मेहराबपुर, नालो आहे एतमाद जो।
3: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहराबपुर, कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन, सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह, हर अरबा, खमीस, जुमे, छंछर, आचर ऐं सूमर।

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निचो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385 69

0: It's 4 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: रमन ऐं फॉर्मेशन जे ऑपरेशनल तैयारियुनि बाबति आगाह कयो वियो. फील्ड मार्शल सैदास मुनीर शहीद.
4: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमामु पखनि जे मुक़ाबले में ज़बरदस्त हवा. रॉयल इनवर्टर फैंस साथ ज़िंदगी.

0: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इन्हनि कदमनि खे रोके भी सघे थो। इन्हीअ करे जॾहिं बि पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करनि जी दस्तक थिए त दर खोलियो ऐं पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो खां बचाव जा ॿ कतरा ज़रूर पीआरियो, छो त इहे कतरा ॿारनि में मुदाफ़ती ताक़त खे वधाइनि था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾाम ॾियनि था। पोलियो मतलब ज़िंदगी भर जी माज़ूरी।
1: हर नज़र आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत गोरे, दाचुरियां और कील महा से फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सी बाजार 03000 310 5109
2: होंडा शोरूम मेहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जै में मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरा पर राबते जे लाए 03201800003।
3: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03000338569। खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और गैर जरूरी महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और

0: शेविंग से निजात, नरम साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें। रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर तक अक्सा मजबूत मेहराब पर 03008569।
1: गोठन में जी मिरापुर FM 94 जो दुकान पब्लिसिटी कराई कारोबार अड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
3: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
1: जी एड हालानी रोड मिरापुर
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकाणी
4: 092836।
5: अपना शहर अपना घर पूर हिरापुर की अवे FM 94।

0: सोनी अज त ॾाढी ख़ुशि थी लॻे।
1: हा साईं, ॻाल्हि बि अहिड़ी आहे।
0: भला मूंखे बि ॿुधाए कहिड़ी ॻाल्हि आहे।
1: चाचे, जुम्मन जी खुशहाली जो राग।
0: छा छा?
1: उहे पंहिंजे ढोरनि खे जी जान सखर चारो मसालो पिया खाराइनि। हीअ चारो ढोरनि जो हाज़मो दुरुस्त करे थो, ढोर सिहतमंद थियनि था, गोश्त सां गॾो गॾु खीर बि वधे थो।
0: वाह सोनी वाह, ॻाल्हि ॿुधाई। पर किथे मिलंदो इहो जी जान सखर चारो मसालो?
1: रेडीअ ते था ॿुधाइनि। ॿुध ऐं अची वठी अच।
0: मां हाणे ई थो वञी बि खीर वधायूं ऐं नोट कमायूं।
1: हा साईं हा।
2: जी जान चारो मसालो हर वेझे जानवरनि जे डॉक्टर खां नालो वठी ख़रीद करियो।
3: धर्म शुमटी कदमुना दयो निवी दुनिया पलोर रवानवी, खुद पोलियो रंस दा कदमुनो द्रवले हुंशी, नुपदी वजा द पोलियो द हर मुहिम पा महाल, द पोलियो आजी टकोलो जवाब वरकव, पल माशुमान पोलियो द मखनिवी कवल महेर उसकी, द बदन दिफाई ताकत ज्यातवी, औ द हगी द खूबुन वलवत वजर ने मुस्तक।
4: अवां जी स्किन डल लगे थी जी, स्किन के दियो एक नओ ग्लो पेश आहे। वाइट एज इनके बनाए फ्रेश, सॉफ्ट एंड ग्लो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक। रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट। हाने थियो खूबसूरत आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम। खूबसूरती जेका चमके हर डी, बेहतरीन लाए वाइट एज ब्यूटी सोप सा मिले चमकी सा गड। एज ब्यूटी इस अ प्रोडक्ट आयोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
5: पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मंज़ूर अहमद सिंह फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाब शाह कॉलेज नवारबा खमीस छंछर सुबुह 10 खां। मरीज़नि खे दन गज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमज़ोरी कन जो वण कन जो सूर घटि ॿुधण में अचणु शुगर ब्लड प्रेशर दिलि जा मर्ज़ फालिज खंघ टीबी मादे जी अल जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज़ हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाइन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो। इन्फेक्शन चेरी फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधणु।

0: सेल कंपनी जे मेट ते दस्तयाब विद सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस होंडा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे करायो इस जैपनी मोटरसाइकिल जी तमाम फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जरिए कई वन थी अजय कॉलेज जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते आसिम हुसैन आराई 03-35-12
1: मेहरापुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुशहाल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज़ जे खर्च खां बचो A1 आटोज पुराणी सिंध बैंक बिल्डता सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक खरीद करियो स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 आटोज थरी रोड मेहरापुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक इलेक्ट्रिक रिक्शा पेट्रोल लोडर रिक्शा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि राब्ते लाइ मलिक खुशी मोहम्मद 03023295894 and face Mohammed Pahiyar 03003118956 A1 Autos Mehrapur Nalo Ahi Etamad Jo खुशखबरी क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385569
2: अस्सलाम वालेकुम अदा
3: वालेकुम छो परेशान
2: है दुकान खोलियो तुम पर हले ही न तो छा
3: कान जी मशवरी कराई थई
2: ना दा
4: यान तोड़े गो मेरा पर FM 90 दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
2: मुझे दुकान जी बे डरंदी
3: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
4: ऑफिस जी मेरा पर FM 94 नजगर डिग्री कॉलेज हालानी
5: मंसूर अहमद मेमन 03 43

0: से हाँ वाके गुल्ला आओ बा
1: हर अदा तू जी मस्तानी तो कहिया दिल दीवानी
2: रुलाए छजी राजन के।

0: 4:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islamni Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: के ज्यादातर मुमालिक से पोलियो का खात्मा हो रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो मुमालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
4: हर बार जा नंदड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इनन कदमन के रोके भी सके तो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ऐं पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो खां बचाव जा ॿ कतरा ज़रूर पीआरियो, छो त इहे कतरा ॿारनि में मुदाफ़ती ताक़त खे वधाइनि था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾाम ॾियनि था। पोलियो मतलब ज़िंदगी भर जी माज़ूरी।
5: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज़ GFM 94।
6: The past is perpetually vanishing. There really is.

0: It's 5 p.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: ISPR मुझे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पारा कोर हेडक्वार्टर्स पिशावर जो दौरो कयो फोर्सेस के हर वक्त चौकस रहण ऑपरेशनल तैयारी बरकरार रखण जी हिदायत कई फील्ड मार्शल के केपीजे सिक्योरिटी सुरक्षा ते ब्रीफिंग दी वई सूबे में जारी दहशतगर्दन खिलाफ ऑपरेशन सरहदी इल्ज़ामन ऐं फॉर्मेशन जी ऑपरेशनल तैयारियुनि बाबति आगाह कयो वियो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर शहीदनि जी यादगार ते हाज़िरी भरी ऐं भेटा पेश कई पाकिस्तान सऊदी अरब तुर्की ऐं मिस्री परदेही वज़ीरनि जी न्यूयॉर्क में मुलाक़ात ख़िते जी सूरतहाल समेत मुख़्तलिफ़ मामलनि ते ॻाल्हियूं ख़िते जी सूरतहाल ऐं अमन जे क़याम वारियूं कोशिशूं जारी रखण ते इतफ़ाक़ नायब वज़ीर आज़म इसहाक़दार सऊदी ऐं लीबियाई परदेही वज़ीरनि सां अलॻि अलॻि मुलाक़ातूं बि कयूं G7 मुल्कनि हुसियन जी हिमायत ख़तम करण जो मुतालबो करे छॾियो गॾियल क़ौमनि में अमरीका बरतानिया कैनेडा फ्रांस जर्मनी इटली ऐं जापान जी परदेही वज़ीरनि जो इजलास हुसियन खां फ़ौजी कार्रवायूं रोकण धमकियुनि जो सिलसिलो बंदि करण ऐं गालियुनि तरफ़ वापसि अचण जो मुतालबो कयो वियो ईरानी सदर मसूद पेशिकियान गॾियल क़ौमनि जे इजलास न्यूयॉर्क रवानो परदेही वज़ीर अब्बास अराग़ची पहिरियों न्यूयॉर्क पहुतल साफ़ियुनि सां ॻाल्हाईंदे परदेही वज़ीर अब्बास अराग़ची पहिरियों न्यूयॉर्क पहुतल साफ़ियुनि सां ॻाल्हाईंदे चयो त गॾियल क़ौमूं आलमी अमन ऐं सलामती जो तहफ़ुज़ करण में नाकाम थियूं आहिनि आलमी इदारे ते एतमाद बि ख़तम थी चुको आहे ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर बाकर कालिपाफ चयो आहे त हाणे ईरानी मिज़ाइल दुनिया में कंहिं बि हंध ते टारगेट खे निशानो बणाए सघनि था ट्रंप पंहिंजी ताक़त ईरान ते मड़ी नथो सघे ईरान जमी बीठल आहे
4: पाकिस्तान के दौरे में भी उन्हें आना चाहिए और जरा जल्दी जल्दी आना चाहिए और वो तशरीफ लाए और उनके साथ हम जो है वो बात करेंगे और उस दिन अगर वो हमें बताते हैं कि ये रिलीफ हम दे रहे हैं तो फकिया और अगर रिलीफ नहीं मिलेगा तो फिर हमारे पास अक्टूबर का पहला हफ्ता भी है पहला अशरा भी है हम उसी तरीके से उसी कुव्वत से अपने इस लॉन्ग मार्च को कंटिन्यू करेंगे
3: जवाब इस्लामी पेट्रोलियम लेवी खिलाफ इस्लामाबाद मार्च मुलतवी करे छॾियो रिलीफ न मिलण जी सूरत में अक्टूबर में ॿीहर मार्च करण जो ऐलान जवाब इस्लामी जे अमीर हाफिज़ नईम चयो आहे त احتجاج ملتوی کرن جو فیصلو وزیر اعظم کی درخواست تے کیا ہے جماعت اسلامی کی قیادت وطن واپسی تے وزیر اعظم سے ملاقات کرے ملاقات دوران لیوی تے عوام کے لیف نہ دینو ویو تا اکتوبر میں بیہر لام واش کرنا سی وفاقی حکومت جو دھڑے والے معاملے تے پی ٹی آئی سے گالیوں کرن کا انکار وفاقی وزیر تعالیٰ تارڑ چیو ہے تا पीटीआई वारनि जी ॻाल्हियुनि बाबति तारीख़ सुठी नाहे ऐं त कंहिं सां ॻाल्हियूं करणियूं आहिनि उन्हनि सां ॻाल्हियूं करण जो को फ़ाइदो बि नाहे मुमलकती वज़ीर तलाल चौधरी चयो आहे त पानी जूं बैनर पार्टी ते कब्ज़े करण लाइ वॾो हादसो चाहिनि थियूं इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो हुकुम सभिनी खे मञणो पवंदो न मञीदड़ ख़िलाफ़ कार्रवाई थींदी

वॾे वज़ीर मुआद अली शाह सां खुराक जे आलमी इदारे जी नुमाइंदे अनीता हर्ष जी मुलाकात। स्कूलनि में फ्राहमी अॻुवाट कदमनि ऐं समाजी सरकार वधाइण ते सिंध हुकूमत ऐं गॾियल क़ौमनि जे खुराक बाबति आलमी इदारे विच में सरकार वधाइण ते इतफ़ाक़। मुआद अली शाह चयो त सिंध मौसमियाती तब्दीली सबबि सभ खां वधीक मुतासिर थींदड़ ख़िततनि में शामिल आहे। फज़ाई कोर्ट खे मुंहुं ॾेई ऐं स्कूलनि में हाज़िरी बहितर बणाए मज़बूत सिंध जो बुनियादु रखियो पियो वञे। मीरपुर मातेलो वेझो ॿिनि ॿुधियुनि में सगावती तकरार सां जहिड़ो टे ॼणा

कख सड़न आह झाय अल्लाह त उन लगे तिन खे सुहारी सिंध के मलुक मिट्टी से रहंदर तमाम मौजिज बुधंदड़न के लाखीणे लतीफ जी बोली सोहणा सलाम ऐं जी टीम जा कुर्ब कबूल पवन मौजिज सामई नवां जा कहिड़ा हाल आहिनि अवां खुशबाश आहियो ठीक ठाक आहियो चाक चङा भलायूं तरह जोड़ो तो खीर में खंड हुजो मेवन में अंब हुजो ऐं कॾहिं अवां जी मुर्क मेरी न थिए सदाई अवां जे लुड़कनि जो ॾुकार ऐं मुर्कनि जो सुकार छा अवां ॾुखियो ॾींहुं न ॾिसो जुग जुग जीओ उमिरि कंदा जीअं टिड़ंदड़ मीरप्रकाश जी एफ एम मातली जी एफ एम मटियारी जी एफ एम मेहरापुर जी एफ एम मोरो जी एफ एम सकरंड जी एफ एम लाड़काणो ऐं जी एफ एम सखर

सिंधड़ी जी शाम में कवंदो सलाम जो प्यार ऐं पाबू आहे मोहबतुनि लफ़्ज़नि ऐं गुलाबनि जहिड़ा ख़ूबसूरत जज़्बा तव्हां जे ख़िदमत सामाइन लिखणो ॾियो पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखो पंहिंजो नालो लिखो ऐं 888-188-81 ते मैसेज ॾियारे मोकिलिजो। जी हा 888-188-81 असांजो नंबर, हुन ते मैसेज मोकिलिजो। हुन मैसेजिस शामिल कंदासीं ऐं ॿी कलाक में हुनजी कॉल्स बि शामिल कंदासीं। आवाज़ खे ॿुधी यकीन।

मज़ीद सामाइन ही आहे जी एफ एम 88 रेडियो नेटवर्क। अवां शो बुधो पिया सां मां सिंधी शाम में अवां जो आरजे वने मेज़बान यूनुस अवां जो ऐं शाद आबाद सर्दी जी शिदत जो तमामु घणी आहे ऐं सभिनि खे सेट हूंदो त कॾहिं जूं सर्दियूं अचनि कॾहिं जी मौसम थधी थिए। फ़िलहाल जेका आहे उहा काफ़ी गर्मी पंहिंजो पाण खे पंहिंजी फैमिली खे पंहिंजे ख़ानदान खे पंहिंजे बचनि खे गर्मी जी शिदत खां बचायूं, छो त हीट स्ट्रोक अहिड़ी शइ आहे जेका इंसान जी जान वठी सघे थी। ऐं शदीद जेका गर्मी आहे उन में कोशिश कयो त वधि में वधि पाणी पियो, कोशिश कयो त मथे ते कपिड़ो रखो, उसियल कपिड़ो हुजे त वधीक बहितर आहे, न त को टुवाल वग़ैरह रखो। ऐं ईअं ई जेको आहे हल्का कपिड़ा पायो जेके हल्के कलर में हुजनि, ताकी तव्हांखे गर्मी जी शिदत महसूस न थिए। गर्मी में जेकर को ज़रूरी हू जेका हूंदी आहे शिदत वारी गर्मी हूंदी आहे जेके हाणे अंग्रेज़ीअ में हीट स्ट्रोक चवंदा आहिनि। हीट स्ट्रोक हिकिड़ो अहिड़े क़िस्म जी बीमारी आहे जंहिंजी को तकिड़ो इलाज बि कोन्हे, ऐं उहो बसि माण्हू गर्मी जी हुन शिदत खां न रुगो मुतासिर थी परेशानीअरनेस ॾियूं, पर असां पंहिंजे ॿियनि माण्हुनि खे ॿुधायूं, ख़ासि तौर ते पंहिंजा समूरा जेके गर्मी में जेको आहे कमकार करणो पए थो, त उते सभु खां पहिरियों जेको कमु आहे उन लाइ कुझु कजे। त हूअं त ॿियो त जेकॾहिं न बि करे सघिजे थो त जेके गर्मीअ खां बचाव जा जेके आहिनि उनखे अपनाइजे। जेके असांजा पोरियत मज़दूर माण्हू आहिनि जेके जेके ॿाहिरि में या कारखाननि ते कमु कनि था, तमामु उन गर्मीअ खां बचो कोशिश जे कपिड़े गंदी ऐं महसूसु थिए घणी गर्मी त वेंझणु सेंझणु खपे, ताकी हुन जो जेको जिस्मी जेका आहे उहो सघे सभु जारी रहंदियूं। पर असांजी ख़्वाहिश इहा बि हूंदी में शिरकत कंदव ऐं असीं अव्हांजी शिरकत खे यकीनी तॾहिं सम्झंदासीं जॾहिं तव्हांजो हिकिड़ो ऐं बिल्कुलु बिल्कुलु उहो ई साॻियो आहे जेको अव्हां अॻे मोकिलींदा आहियो, पर छाकाणि जो पंहिंजी तव्हांखे ॿुधाइणी हूंदी आहे उहा हिकिड़ी कमांड हूंदी आहे MTI। MTI माना शॉर्ट अखर आहे असांजो, हुन में तव्हांखे MTI लिखण खां पोइ थोरो स्पेस ॾियणो आहे, पोइ पंहिंजे ॻोठ शहर जो नालो लिखणो आहे, पंहिंजो नालो लिखणो आहे ऐं सेंड करणो आहे 8881 सेंड करे छॾियो, त पोइ उहो तव्हांजो जेको मैसेज आहे उहो असां इनशाला शामिल करे वठंदासीं। जेके महिरबानी असांखे प्यार सां ध्यान सां पंहिंजा ऐप सां ॿुधनि पिया, त मां हिकिड़ो ट्रैक प्ले करे वठां, उन खां पोइ हिकिड़ो ब्रेक खां पोइ जॾहिं वापसि ईंदो। फ़िलहाल पाण हलूं था हिन सुरीले ट्रैक जो ॿुधूं।

0: प्लास्टिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी है हरों को बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मुस्तकिल माजूरी
1: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾिलो किनकिश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾी अव्हां खे रेडियंट लुक कमाल सॼी स्किन जे लाइ परफेक्ट ख़ूबसूरती के हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल इस्तेमाल करे ब्यूटी सोप वाले चमार इंटरनेशनल गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द बशीर अहमद मेमन लेकर जरूरी बालों को खत्म करने के और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज अब गैर सकर खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें नजद अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराब पर 03003385569।
2: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिशियन सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सोम

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभिनी बीमारियुन जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301-2196-851।
1: क्या आप बाल छोड़िए शहर में एलर्जी

0: थरी रोड 0300-33-8556। मेहराबपुर भरपासे की आवाम लाए खुश खबरी, पेट्रोल के खर्च मां जान छो रोज के खर्च का बचो। A1 आटोज पुरानी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहराबपुर ता सुपरीद करियो। स्पेयर पार्ट्स माहिर मकेनिक की सहूलत पिण मौजूद है। उन सा गड सिंध शादी हॉल से गडो गड A1 आटोज थरी रोड मेहराबपुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक रिक्शा, पेट्रोल लोडर, रक्षा CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिन। राबते लाए मलिक खुशी मोहम्मद 0302-3295894 फेस मोहम्मद पहियार 0300-311-8956। A1 आटोस मेहराबपुर नालो आहे एतमाद जो।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहराबपुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पर एतमाद बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहराबपुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग पिट्राइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिनमें मिलकल जी कार्डमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स। एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहराबपुर। राब्ते जे लाए आसिम हुसैन आराई 0307-35-92-120।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थे
4: शरण तोड़े गोठन में जी मेहराबपुर FM 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेहराबपुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस बुदा।
4: ऑफिस जी मेहराबपुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेहराबपुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347।
5: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज़ GA FM 94।

इरफान अली थेबो असांखे ॿुधी रहियो आहे खबड़ी भिट खां। इरफान थेबा साहब तव्हांजो बि तमामु घणी महिरबानी, अवां असांखे खबड़ी भिट खां ॿुधो पिया ऐं हाजी सुल्तान लुंड खां प्यार अली लुंड ॿुधे पियो, हाजी ग़ुलाम ख़ासकेली खां झंडे मरी खां क़ुर्बान अली ख़ासकेली ॿुधे पियो। अव्हांजो बि तमामु घणी महिरबानी क़ुर्बान, वेलकम था चऊं तव्हांखे। लुटको मोरी खां असांखे ॿुधे थो अब्दुरहमान लगारी ऐं मिठा खान लगारी, तालिब हुसैन लगारी, अवांजे तमामु घणे ऐं मिठा खान लगारी, गोठा खान लगारी, लुटको मोरी खां ॿुधो था तमामु घणियूं मोहबतूं वञो ऐं भली कार था चऊं तव्हांखे। अवां शाद ऐं आबाद हुजो, कुर्ब तव्हांजा। मज़ सामाइन, ज़बरदस्त ट्रेक आहे गॾु ॿुधूं था, उन ट्रेक ऐं बिल गुज़ारींदा अञा बि घणो वक़्तु पाण गॾूंदासीं इनशाला, ऐं सवा कलाक जे बाक़ी साथ हूंदो, असांजो साथ हूंदो। सो तव्हांजूं मोहबतूं आहिनि जो तव्हां असांखे ॿुधो। ॻाल्हियूं कंदासीं, तव्हां जल्दी जल्दी सां मैसेज करे वठो ताकी हिननि 15-20 मिंटनि जो साथ पंहिंजो जेको मैसेज आहे तव्हांजो साथ भरपूर शामिल थी वञे। त पोइ लिखो MTI स्पेस ॾियो, पंहिंजे ॻोठ शहर जो नालो लिखो, पंहिंजो नालो लिखो ऐं 88 81 888 ते मैसेज हाणे मोकिले।

सोना पर नहीं, हर घर की अमानत होती है, इसीलिए बैंक इस्लामी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 111-475-264 या bankislami.com.pk पर अप्लाई

0: करें, शराइत व ज़वाबित लागू हैं।
1: हर माशूम वरकोटी वरकोटी कदमुना द यौनवी दुनिया पलोर रवानवी जा द पोहिम पमहाल द पोलियो टीम द दरवाजे औ द हगे द खूबुन वलवत वज़री मुमी पोलियो यानी मुस्तकिल माजूरी।
2: हर बार जा नंदड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इनन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ऐं पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो खां बचाओ जा ॿ कतरा ज़रूर पीआरियो, छो त इहे कतरा ॿारनि में मुदाफ़ती ताक़त खे वधाइनि था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾाम ॾियनि था। पोलियो मतिलब ज़िंदगी भर जी माज़ूरी।
3: फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड 1.5 साल ऐं बीएड 2.5 साल जूं दाखिलाऊं शुरू थी वयूं आहिनि। जेकॾहिं तव्हां जो ख़्वाब उस्ताद बणजण आहे त ही बहितरीन मौक़ो हथनि मां न वञायो। हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमी शोबे सां लाॻापियल केतिरनि ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे, तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो। सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे, तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था। असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स, हाई स्पीड वाईफाई, तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी, मयारी तालीमी माहौल। ख़ास ऑफर महदूद वक़्त लाइ आहे, तंहिं करे अॼु ई राब्तो करियो। ऑनलाइन अप्लाई लाइ forwardcollege.pk, वधीक ॼाण लाइ 0304-282-7274। ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं। एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी, ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं, वापरा कॉलोनी, खैरपुर। अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बणजो। पहिरियों कदम वधायो।
4: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो GFM 94।
5: गोरियो कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोम

88 रेडियो नेटवर्क सां मुखातिब आहे। तव्हां शो ॿुधी रहिया आहियो जंहिंजो नालो आहे सिंधड़ीअ जी शाम। मुंहिंजे मेज़बान तव्हां सां मुखातिब आहे यूनिस बकारी। जी मज़ सामाइन, अव्हांजा खोड़ सारा मैसेज आहिनि जेके शामिल करे वठंदासीं, ऐं जेका न्यूज़ हूंदी 6 वग़ैरह उन खां पोइ असां उनजी कॉल्स बि शामिल कंदासीं। मैसेज पहुतो आहे असांखे, जी हा, अमीर अली खासकेली ऐं सिराज खासकेली जो, मातली टंडो गुलाम अली रोड खां। तमामु घणी मोहबत, अव्हांखे बि चवंदासीं भलीकार। ऐं असांखे हाजी सुओ साहब ॿुधे पियो, हाजी सहतो साहब, सॉरी हाजी सहतो साहब असांखे जॉइन करे थो। हाजी सहतो साहब संदसि ॻोठु हाजी सहतो हुतां खां ॿुधे पियो, ऐं शहबाज़ खासकेली ॿुधे पियो, साले सोलंगी ॿुधे पियो, ताज मोहम्मद सहतो ॿुधे पियो, ऐं आसिफ़ सहतो साहब ॿुधे पियो। तमामु घणी महिरबानी। ऐं असद सहतो, थैंक यू जी, ॻोठु आहे हाजी सहतो। अव्हांजा वॾा वॾ, अव्हांजी मोहबतूं अव्हांखे चवंदासीं भलीकार। ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो, तारनि में चंडु हुजो, खीर में खंडु हुजो, ऐं मेवनि में

हुजो अवां जो मोहब्बतूं भली कर चवंदासीं। मुरीद मंगरियो संगराड खां नज़ीर अहमद मंगरियो साहब ॿुधे पियो अवां लिखियो त दुनिया जे हर शइ मां फ़ाइदो वठो पर कंहिंजी मजबूरीअ मां कॾहिं फ़ाइदो न वठिजो। वाह वाह ज़बरदस्त चूंड अवांजी, तमामु घणी महिरबानी। ऐं सरफराज़ राजड़ खिपरो खां असांखे ॿुधे थो सुमार भील ऐं दिलीप कुमार मेघवाड़ ऐं अब्दुल हकीम बजीर अवां जूं तमामु घणियूं महिरबानियूं। वॾा वॾा अवां जा जो अवां असांखे ज्वाइन कयो आहे। ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो, तारनि में चंड ऐं खीर में खंडु हुजो। मोहम्मद अज़ीज़ जरवार असांखे ॿुधे थो ॻोठ आलम खान जरवार खां, अवां जूं बि तमामु घणियूं महिरबानियूं। मोहबतूं जो अवां असां सां शामिल थी चुका आहियो, बल्कि जुड़ी चुका आहियो, इहा अव्हांजी मोहबत आहे। ऐं असीं अव्हांखे पंहिंजे मोहबतुनि में वेलकम ऐं भली कार चवंदासीं। जी जनाब, असांखे मैसेज पहुतो आहे, ॻोठ आहे मोहम्मद तैयब थेबो, उतां खां हबीबुला थेबो साहिबु ॿुधे पियो। अव्हां लिखियो यूनुस साहब सलाम, वालेकुम सलाम मिठा भा, थैंक्यू, ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो। ऐं जनाब मैसेज पहुतो आहे इस्माइल ख़ान नोतकाणी खां। जी हा जनाब, अलाह बचायो नोतकाणी साहब ॿुधे पियो। मोहबतूं ऐं वॾा वॾा वांजा भलीकार चवंदासीं तव्हांखे। तव्हां असांखे ज्वाइन करे वरितो आहे, अवां असां सां साथ निभायो आहे, अवां जे हिन साथ ते असीं अवां जा शुक्रगुज़ार आहियूं। तमामु तमामु ऐं तमामु घणियूं महिरबानियूं। जी जनाब, आपका शो नाइस है, आपका प्रोग्राम नाइस है। अब्दुल्ला असांखे मेहर साहब मेहरापुर मां, शायदि एम पी के, अच्छा एम पी के माना मीरपुर ख़ासि मां यादि कयो। तमामु घणियूं महिरबानियूं अब्दुल्ला मेहर साहब, अवां जो मैसेज पहुतो, ॾाढी ख़ुशी थी। शाद ऐं आबाद हुजो, तारनि में चंड ऐं खीर में खंडु हुजो। ऐं ॻोठ रसूल बख़्श शंभाणीअ खां असांखे ज्वाइन कयो आहे अब्दुल वहीद ऐवाण। अच्छा जी, तव्हां लिखियो त शो ज़बरदस्त आहे, तमामु घणी महिरबानी, भलीकार चवंदासीं तव्हांखे। वॾा वॾा वांजा, ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो, थैंक्यू ऐं जुग जुग जीओ, अव्हां जे लाइ इहे ई दुआऊं। जी मोज़ सवीन साज़ आवाज़ साथ ऐं पंहिंजाइप जो जेको साथ आहे उनजो पंहिंजो रंग हूंदो आहे, पंहिंजो हिसाबु हूंदो आहे। सो तव्हां सभिनी जी तमामु घणी महिरबानी, मां तव्हांजो शुक्रगुज़ार आहियां जो तव्हां असांखे यादि कंदा आहियो। ऐं यकीन जेको ईंदड़ कलाकु हूंदो कॉलुनि वारो। ऐं ॻोठ सोहराब निज़ामाणी खे हिकु दफ़ो ॿीहर मोहबती मंगण निज़ामाणी यादि कयो आहे। नंढड़े अहसान अली निज़ामाणी यादि कयो आहे। तव्हांजी तमामु घणियूं महिरबानी, थैंक्यू। अव्हां चयो त असांजा नाला शामिल कयो, साईं तव्हांजो ई ॿियो मैसेज बि असां शामिल करे छॾियो आहे। तव्हांजूं मोहबतूं आहिनि, तव्हांजूं मोहबतूं ऐं भली करे आया, जी करे आया। जी जना, मैसेज हिकु दफ़ो ॿीहर असांखे घोटकी खां मिलियो आहे। जी जनाब गुलशेर मंगरियो साहब, अव्हां जूं मोहबतूं अव्हां बि शामिल थी चुका आहियो। सोणा साईं किरण कुर्ब तव्हांजा। ओके जनाब, साज़ ऐं आवाज़ जे साथ में साथ आहे मोहबतुनि जो, ऐं मोहबतुनि जे साथ ते असीं वठी था हलूं अव्हांखे एजाज़ साईंअ जी शायरी ॾांहुं, जितां फरज़ाना बहार जो मिठड़ो आवाज़ हवा में गूंजे थो। गॾिजी ॿुधंदासीं ऐं उन खां पोइ ब्रेक वठंदासीं, बल्कि शायदि असां ब्रेक न वठूं, ब्रेक हली पाण अॻिते वठंदासीं। ग़ुलाम हुसैन जलालाणी जो ॻोठु आहे झोल में, उतां खां नाज़ फ़क़ीर मोहम्मद जलालाणी ॿुधे पियो, महबूब नास जलालाणी ॿुधे थो, ऐं मुख़्तियार नास जलालाणी, आरज़ू असलम जलालाणी, अव्हां जी महिरबानी। मां लिखियो असलामु अलैकुम, वालेकुम असलाम, ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो। जी जनाब, साज़ आवाज़ जे साथ में ब्रेक आहे नंढड़ो, ऐं हीउ हूंदो म्यूज़िकल ब्रेक। इन खां पोइ जॾहिं मां वापसि ईंदुसि, तव्हांजो लॻो ज़बरदस्त ट्रैक प्ले कंदुसि, जंहिंखां पोइ असां हलंदासीं ईंदड़ जेको ब्रेक हूंदो उन ॾांहुं, ऐं उन खां पोइ वापसि जॾहिं ईंदासीं त पोइ हूंदियूं अव्हांजो कॉल्स, उन जे लाइ असां अव्हांखे नंबर बि ॿुधाईंदासीं ऐं ॻाल्हियूं कंदासीं अव्हां सां।

म्याण खां बाबू मल्हा साहब दे पियो बाबा नी अवां म्याण खां असां खे जॉइन कयो आहे भली कार ऐं नफ़ीस खटी म्यापोटा तलहार खां ॿुधे पियो नफ़ीस खटी अवांजो तमामु घणी महिरबानी ऐं हाफ़िज़ अब्दुल जब्बार खटी हाफ़िज़ मोहम्मद हारून खटी असांखे ॿुधी रहिया आहिनि पाटार बदीन खां वेलकम था चऊं।

ही आहे GAFM 88 रेडिओ नेटवर्क। हा शो ॿुधो पिया सिंधड़ी जी शाम यूनुस बकारी जे नाम जी जी मुझे नाम न मुझे सलाम अवां जे नाम तपाईंको जी ही ट्रैक अहमद मुगल जो एंजॉय कयूं था ऐं दर्दी लेने गीत सां न्यूज ब्रेक ॾांहुं हलंदासीं जितां खां अवां खे ख़बरूं चारियूं ॿुधाईंदासीं ॾेह तोड़े परॾे जूं उतां वापसि अची बाक़ी ॻाल्हियूं कंदासीं अवां सां टेलीफोन कॉल्स वारियूं पोइ साथ निभाईंदो न फिलहाल ही दर्दीलो साज ही आवाज अजो तक अच्छी बताऊं हन का पो न्यूज ब्रेक रह लंदासी उन का पो कमर्शियल ब्रेक हुंदो आई जी ही वापस इंदा जी पूरी पूरी असानी नशरियात अवां जे नाम हुंदी।

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: G7 मुल्कन ईरान का हौसियन की हिमायत खत्म करने का मुतालबो कर छोड़ो। गडल कौमन में अमेरिका, बरतानिया, कैनेडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली ए जापान के परदेही वजीर जो इजलास। हौसियन का फौजी कार्रवाई रोकण, धमकियों को सिलसिलो बंद करण, गालियन तरफ वापस अचान का मुतालबो कर। ईरानी सदर मसूद पेशिकियान गडल कौमन इजलास में शिरकत लाए न्यूयॉर्क रवानो। परदेही वजीर अब्बास अराग़ची पहरी न्यूयॉर्क पहुतल। साफियन से गालाइंदे अब्बास अराग़ची गडल कौमू आलमी अमन ए सलामती को तहफ़ुज़ करण में नाकाम थी। आलमी इदारे से एतमाद भी खत्म थी चुको है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कारीफाफ चयो है ता हाने ईरानी मिसाइल दुनिया में कें भी हद ते टारगेट के निशानो बनाए सकन था। ट्रंप ताकत ईरान ते बढ़ी नथो सके, ईरान जमी भी चला है। फौज दहशतगर्दन के शिकस्त दियण ए मुल्क में जिटाधार अमन के क्याम लाए पुरसम है। वतन लाए शहीदन की दिनल कुर्बानियन के विसारे नथो सके। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जू पिशावर गैरेजन के दौरे दौरान गालियों। ISPR मूजिब फील्ड मार्शल से आसिम मुनीर पारां कोर हेडक्वार्टर्स पिशावर जो दौरो कयो। फोर्सिस के हर वक्त चौकस रहण ए ऑपरेशनल तैयारी बरकरार रखण की हिदायत कई। फील्ड मार्शल KKP की सिक्योरिटी सूरतहाल ते ब्रीफिंग डिनी वई। सूबे में जारी दहशतगर्दन खिलाफ ऑपरेशन, सरहदी इंतजामन ए फार्मेशन से ऑपरेशन तैयारियों बाबत भी आगाह किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर शहीदन की यादगार से हाजिरी भरी ए भेटा पेश कई। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज जो ऑपरेशन, 6 दहशतगर्द मारी गया, 9 शकी गिरफ्तार। सिक्योरिटी जरिए मूजिब बलूचिस्तान के इलाके सारा तंगी में ऑपरेशन किया। कार्रवाई दौरान हिंदुस्तानी फितने से भागल 6 दहशतगर्द मारी गया। मारी वाले दहशतगर्दन वटा हथियार ए बारूदी मवाद हथ किया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी ए बदअमनी पुठियां भारत तालिबान गठजोड़ एक भेरो बीहर वाइकी। मोदी सरकार पाकिस्तान मुखालिफ नापाक मकसदन लाए अफगान सद तालिबान रजीम के इस्तेमाल कर लगी। वधिक एक अगुणी भारतीय फौजी ऑफिसर पाकिस्तान में दहशतगर्दी लाए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल जो वाज एतराफ़ करे वरतो। कर्नल रिटायर्ड शैलेंद्र सिंह टीवी प्रोग्राम में एतराफ़ कर भारत सरजमीन खिलाफ इस्तेमाल करे पैंजा मकसद हासिल करण चाहे तो। भारत सदा ही यो चाहिंदो आहे ता पाकिस्तानी फौज जो ध्यान पाक अफगान सरहद ते हुजे। बलूचिस्तान तोड़ी खैबर पख्तूनख्वा में TTP बेन दहशतगर्द तंजीमन सा उलझल रहे।
0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000-3105-109, 03000-3105-109।
3: मालवन भारन लाए खुश खबरी, 50 सालन का आजमायल सखर वारन जो जी जान ढोर चारो मसालो, जानवरन में खीर ऐ गोश्त वधाए, अम्हां के खुशहाल बनाए। हर पंसार ऐ जानवरन जे डॉक्टरन वट दस्तियाब आहे।
4: फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड 1.5 साला ऐं बीएड 2.5 साला जो दाखलाऊं शुरू थी वयूं आहिन। जेकॾहिं तव्हां जो ख्वाब उस्ताद बणजण आहे त ही बेहतरीन मौक़ो हथनि मां न वञायो। हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमी शोबे सां लाॻापियल केतिरनि ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे, तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो। सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे, तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था।

0: असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स, हाई स्पीड वाईफाई, तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी, मयारी तालीमी माहौल। ख़ासि ऑफर महदूद वक़्त लाइ आहे, तंहिं करे अॼु ई राब्तो करियो। ऑनलाइन अप्लाई लाइ forwardcollege.pk, वधीक ॼाण लाइ 0304-282-7274। ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं। एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी, ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं, वापरा कॉलोनी, खैरपुर। अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बणजण ॾांहुं पहिरियों क़दम वधायो।
1: दुनिया के ज्यादातर मुमालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ 2 मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन 2 मुमालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के 2 कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि।
2: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालानी।
3: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 0300-320-4372 and 0242-460-1000।
4: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
1: न अदा।
0: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हाँ दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
0: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
3: 0301-399-2836।
4: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज़ GA FM 94।

0: हिकु कॉलर लाइन ते मौजूदु आहे, ॾिसंदासीं केरु आहे. अस्सलामु अलैकुम. अस्सलामु अलैकुम. अदा अव्हांजो आवाज़ु कटिजे पियो, सिग्नल वारी. जी जी, छा पुछणु चाहींदा डॉक्टर साहिब खां? जी
1: हाणे ॾिठो हो ॿ दफ़ा टे वरी मूं ते हाणे फालिज थियो आहे, माना अख हिकु अख खां ॿ परे खां माण्हू ॿ ॾिसण था.
0: सही
1: टी जो मूंखे ॾस ॾियो को.
0: ठीकु आहे, रेडियो ॿुधो, मां मूंखे ॿुधायो थो डॉक्टर साहिबु.
1: हा, रेडियो मां ॿुधां.
2: जी बिल्कुलु, अदे ॿुधायो त मूंखे फालिज पहिरियां थियो ऐं का ट्रीटमेंट अदे हिकु त कराई आहे ऐं हुन मां वरी उनखे वरी दुबारा थियो आहे. त बहितर ई आहे त जेतिरा ट्रीटमेंट कराई आहे त उते वरी दुबारा ॾेखारनि त बहितर आहे, वरना असांजी क्लिनिक चेयरमैन होम्योपैथिक क्लिनिक ते रूबरू ॾेखारे वञनि त बहितर, छो जो फालिज को हिकिड़ी आम तकलीफ़ बीमारी न हूंदी आहे जंहिंजो माण्हू को परे खां वेही करे ऐं ॾस पंधु ॾेई सघे थो. उनजी इलाज ई थींदो आहे, उहो किथां बि माण्हू कराए उनजी इलाज ट्रीटमेंट जेको आहे सो कराए एहतियात करे इनशा ताला. जेकॾहिं हुनजो ब्लड प्रेशर वधे थो त हुनखे लूण जो इस्तेमालु बिल्कुलु बंदि करणु घुरिजे. सणभ, लूणु, तरपच, खटी शइ वग़ैरह बिल्कुलु इस्तेमालु न करे ऐं जेको आहे सो वधीक रूबरू ॾेखारनि त उहो बि ठीकु आहे.
0: जी सर, हिकु ॿियो कॉलर लाइन ते मौजूदु आहे, ॾिसंदासीं कीअं आहे. अस्सलामु अलैकुम.
3: वालेकुम सलाम सर, असांखे कुलरे जो सूर आहे, इहो असां तव्हांजी ख़बरूं ॿुधी असां.
0: जी जी,
3: महिरबानी सां तव्हां तकरीर जो बयान कयो आहे, फोन कयो आहे. असांखे इहो मर्ज़ु आहे कुलरे जो.
0: सही सही, केरु ऐं किथां पिया ॻाल्हायो?
3: असां साईं हे कोटी शहर मां साईं.
0: अच्छा, ठीकु आहे डॉक्टर साहिबु, तव्हांखे ॿुधाए थो. जी सर,
2: हिकु त अदे जी महिरबानी असांजो नालो ॿुधी ऐं अदे ॻाल्हि कई आहे ऐं महिरबानी उन्हनि सभिनी दोस्तनि जी, उन पेशंट्स जी, मुंहिंजनि जी, जेके असां ते हिकिड़ो अच जो यकीन अलाह जी ज़ात ते, लेकिन उन्हनि जी महिरबानी आहे ऐं हू जेको आहे सो उन यकीन जे महावे असां वटि ईंदा आहिनि ऐं अलाह ताला जी महिरबानी सां हुननि खे शिफ़ा मिलंदी आहे. हाणे बि कुझु दोस्त आया पेशंट त सही, असां तव्हांजो नालो ॿुधी आया, असीं नालो इन हवाले सां जो कंहिं दोस्त खे तकलीफ़ हुई उन्हनि खे फ़ाइदो पियो इन ई मर्ज़ में तव्हां ॾे आया ऐं अॼु वरी असां तव्हांजो नालो ॿुधियासीं. उन्हनि जी छो जो उन्हनि जी महिरबानी बजा हूंदी आहे. अचूं था अदे जे मर्ज़ जे तरफ़ त कुन रग जो सूरु आहे. त ॾिसो, कुन रग जो सूरु यानी हिकिड़ी नर्व वेन हूंदी आहे जेकी ब्लॉक थी वेंदी आहे, रत जी सर्कुलेशन उनमें ख़तमु थी वेंदी आहे, रग दॿजी वेंदी आहे. उनजी ट्रीटमेंट असां काफ़ी दफ़ा उन ते प्रोग्राम बि कया आहिनि पंहिंजे प्रोग्राम जे तवसुत सां ऐं इन्हनि असांजे ॿुधंदड़नि ताईं इहो पैगाम ॾिसो, इहो ई फ़ाइदो हूंदो आहे हिन प्रोग्राम सां. प्रोग्राम जे हिकिड़ी अवेयरनेस आहे इहो प्रोग्राम ज़ाहिरी त असां, मूंखे ॾाढी इंतिहाई ख़ुशी थींदी आहे जॾहिं मां हीउ प्रोग्राम करणु ईंदो आहियां, छो जो अलाह ताला तमामु नंढनि नंढनि ॻाल्हियुनि खां बि ख़ुशि थींदो आहे. त हीअ हिकिड़ी क़िस्म जी अवेयरनेस आहे, असां जेतिरो थी सघे थो असां पंहिंजे ॿुधंदड़नि ताईं हिकु पैगाम पहुचाईंदा आहियूं. त माना जेकॾहिं लख माण्हू ॿुधनि था, जेकॾहिं कंहिं ॾहनि माण्हुनि बि उन ते अमल कयो, असांजे लाइ हीउ तमामु हिकिड़ो सवाब वारो कमु आहे ऐं कोशिशि इहा ई हूंदी आहे ऐं इहो ई असां जेको आहे सो मिशन आहे ऐं इहो ई मिशन जारी रहंदो. ऐं अदे खे बि ॿुधाईंदासीं, ॾिसो उन ॻाल्हि कई त कुनरग जो सूरु आहे त इन में घणा दोस्त छा कंदा आहिनि जो मुंहिंजी ॾंभ ॾियारींदा आहिनि ऐं जेको आहे सो रतु कढाईंदा आहिनि, टुका ॾियारींदा आहिनि. इहो इंतिहाई इंतिहाई इंतिहाई ग़लति आहे. इन सां छा थींदो आहे, माण्हू जी रग डेमेज थी वेंदी आहे, माण्हू हलण खां रहिजी वेंदा आहिनि, के लंगड़ा ई हमेशह लाइ वरी लंगड़ा ई हलंदा आहिनि. सो मां उन्हनि खे बहितर ॾस इहो ॾींदुसि, जेकॾहिं उहे असां ताईं नथा अचनि, असां ते उन्हनि जो इतमाद न आहे, त महिरबानी करे कंहिं मुस्तनद डॉक्टर ॾे वञनि. ईअं कंहिं ऐं मां ग़लति लफ़्ज़ न चवंदुसि, लेकिन अहिड़े के ॿिए शख़्स ॾे, अहिड़े के ॿिए हंधि न वञनि जिते इहे हरबा इस्तेमालु थियनि था, जिते टुका लॻनि था, जिते ॾंभ अचनि था, जिते रत निकिरनि था, त माण्हू जी जंहिंजी जान ख़तरे में पइजी सघे थी. सो असां वटि त इन शइ जो कामयाबु इलाजु आहे, अलाह ताला जी महिरबानी सां उनजा व्यूज़ बि मौजूदु हूंदा आहिनि, उहे पेशंट्स बि ईंदा आहिनि ऐं इन जो ट्रीटमेंट जेको आहे सो होम्योपैथिक दवा जे रस्ते मुमकिन आहे, बहितर आहे. सो अधो परे कोन वेठो आहे असां वटि त माण्हू जेको आहे सो लाड़काणे खां बि इन मर्ज़ में आयल आहिनि, माशाला घुटकी खां बि ईंदा आहिनि, बलोचिस्तान खां बि ईंदा आहिनि, ऐं उन्हनि खे फ़र्क़ु पवंदो आहे। सो अधे खे चवंदुसि त बहितर इहो ई आहे त सुबुह जे पहिरें पहर में बरूबरू ॾेखारे वञे त वधीक बहितर रहंदो। छा तव्हांजो ख़्यालु आहे असल भाई?
0: जी सर, बिल्कुलु सही पिया चओ तव्हां, वधीक बिल्कुलु क़रीब आहे कोटड़ी कबे सर, अचे रूबरू ॾेखारे वञे त वधीक बहितर थींदो।
2: जी साईं,
0: जी सर। प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि ऐं असांजे स्टूडियो में मौजूदु आहिनि डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मोहम्मद साहबु। हाणे वक़्तु थियो आहे शॉर्ट कमर्शल ब्रेक जो, त हाणे हलूं था शॉर्ट ब्रेक कमर्शल जी तरफ़। गॾु गॾु रहिजो ऐं ॿुधंदा रहो ZFM 94 मेहरापुर।
4: लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03003385569। मेहरापुर ऐं भरपासे जी आवाम लाइ खु़शख़बरी, पेट्रोल जे ख़र्च मां जान छॾायो ऐं रोज जे ख़र्च खां बचो। A1 आटोस पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहरापुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीद करियो। स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे। उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 आटोस थरी रोड मेहरापुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक रिक्शा, पेट्रोल लोडर, रिक्शा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि। लाए मलिक खुशी मोहम्मद 03023295894 ऐं फेस मोहम्मद पहियार 03003118956। A1 आटोस मेहरापुर, नालो आहे एतमाद जो।
5: सोना सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है। इसीलिए बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत जवाबित लागू हैं।
6: हथे गुलमी दी पीरे गुलमी दी।
7: आई अदी, अज त डाडी खुश पई नजर अची।
8: छो न खुश थिया अदी, जडे खा मुझे मुड़स ढोरन के सखर वारन जो चारो मसालो खरायो आहे, त खीर जी पैदावार ॿीणी थी वई आहे, ऐं हाणे पैसा बि ॿीणा था अचन। ही ॾिस सोनियूं चूड़ियूं।
7: मां बि वञी चवां हुनखे त ढोरनि खे सखर वारनि जो चारो मसालो ई खाराए।
9: जी जान, चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर ऐं जानवरनि जे डॉक्टर खां नालो वठी ख़रीद करियो। आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं मां अख़्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नज़्द रेलवे लाइन मेहरापुर, राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 03073592120।
10: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इनन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ऐं पंहिंजे बारन के पोलियो खां बचाव जा कतरा जरूर पियारियो, छो त ये कतरा बारन में मुदाफ़ती ताकत के वधाइन था ऐं इन्हनि जे ख्वाबन के उॾाम ॾियनि था। पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी।
11: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं डीए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीह जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
12: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही रابطہ करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385 69।

कमर्शियल ब्रेक बाद एक दफो बीहर अव सभी बुद्धन के खुश आमदीद चूं था। प्रोग्राम आए सेहत की गाल असे स्टूडियो में मौजूद डॉक्टर मंजूर हुसैन महमूद साहब। जी मुख्तलिफ़ बीमार जहाँ माहिर डॉक्टर जिनमें गुर्दे पिते मसाने की पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज किया वे तो संदन जोड़न गोडन जो सूर कुन रग जो सूर नक कन गलो पुरानो नज़लो नच्छू मथे जो सूर अध मथे जो सूर नज़र की कमजोरी कन जो वहन कन जो सूर घट बुधन में अचन शुगर ब्लड प्रेशर दिल जहा मर्ज फालिज खंग टीबी मैदे जो सूर मैदे की अल्सर तिली जो वधन जिगर हेपेटाइटिस बी सी गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे की खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधन औरतन ए मर्दन के पोशीदा बीमारियों जो कामयाब इलाज कंदा असाजे प्रोग्राम में लाइव कॉल जरिए शामिल थी सको था। लाइव कॉल जो नंबर है 0301-8196-851 0301-8196-851। डॉक्टर साहब हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर ए सूमर ते सुबह 10 वगे का शाम पगे 5 वगे तई जर्मन होम्योपैथी क्लिनिक सामू वधन पोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी रोड में मैरापुर में मरीजन जो इलाज कंदा आए। अंगारे के ढी क्लिनिक बंद होंगी है इन में हफ्ते जा 3 दिन जुम्मो छंछर आचर चेकअप फीस बिल्कुल फ्री होंगी है बाकी दवा मरीज के स्टोर तुम वी होंगी है। डॉक्टर साहब जो कॉन्टेक्ट नंबर है 0301-8196-851। इनते कॉल करें कें भी वक्त डॉक्टर साहब का भी इंफॉर्मेशन वी सको था।

0: डॉक्टर साहब हिन महिल तव्हां ॾिसो था जीअं मौसम चेंज थी थिए त हिन महिल हिकु बिन ॿिए माण्हू खे ज़ुकाम नज़लो गलो ख़राबु थिए थो त इन जा सर कहिड़ियूं अहिड़ियूं आहिनि एहतियाती तदाबीरूं जंहिंजे असां करे असां जेको हिन सर बचाव करे सघूं था पंहिंजनि बीमारियुनि मां।
1: जी साईं बिल्कुलु तमामु बहितरीन जेको आहे सो ॻाल्हि आहे ऐं इहो अहिड़े क़िस्म जी अवेयरनेस पहिरियां बि ॾींदा आहियूं हाणे बि ॾियूं था पंहिंजे ॿुधंदड़नि ताईं त हिकु त मौसम तब्दील थियण सां जेको आहे सो खोड़ सारियूं वरी नयूं नयूं बीमारियूं बि जेको आहे सो पैदा थींदियूं आहिनि। हिकु त आम बीमारी मिसाल हींअर मच्छर जो वरी आमद आहे ऐं मलेरिया यानी मच्छर यानी मलेरिया सो मलेरिया जो जेको आहे सो थियणु यानी पाण खे ख़बर अथव त केतिरो पेशंट तकलीफ़ुनि में अची वेंदा आहिनि। इन खां बहितर इहो आहे त अहिड़ा माण्हू पाण जा एहतियाती तदाबीर करे जंहिंसां मच्छ मलेरिया न थिए त बहितर आहे। हिकु त कमरे में जेको आहे सो यानी अॼुकल्ह तव्हां ॾिसो था जेके असां बत्ती मिलंदी आहे जेकी उहा ॿारे माण्हू ऐं इस्तेमालु करे सघे थो उन सां जेको आहे सो इहे मच्छर वग़ैरह या नेट जो इस्तेमालु तमामु ज़रूरी आहे या आम सिंधी तेल असांजो जेको हूंदो आहे न ख़ुशबूदार तेल हूंदो आहे ऐं कुदरती तेल आहे सरिहं जो तेल उहो हणी सुम्हण सां बि तव्हां जेकॾहिं ॾिसंदव त तव्हांजे वेझो मच्छर हरूभरु न ईंदो। माण्हू घणा मॉस्किटो लोशन हणंदा आहिनि उहो स्किन जे लाइ तमामु हानिकार आहे नुक़सानकार आहे या जेके जलेबियूं ॿारींदा आहिनि उहे नुक़सानकार हूंदियूं आहिनि ऐं उहो साह जे नालियुनि में वञी करे जेको आहे तव्हांखे एलर्जी पैदा करे सघंदो या की जेके एलर्जी जा पेशंट हूंदा आहिनि उन्हनि जे इस्तेमाल सां उहा एलर्जी उन्हनि जी वधी वेंदी आहे। इन जे करे या जेके निम जा पन पता हूंदा आहिनि उहे साड़ सां बि तव्हांजे घर में जे वेझो जेकॾहिं साड़ींदो त उन सां बि मच्छर तव्हांजे वेझो जेको आहे सो न ईंदो आहे। इहो हिकिड़े क़िस्म जो मच्छर खां बचाव जो जेको आहे सो तरीक़ो ॿुधायो तव्हांखे। जी सर काल जी तरफ़
0: जी सर तमामु बहितरीन सर काल जी तरफ़ ईंदासीं। अस्सलामु अलैकुम।
1: सावरो रंग जे खोड़ सारा जेको आहे सो मसाइल हूंदा आहिनि छो थियो आहे हिकिड़ो कुदरती हूंदो आहे हिकिड़ो माण्हू किथे कमु अहिड़ो कंदो आहे घणो सूरज में यानी सिज जे हेठां हुनजो घणो कमु हूंदो आहे उनजे करे थींदो आहे या ॿियूं बि खोड़ सारियूं वजूहात हूंदियूं आहिनि उनजे करे उनजी दवा ववा जेको आहे सो पेशंट खे ॾिसी करे ऐं उनखे उन जे हिसाब सां ई जेको आहे सोप्स हूंदो आहिनि या क्रीम हूंदी आहे वरी ऐं इहो असां पहिरियां बि मनो करे चुका आहियूं हाणे बि मनो कयूं था त अहिड़े क़िस्म जूं जेके कमर्शियल क्रीम्स या सोप्स जेके तव्हांखे स्टोर्स ते मिलनि था जनरल ते उहे हरगिज़ इस्तेमालु न कयो उहे सिर्फ़ु चमड़ी खे साड़ींदियूं आहिनि। सो इन जे करे जेको कुदरती पंहिंजो चहिरो हूंदो आहे कुदरती रंग हूंदो आहे उहो ई रहंदो आहे लेकिन चहिरे में रौनक अचणु चहिरे जी सफ़ाई अचणु उनजे लाइ अलबत्ता दवाऊं असां वटि होम्योपैथिक में क्रीम्स वग़ैरह हूंदियूं आहिनि जेके उनजे इस्तेमालु करण सां पंहिंजो कुदरती रंग या उन में बहितरी जेको आहे सो अची सघे थी सिर्फ़ु उन सां। उन खां अलावा फ्रूट्स जो इस्तेमालु ज़्यादा करणु आहे जूसिस जो इस्तेमालु पाणी जो इस्तेमालु ज़्यादा करणु तमामु ज़रूरी हूंदो आहे। जी साईं हलूं था मौज़ू जे तरफ़ त ॾिसो हिकिड़ी ॻाल्हि कईसीं मलेरिया जी ॿियो टाइफाइड बि हिन मौसम में जेको आहे सो आम हूंदो आहे। इन जे करे टाइफाइड खां बचण जे लाइ तव्हां पंहिंजा जेके बि खाधो खाईंदा आहियो बर्तन ढके रखो त पैदा जीअं उन ते मख जेको मख ॾिसो कहिड़ी बि गंदगी ते वेही करे जॾहिं अव्हांजे खाधे ते वेंदी त उहो जरासीम हुन में विझी वेंदी आहे जंहिंखां पोइ तव्हांखे जेको आहे सो टाइफाइड थी सघे थो। उन खां पोइ हींअर जीअं थोरी घणी केॾी महिल राति जो थधि पए वई थी या केॾी महिल हवायूं लॻनि थियूं त उन सां एलर्जी ज़ुकाम नज़लो खांसी गले जूं ख़राबियूं हिन वक़्तु गले जो वायरस बि आम थी पियो आहे गले जी वरी ख़राबी थी सघे थी जंहिंजे करे तव्हांखे तकलीफ़ में अची सघो था। इन जे करे उन जे लाइ एहतियाती तदाबीर इहो हूंदो आहे जेकॾहिं कंहिंखे बि अहिड़े क़िस्म जी तकलीफ़ थिए थी राति जे टाइम में पाणी गरम करे उन में हेड विझी या लूणु विझी या जाण विझी उनजा घराड़ा ज़रूरु करे घराड़ा करण सां छा थींदो आहे जेको वायरस वग़ैरह हूंदो आहे उहो उन महिल ई जेको आहे सो उतां रफ़ा थी वेंदो आहे ख़तमु थी वेंदो आहे। पाणी गरम करे उन में लूणु विझी उनजा घराड़ा करणु तमामु ज़रूरी आहे उन सां नकु साफ़ु करणु तमामु ज़रूरी आहे या उन गरम पाणी जी बाफ़ तमामु ज़रूरी हूंदी आहे। अदरक तमामु हिकिड़ी बहितरीन जेको आहे सो शइ आहे उहा इस्तेमालु करण सां चाय में तव्हां अदरक जो टुकड़ो विझी ऐं उहो चांहि काढ़े ऐं उहो चांहि पीअण सां छा थींदो आहे, जेके बि जिस्म में तव्हांजे में अहिड़े क़िस्म जो एलर्जी अची वञे थी, कंहिंखे नज़लो आहे, ज़ुकाम आहे, खांसी आहे, या गले जो वर्म आहे, गले जी सोज़िश आहे, उहा उहांजी ख़तमु थी वेंदी आहे। इहे हिकिड़ी कुदरती अहिड़ियूं शयूं आहिनि जंहिंजो को बि नुक़सानु कोन्हे, को बि साइड इफ़ेक्ट कोन्हे, को न वरी को एॾो वॾो ख़र्चो आहे। इहे तव्हां इस्तेमालु करण सां काफ़ी मर्ज़नि खां, काफ़ी तकलीफ़ुनि खां तव्हां बची सघो था। अहिड़े तरीक़े सां तूतसिया शरबत तव्हांखे शहर में आम मिली वेंदो आहे, उहो गले जे लाइ तमामु मुफ़ीद हूंदो आहे। मिठी काठी जंहिंखे मुलेठी चवंदी आहिनि, मुलेठी जेको आहे सो तमामु बहितरीनु आहे, उनखे धोई करे चूसण सां बि गले जो वायरस जेको आहे सो ख़तमु थी वेंदो आहे। पान जी जड़ उन जे लाइ तमामु जेको आहे सो बहितरीनु आहे। अच्छा, असां हिन मौसम में ॾिसो गर्मी आहे, पोइ यक थधो पाणी पीअंदा आहियूं। यक थधो पाणी पीअणु इंतिहाई नुक़सानकार आहे, इन जे करे पाणी हमेशह वैसे बि नॉर्मल सजर पाणी पीअणु घुरिजे, न त थोरो मामूली उनखे थधो करे उहो पाणी पीअण सां तव्हां तकलीफ़ुनि खां बची सघो था। सो नंढियूं नंढियूं इहे शयूं आहिनि जेके तव्हां एहतियात करे पाण खे बचाए सघो था हिन मौसम में जेको आहे सो। नंढनि ॿारनि जो ख़ासि ख़्यालु रखिणो आहे, जेके बुज़ुर्ग हज़रात आहिनि उन्हनि जो ख़ासि ख़्यालु रखिणो हूंदो आहे। सो अहिड़ियुनि शयुनि खां तव्हां परहेज़ कंदो, पासो कंदो, तव्हां बिल्कुलु पाण खे बचाए सघो था। ऐं इन हिन वक़्तु इहा मौसम जेको आहे सो आहे जंहिंसां तव्हांखे इहे तकलीफ़ूं थी सघनि थियूं, इन तकलीफ़ुनि खां बचाइण जा इहे ई इक़दाम आहिनि। जी असम भाई,
0: तमामु बहितरीन सर, हिकु बहितरीन ॼाण ॾिनी तव्हां,
1: महिरबानी।
0: प्रोग्राम आहे सेज ॻाल्हि ऐं असांजे स्टूडियो में मौजूदु डॉक्टर मंज़ूर हुसैन महमूद साहबु। डॉक्टर मंज़ूर हुसैन साहबु हर अरबा, ख़मीस, जुमे, छंछर, आचर ऐं सूमर ते सुबुह 10 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधनपोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी रोड मेरापुर में मरीज़नि जो इलाजु कंदा आहिनि। ऐं नोट, अंगारे जे ॾींहुं क्लिनिक बंदि हूंदी आहे ऐं हिन में स्पेशली हफ़्ते जा 3 ॾींहं जुमो, छंछर, आचर चेकअप फीस बिल्कुलु फ्री हूंदी आहे। बाक़ी दवा मरीज़ खे स्टोर तव्हां वठणी हूंदी आहे। ऐं कॉन्टेक्ट नंबर आहे या लाइव कॉल ज़रिए तव्हां शामिलु थी सघो था प्रोग्राम में, 0301-9196-8051 0301-219-6851।

0: इसराइली आबादकारी खिलाफ खयल ताज़न कदमन जी आचियां गैर कानूनी इसराइली वसंदन सा वापार रोकने लाए वधिक असरायता कदम खड़ने जो भी मुतालबो बरियासती हल जरिए खिते में जटादार ऐं जामे अमुन ते भी जोर न्यूयॉर्क में इजलास इसराइल पहरी मरहले वाली जामे मनसूबे जो इल्तवा हेठ जिम्मेवारियूं पूरियूं करे गजा में इंसानी इमदाद बहाली जो सामान फौरी ऐं बिना रुकावट पहुचायो वञे बे मरहले में इसराइल जी नेकाली ऐं आलमी इस्तेहकाम फोर्स जी मुकररी शामिल आहे।
1: पखन के मुकाबले में ये जबरदस्त हवा रॉयल इन्वर्टर फैंस।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जोपुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाए 03201800003।
4: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे दाग धब्बे झुर्रियां और की महासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं। नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम मिल्क राइज ब्यूटी सोप मिल्क राइज एक्नी क्रीम हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक शाही बाजार मेहरापुर 03000-3105-109 03000-3105-109।
5: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03000-3385-69।
6: हर बार जा नंदड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था पर पोलियो इनन कदमन के रोके भी सके तो इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ऐं पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो खां बचाओ जा ॿ कतरा ज़रूर पीआरियो छो त इहे कतरा ॿारनि में मुदाफ़ती ताक़त खे वधाइनि था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾाम ॾियनि था। पोलियो मतलबु ज़िंदगी भर जी

ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03003385569। मेहरापुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुश खबरी, पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज़ जे खर्च खां बचो। A1 आटोज पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहरापुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक खरीद करियो। स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे। उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 आटोज थरी रोड मेहरापुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक रिक्शा, पेट्रोल लोडर, रक्षा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि। राब्ते लाइ मलिक खुशी मोहम्मद 03023295894 ऐं फेस मोहम्मद पहियार 03003118956। A1 आटोस मेहरापुर, नालो आहे एतमाद जो।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप, कोटड़ी कबीर रोड, मेहरापुर, कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, नवाब शाह, हर अरबा, खमीस, जुमे, छंछर, आचर ऐं सूम।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही रابطہ करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नौ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे।
4: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई?
3: न अदा
5: यार, आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हरंदी?
4: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन, 0301-380-8347।
6: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज जीए एफएम 94।

0: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
1: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इन्हन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ए पेंजे बारन के पोलियो का बचाव जा ब कतरा जरूर प्यारियो। छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था ए इन्हन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था। पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी।
2: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो GFM 94।

हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं। नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए

जी दोस्तों, उम्मीद तमाम बिल्कुल खैर खैरियत ठीक ठाक पहले बचड़ नगर शादो आबाद हूँ। तो आयन असा गरो गर बुधी रहा हूँ तो जी एफ एम 94 मेहराबपुर मिल्क राइस शो मिल्क राइस ब्यूटी प्रोडक्ट ठाण वारन जी दावा आहे त खूबसूरती जो नजर आए भरोसा जो दिल जीत ले इन जो चवण आहे त फकत टिन डीन जे इस्तेमाल में अवां पंहिंजे चेहरे ते वाज़े बदलाव ॾिसंदव। त पोइ मां सम्झा थो इन्हनि जी दावा खे प्रूव करण लाइ टे ॾींहं त घटि में घटि माण्हू इस्तेमालु करे सघंदो ऐं काफ़ी सारा दोस्त करे रहिया आहिनि। उन्हनि जो रिस्पॉन्स बि पॉज़िटिव अची रहियो आहे ऐं बाक़ी जिन हिन महिल ताईं परचे न कई आहे त कंपनीअ जी प्रोडक्ट मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम मिल्क राइस ब्यूटी सोप मिल्क राइस एक्नी क्रीम इन्हनि मां का बि बल्कि ॿ त मैंडेटरी आहिनि। जेकॾहिं एक्नी नाहे कंहिंखे दाणा न आहिनि त पोइ उहो क्रीम ऐं सोप जो इस्तेमालु ज़बरदस्त तरीक़े सां करे सघे थो।

نمبر آہے 0300 یعنی 0300 310 510 9.

ऐं इन खां अलावा जेकॾहिं अव्हां पंहिंजो को बि प्यार भरियो पैगाम या क्रीम जे हवाले सां या असां सां ॻाल्हि ॿोल करण जे

हवाले सां असां सां ॻाल्हाइणु चाहियो था त पोइ उन लाइ अव्हां खे असांजो लाइव कॉलिंग नंबर डायल करणो पवंदो ऐं असांजो लाइव कॉलिंग नंबर आहे 0393 1999 6067।

अच्छा हूअं त होड चङी ॻाल्हि न आहे, ज़िद बहस चङो ॻाल्हि न आहे, पर हर ॻाल्हि जो हर सुठे जो हिकिड़ो नेगेटिव पहलू बि हूंदो आहे। ज़िद जंहिंखे चवंदा आहियूं, ज़िद यानी कि उर्दू में अगरि हम कहें उसे खे मुतज़ाद, त पोइ अॼु हिकिड़ो नंढिड़ो ॿाराणो सुवालु पुछा कंदासीं प्रोग्राम में रौनक करण लाइ थोरी, ऐं सभिनी जी पार्टिसिपेशन रहे, फ़क़ति पंहिंजी फ़रमाइश जो गीत ऐं जेको आहे त दोस्तनि जा नाव शामिलु कंदा आहियूं। अॼु ॻाल्हि ॿोल थोरी इन ते बि कंदासीं त ज़िद जीअं ॾींहं जो राति मिठे जो कौड़ो, अहिड़े तरीक़े सां मुंहिंजो सुवालु आहे त शींहं जो ज़िद छा थींदो। जी दोस्तो, अॼु असांजो सुवालु आहे प्रोग्राम में त शींहं जो ज़िद उलट छा थींदो। आहे नंढिड़ो सिंपल पर इंट्रेस्टिंग ऐं फनी बि आहे, त ॼाण बि आहे, मालूमात बि आहे, ऐं थोरो भूल भुलैया बि आहे। त पोइ ॾिसूं था राइट आंसर केरु थो बिहे। असांखे राइट आंसर हिन सवाल जो जवाबु ॾियण लाइ असांजो लाइव कॉलिंग नंबर आहे 03-00-93-1967। ऐं जेसीं ताईं अव्हांजे असांखे कॉल मौसूल थिए, रिस्पॉन्स मिले अव्हांजो, असां जेको आहे त तेसीं ताईं अव्हांजे आॾो साइण आब्दा परवीन जो इंतिहाई ख़ूबसूरत ट्रैक प्ले कंदासीं। अचो त गॾिजी हीउ ट्रैक इंजॉय कयूं।

0: जी दोस्तों, सॉन्ग थे वन खा अग में असा एकड़ो इंटरेस्टिंग है दिलचस्प मतलब इंटरेस्टिंग दिलचस्प एकड़ी गाला इंटरेस्टिंग दिलचस्प अवां खां सवाल पुछो से सवाल तमाम बराणो ए नंढड़ो भी आहे त सवाल तमाम थोरो पेचीदा ऐं अणाओ भी आहे त शींहं जो ज़िद उलट छा थींदो जी कॉलिंग जो सिलसिलो स्टार्ट थी चुको आहे कॉल अटेंड कंदासीं प्रोग्राम में असांखे ख़बर पवे त शींहं जो ज़िद छा आहे ऐं प्रोडक्ट जे हवाले सां बि ॻाल्हि ॿोल पिणु कई वेंदी अस्सलाम वालेकुम केयर साईं किथां खां जी अदा हलो
1: शुक्र आला
0: दुआ मोला एहसान नालो हिकु भेरो ॿीहर ॿुधाइजो पंहिंजो
1: राजू
0: मारवाड़ी मेहरापुर वेलकम भरीकार खुश आमदीद कड़ा हालन मुझा भा
1: जी साईं जी
0: कड़ा हालन खुश आयो
1: शुक्र आला तां बुधायो बियो खैर आ
0: मौजू दुआऊं अल्लाह जा एहसान प्रोग्राम करे खा बुधो पे राजू
1: प्रोग्राम इलाही दिन थिया न बुधो दा पिया
0: त पो इहा भी जान हुंदी त प्रोग्राम केड़े मुतलिक आ छाजे बारे में आ कहें जो स्पोंसर्ड आ
1: हेमे नेचुरली ब्यूटी क्रीम या न बाबे
0: केड़ी राणा
1: हेमे ब्यूटी क्रीम
0: या केड़ी दा बुधायो
1: या ही है सर
0: मिल्क राइस सुना मिल्क राइस
1: अच्छा
0: मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम आहे मिल्क राइस ब्यूटी शो आहे ऐं असांजी प्रोडक्ट आहिनि मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम मिल्क राइस ब्यूटी सोप ऐं मिल्क राइस एक्नी क्रीम दाणनि दाग धबनि लाइ
1: जी जी
0: राजू पोइ कीअं इस्तेमालु कयो पिया असांजी प्रोडक्ट करणु चाहियो था किथां वठणु किथां वठणु वेंदव किथां कहिड़े तव्हां असां 15 जनरल स्टोर ते अवेलेबल कई आहे अव्हां जे लाइ जहिड़े तव्हां दिलि करे वठो ख़ुशी जनरल स्टोर मैरापुर आहे फैज़ान जनरल स्टोर मैरापुर आहे कामरान मुग़ल जनरल स्टोर मैरापुर हफ़ीज़ जनरल स्टोर मैरापुर कोरी जनरल स्टोर मैरापुर जावेद जनरल स्टोर मैरापुर ऐं अलक्रम जनरल स्टोर मैरापुर ते पिणु दस्तियाबु आहे असांजी प्रोडक्ट जहिड़े तव्हां वठो ठीकु आहे दादा वरी सुभाणे अवां जी कॉल जो इंतज़ार बि रहंदो अवां वठी करे असांखे फीडबैक बि ॾींदो जी सुणा ॿियो ख़ैर बिल्कुलु ए वन असां अॼु हिकु सवालु पुछा कयोसीं सोचियोसीं त तव्हां खां थोरो ॿी जेका मालूमात वठी वञे खिल भोग बि थोरो रौनक बि थी वञे फरमाइश बि ॿुधंदासीं तव्हांजे दोस्तनि जा नाव बि शामिलु कंदासीं असां सवाल जो जवाबु ॾियो त ज़िद हूंदा न जीअं अछे जो कारो ॾींहं जो राति मिठे जो कौड़ो अहिड़े तरीक़े सां शींहं जो ज़िद छा थींदो
1: अच्छा
0: जी ॿुधायो हुन असां पुछूं था जेको राइट आंसर ॾींदो आख़िर में असां ॿुधाईंदासीं तव्हां आंसर ॾींदा हलो असां आख़िर में ॿुधाईंदासीं राइट आंसर कहिड़ो आहे छा कंदो मैसेज बि शामिलु कंदासीं पर हींअर लाइव कॉल ते हुयो तव्हां धुको ई हणो आहे पढ़ी करे किथां ॿुधायो त फ़ाइदो छा हलो ठीकु आहे न आहियो पढ़ियल पढ़ियल बि न आहियो हलो ठीकु आहे छा चवणु चाहींदो को पंहिंजो प्यारे जो जी नाला शामिलु कयो
1: प्यारो मारवाड़ी
0: प्यारो मारवाड़ी
1: प्रेम मारवाड़ी
0: जी प्रेम बालम ॿियो मुझे तरफा भी अवां जी सजी संगत के भा के चाचा साई के गणेश के प्रेम के बालम के सबनी के सलाम बड़ी मेहरबानी कुर्ब लक लाइक लव यू जी असां प्रोग्राम में हिकिड़ी ॿी कॉल शामिलु कंदासीं ॾिसूं त केरु थो ॿुधाए त शींहं जो ज़िद चाहे हलो अस्सलामुअलैकुम
2: वालेकुम सलाम सर छा
0: हाल आहे ए वन दुआऊं अलाह एहसान अवां ॿुधायो
2: केरु खैरियत सर
0: केरु पिया ॻाल्हायो
2: मोहम्मद इब्राहिम ख़ासकली सर
0: मोहम्मद इब्राहिम ख़ासकली वेलकम भलीकार ख़ुश आमदीद
2: थैंक यू सर
0: वेलकम वेलकम वेलकम कहिड़ा हाल आहिनि ख़ुशि आहियो
2: अलाह साईं जी महिरबानी करम नवाज़ी
0: किथां मेरा पुरखा ई ॻाल्हायो पिया
2: सर असां ॻोठा फेरी पीरो थण सां
0: किथे ॻोठा
2: फेरी सर फेरी
0: फेरी
2: फेरी साईं थरमीरो
0: फेसा फेसा फेरी
2: सीन
0: सां सेरी अच्छा ठहरी ठहरी ठहरी मेरवा ठहरी मेरवा बिल्कुलु प्यारो इलाइक़ो आहे तमामु ज़बरदस्त तव्हां कॉल कंदा रहंदा आहियो असांजे प्रोग्राम में जी जी बिल्कुलु बिल्कुलु पर हाणे सभिनी जा ॻोठ वरी कुझिनि जा यादि रहंदा आहिनि कुझिनि जा न लख लाइक लख लाइक अॼु प्रोडक्ट जे हवाले सां त लाज़मी ॻाल्हि ॿोल कंदासीं अॼु हिकिड़ो सवाल बि रखियो आहे सवाल खां अॻु में वरी बि साॻी ॻाल्हि त प्रोडक्ट इस्तेमालु कयो पिया वरिती अथव असांखे बि उमेदु आहे तव्हां में ठीकु आहे मुंहिंजा हा असां सवाल ॾाढो ॿाराणो नंढड़ो ऐं दिलचस्प आसान बि थोरो अणाओ उलझाईंदड़ विछड़ाईंदड़ बि पुछियो आहे त जहिड़े तरीक़े सां ॾींहं जो ज़िद राति थींदी ऐं अछे जो ज़िद कारो थींदो मिठे जो कौड़ो थींदो शींहं जो ज़िद छा थींदो जी उलट जी शींहं जो गिदड़ थींदो पक ठीकु आहे मां इहो जवाबु नोट करे छॾियो आख़िर में असां राइट आंसर जेको बि हूंदो उहो अनाउंस कंदासीं प्रोग्राम खे ॿुधायो इंजॉय कयो सभिनी जे जवाबनि खे त दोस्त कहिड़ा कहिड़ा जवाब ॾियनि पिया अच्छा ॿियो छा चवणु चाहींदो
2: सर बस असांजे तरफ़ खां जेके बि रेडियो एफएम ॿुधनि था मेरापुर सॼनि खे दिलि सां सलाम पेश कयूं था
0: जी
2: ऐं असांजो नंढड़ो आहे हिकिड़ो गुलाम हुसैन ख़ासकेली
0: जी
2: अली रज़ा ख़ासकेली गुलाम फारूक ख़ासकेली इनल ख़ासकेली
0: जी इन्हनि खे सभिनी संगत खे सलाम
2: वालेकुम असलाम सर
0: कुर्ब कुर्ब लख लाइक थैंक्यू
2: सर
0: वरी महिरबानी हा अॼु ही ॿ कॉलूं अटेंड थी चुकियूं आहिनि टी कॉल अची रही आहे को फरमाइश कोन करे रहियो आहे कोई दोस्त ठीकु आहे अटेंड कयूं था अस्सलाम वालेकुम केर साईं किथां खां सद्दाम हुसैन हालाणी खां हैलो सद्दाम हुसैन हालाणी सद्दाम चौहान हालाणी खां वेलकम भली कार प्यारा कहिड़ा हालनि जी जी मां चौहान आहियां कॾहिं खां प्रोग्राम एतिरी रश त कोन हूंदी आहे असांजे हिन प्रोग्राम में पर ठीकु आहे हा अॼु कॉल कोन पई लॻे अॼु लॻी वई
2: असल में साईं मसरूफ़ ॿुधाईंदी आहे
0: ठीकु ठीकु कॾहिं खां प्रोग्राम ॿुधो पिया ॿ टे हफ़्ता थी विया आहिनि त पोइ इहा त ॼाण हूंदी कहिड़े मुतालिक असांजो प्रोग्राम आहे स्पेशल स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम
2: आहे
0: पोइ चौहान बि आयो ऐं डेफिनेटली जेको आहे त असां बि चौहान आहियूं त पोइ ॻाल्हि त असांजी सम्झी विया हूंदव मञींदव त प्रोडक्ट इस्तेमालु कंपनी जी ज़बरदस्त दावा आहे त टिनि ॾींहंनि में रिज़ल्ट ॾिए पई फ़क़ति तव्हां लाइ न आहे सॼे घर लाइ आहे अधियूं भेनरियूं मारियूं असांजो इस्तेमालु करे सघनि थियूं त पोइ ट्राए कंदो क्रीम या वठणु चाहींदो लाजवाब लाजवाब लाजवाब हुकुम हुकुम
2: साईं तव्हां इहो सिधी चओ

0: सत्रह की चवान साईं
1: सिंधी सुना सिंधी
0: सिंधी साईं
1: जी साईं सिंधी
0: हां अखर में नहीं असन घा तो हन असन की बोली और सराई की साईं
1: जी जी सागी आ सागी आ
0: हां साईं
1: जी जी जी सागी आ
0: तो अभी वही चवान आयो साईं
1: जी साईं सिंधी चौहान सागी आई
0: सही सही मैं खैर आ साईं
1: दुआओं दुआओं अल्लाह एहसान शमन जो शामिल कयो था दोस्तन जा नाम शामिल कंदो प्रोग्राम में
0: जो दोस्त राशिद अली चौहान
1: जी
0: अदनान अली चौहान आयान अली
1: ये तहां जा पंजा रिलेटिव न या दोस्तन
0: साईं बस दोस्तन परे का वारा दोस्तन
1: थोड़ो परे खान हां
0: साईं
1: सजी संगत के वहां जी इनन के टुनिया के सलाम मुझे तरफा
0: वाले
1: वाली मेहरबानी अच्छा तहां असा जो की गुजारे जो जवाब तो कोन नो डाडी सिंपल है सोली भी आ है
0: हां भाई वो दो इने जो भाई इतन भी सही है पर बुजदिल सही रहंदो
1: बुजदिल भी सही रहंदो गिदड़ भी सही रहंदो ठीक है असा नोट क्यों था आखिर में प्रोग्राम जे में राइट आंसर बुझो ठीक है बा
0: वाली मेहरबानी
1: लव यू लख लाए कुर्बान।

0: जी दोस्तों, फरमाइश बिनेट फाइनली थी असांखे, असां सां गॾु हिकिड़ो कॉलर आहे, कॉल अटेंड कंदासीं प्रोग्राम में। कॉल ड्रॉप थी वई अनफॉर्चुनेटली, अगेन बि कॉल शामिल कंदासीं। हलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: हेलो साईं, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, केर पहिरां किथां खां? गुलाम फारूक राजपर ॻोठ मेरापुर में ई आहे। किथे आहे आसे पासे में? राजपर असांजो हिकिड़ो सफ़ा पहिरीं प्यारो आहे, सिंध जो सुरीलो आर्टिस्ट बि आहे, सदाम राजपर, सुञाणियो? अच्छा, पर उहो सदाम ले वारो फनकार
1: आहे?
0: जी जी जी जी। प्रोग्राम कॾहिं खां ॿुधो पिया असांजो?
1: प्रोग्राम तकरीबन तव्हांजो
0: शुरू थियो आहे, तॾहिं खां ॿुधो था त पोइ डेफिनेटली अवां क्रीम त लाज़मी वरिती हूंदी। प्रोग्राम खे महीनो थियण वारो आहे, अवां अञा असां कंपनी जी जेका दावा आहे न, राइस मिल्क जेके ठाहिण वारा आहिनि, मिल्क राइस जेका प्रोडक्ट ठाहिण वारा आहिनि, उन्हनि जो चवण सां टिनि ॾींहंनि में रिज़ल्ट ईंदी आहे, त पोइ उन्हनि जी दावा खे एक्सेप्ट करे तव्हां इस्तेमालु त करे ॾिसो न भाउ। ऐं अॼु को इहो नंढड़ो सवाल आहे, शींहं जो ज़िद छा थींदो? शींहं जो बकरी अच्छा ठीकु आहे, को दोस्तनि जा नाम शामिल करणु चाहींदो? सलामत हुजनि, इहे अवां इन्हनि जो ज़िक्र कंदा रहंदव। ठीकु आहे मुंहिंजा भाउ, वॾी महिरबानी, कुर्ब, ओके, थैंक यू।

0: जी दोस्तों, अॼु अव्हां जी कॉल जो सिलसिलो कुझु वधीक ई अचे पियो ज़बरदस्त, लेकिन जेको आहे त कंपनी जी दावा खे जेको आहे त अव्हां जेको आहे मान ॾियो, हुननि जी दावा आहे त 4 ॾींहनि में जेको आहे त रंग बि साफ़ु कंदी ऐं चहिरे ते ग्लो बि आणींदी। चवनि था त ख़ूबसूरती जो नज़र आहे भरोसा जो दिलि जीत ले। मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइस ब्यूटी सोप ऐं मिल्क राइस एक्नी क्रीम। असां सां गॾु लाइन ते कॉलर मौजूदु आहिनि, कॉल शामिल कंदासीं प्रोग्राम में। हैलो, अस्सलाम वालेकुम, केर साईं, किथां खां? रिज़वान ख़ासि कली साहब गुड ज़मीराबाद खां, वेलकम, भली कार, ख़ुश आमदीद पहिरां, कहिड़ा हालनि, ख़ुशि आहियो? दुआऊं अवां भाइरनि जूं, मोहबतूं, लख लाइक कुर्ब। अवां अक्सर कॉल कंदा रहंदव प्रोग्राम में? पोइ मां सभिनी खां साॻियो हिकिड़ो सवाल पुछा कंदो आहियां त कंपनी अवां लाइ ज़बरदस्त शो बि रखियो आहे, कंपनी दावा बि करे थी त असांजी प्रोडक्ट 4 ॾींहनि में रिज़ल्ट ॾींदी। क्या बात आहे, क्या बात आहे। जेकर रिज़ल्ट ॾे सुठी लॻे त पोइ दोस्तनि खे बि जेको आहे रिकमेंड कयो। पाण बि कयो, बचड़नि खे ॾियो, फैमिली में, छो त इहो कॉमन यूज़ इस्तेमाल में सोप त थींदो ई थींदो रहंदो आहे न मुंहिंजा भाउ। हा, कुझु दोस्त मूं वांगुरु क्रीम जेकॾहिं घटि इस्तेमालु कंदा आहिनि त साबुण त कंदा ई कंदा आहिनि न। छा चवणु चाहींदो अॼोके, छा पहिरियों त अॼोकी गुज़ारे जे हवाले सां सवली सिंपल आहे? शींहं जो ज़िद बुज़दिल थी सघे थो। ठीकु आहे मुंहिंजा भाउ, अवां को दोस्तनि जा नाम शामिल करणु चाहींदो? जी दोस्तो, हिकड़ी कॉल भी शामिल कयूं, उन खां पोइ अवां जी फरमाइश ॾांहुं वधंदासीं। हलो, अस्सलाम वालेकुम, केर साईं, किथां खां? वालेकुम अस्सलाम, केर प्यारा, किथां खां?
1: साईं रियाज हुसैन शेख मेरापुर खां। साईं
0: रियाज, साईं वेलकम, भली कार, कहिड़ा हालनि, ख़ुशि आहियो?
1: साईं नौकर ताबेदार। साईं शींहं जो ज़िद आहे गिदड़।
0: शींहं जो ज़िद गिदड़।
1: जी साईं,
0: ॿियो कुझु को दोस्तनि जा नाम शामिल करणु चाहींदो को?
1: मुंहिंजो हिकिड़ो पुट ज़ैनदर आहे।
0: सलामत हुजे।
1: जलबानी सलीम साहब
0: जी
1: अदा सईद जलबानी होतकान जलबानी जो साईं
0: जी जी जी महबूबनि खे मुंहिंजे तरफ़ां अस्सलामु अलैकुम, वॾी महिरबानी साईं, कुर्ब, लव यू, लख लाइक, थैंक यू। जी दोस्तो, बाक़ी कॉल्स असां अटेंड कंदासीं हिन ख़ूबसूरत ट्रैक खां पोइ। ट्रैक आहे शमर अली मीराली जी ख़ूबसूरत आवाज़ में, का सारत लहबी आहे।

0: जी दोस्तों, असांसां हिकु रेगुलर कॉलर आयल आहिनि ते कॉल शामिल कंदासीं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम, केर साईं, किथां खां?
1: वालेकुम सलाम साईं, नवाबी संगत खां सिकंदर अली शाह थो ॻाल्हायां, खेतपुर मीरज खां।
0: नवाबी संगत जिंदाबाद साईं, वेलकम भलीकार।
1: ख़ुशि
0: आहियो साईं, ख़ैरु आहे? ए वन दुआऊं तव्हां भाइरनि जूं, अवां ॿुधायो कीअं आहियो?
1: पंहिंजो हाल हवाल ॾियो। ॿ टे दफ़ा कॉल लॻी
0: जी,
1: मां चयो साईं वॾो कॉल खणे
0: कॉल हा गीत हले पियो न, त पोइ वरी थोरो वेट कयूं पिया, कॉल अवां जी लॻी वई। जेको आहे तव्हांखे जी एफ एम सर्च करणो पवंदो पेज, जी एफ एम, हा नेटवर्क। बिल्कुलु बिल्कुलु जी, न उहो जॾहिं गॾु गॾु ॿुधंदो, गॾु गॾु ॻाल्हाईंदो, त पोइ आवाज़ु थोरो क्लियर न ईंदो, हुनखे थोरो साइड रखणो पवंदो। अवां हींअर ॿुधो कोन पिया प्रोग्राम किथे बि? अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा बिना ॿुधण सही सही, हा बसि हुननि खे चवंदा की प्रोग्राम रिकॉर्ड करे वठनि पंहिंजी मोबाइल में, ऐं पोइ हमारे उमाणे छॾनि। मालिक जा अहसान, दुआऊं छा चवणु चाहींदो? छा चवणु चाहींदो को प्यार जो पैगाम?
1: मां तव्हांखे इहो चवणु चाहींदमि, तारीफ़ ॿुधी आहे,
0: लख कुर्ब लख
1: कुर्ब, ऐं तव्हांजा आवाज़ मिठड़ो आहे सफ़ा, भला हिन जो मिठे आवाज़ जो राज़ ॿुधायो, छा खाईंदा आहियो? असां बि ओड़ो कुझु इस्तेमालु कयूं।
0: अञा त यार किथे ख़राश थी पई रहे गले में, खंघ ज़ुकाम थो पियो रहे।
1: उहो त साईं मौसम जो हिसाबु आहे, पर न असां बि ॿियनि चैनलनि ॻाल्हाईंदा आहियूं, कुर्ब जो मन तव्हांजो ॻाल्हाइणो
0: उनमें हिकिड़ो राज़ इहो आहे त मां थोरो थको बि जेको आहे न बनावटी न ॻाल्हाईंदो आहियां, मां बिल्कुलु क्लियरली जेका मुंहिंजी ॻाल्हि ॿोल मिज़ाज आहे, अंदाज़ आहे, अञा हिन में थोरो असांजी टोन फास्ट आहे, उन में असांजी जेको लेट नाइट प्रोग्राम आहे उन में तमामु स्मूथ वे हूंदो
1: आहे।
0: ॿियो को दोस्तनि जा नाम, नवाबी संगत जा नाम शामिल करणु चाहींदो? मुंहिंजा बि सलाम हुजनि नवाबी संगत खां। मालूम त कयो नवाबी संगत मां क्रीम केर केर पियो इस्तेमालु करे, ब्यूटी प्रोडक्ट्स असांजो मिल्टराइज़ जूं।
1: हा साईं, थोरी देरि अॻु में हुसैन बख़्श साहब सां इहा डिस्कस हले पई, मां चयो मां खैरपुर में मिली वेंदी आहे साईं क्रीम।
0: हा बिल्कुलु, तव्हांखे हेल्पलाइन नंबर जेको ॿुधाईंदा रहंदा आहियूं न साईं ज़फ़र इक़बाल साहिब जो, हुन ते एम सिद्दीक़ साहिबु उहो या ज़फ़र इक़बाल साहिबु ॻाल्हि ॿोल कंदा, हुन ते कॉल करे तव्हां हुन खां मालूम करे वठो, बिल्कुलु खैरपुर में बि मिली वेंदी। नंबर नंबर अथव अथव नंबर हुसैन हुसैन बख़्श वटि नंबर अथव साईं जो, ज़फ़र इक़बाल साहिब जो। बसि पोइ सुभाणे वारे प्रोग्राम में इंतज़ारु रहंदो आहे मुंहिंजे हिन कॉल जो, सवाल जो जवाब ॾींदो। इहो ॾाढो नंढड़ो ऐं बाराणो ऐं सिंपल सवाल, त शींहं जो ज़िद छा थींदो? ज़िद छा थींदो? उलट, अपोज़िट। ठीकु आहे हुसैन बख़्शी, कॉल लॻे कॉल लॻे त पोइ पुछूंसि था।
1: ठीकु आहे,
0: वरी महिरबानी, कुर्ब, लव यू, थैंक यू, सलाम थियो।

जी दोस्तों, खैरपुर मां भी मिली वेंदी ऐं अव्हांजे भर पासे वारे शहर इलाइक़े तर जनरल स्टोर तां बि असांजी प्रोडक्ट मिलंदी। असांजी प्रोडक्ट में मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम ऐं मिल्क राइस ब्यूटी सोप, हुन सां गॾु एक्नी क्रीम पिणु शामिलु आहे। जेकॾहिं कंहिंखे कंहिं स्टोर तां या कंहिं ओड़े पाड़े मां कोन थी मिले त उहो असांजो हेल्पलाइन नंबर नोट करे वठे। असांजो हेल्पलाइन नंबर आहे 0300-310-510-9। इन ते कॉल करे ज़फ़र इक़बाल साहिब सां ॻाल्हि ॿोल कंदो। ऐं ज़फ़र इक़बाल साहिब उते अवेलेबल कराए छॾींदो। ज़फ़र इक़बाल साहिब तमामु मेहनती हार्ड वर्कर ऐं तमामु लवली ऐं प्यारो माण्हू आहे। सो उहा प्रोडक्ट अव्हांजे हर तर में इलाइक़े में अव्हां लाइ रखाए थो। बसि अव्हां जूं मुहबतूं, मान, प्यारु खपे ऐं प्रोडक्ट इस्तेमालु कंदो त पोइ ई असांखे फीडबैक जे बारे में ॿुधाईंदो। सो कंपनी जी दावा आहे, मिल्क राइस ठाहींदड़नि जी दावा आहे त मिल्क राइस टिनि ॾींहनि में अव्हांजे चहिरे ते ग्लो आणींदी आहे। पोइ छो न इस्तेमालु कजे। ख़ूबसूरती जो नज़र आहे, भरोसा जो दिलि जीत ले।

जिदो सो असांखे लाइव प्रोग्राम में कॉल करण लाइ असांजो लाइव कॉलिंग नंबर आहे 0-300-94-19-600-67। इन ते कॉल करे अवां असां सां ॻाल्हि ॿोल करे सघो था। प्रोग्राम जे हवाले सां फीडबैक सां गॾोगॾु प्रोडक्ट जे हवाले सां पिणु फीडबैक ॾेई सघो था। उन जे लाइ अञा वधीक ॼाण हासिलु करे सघो था त किथां मिलंदी, किथां न मिलंदी ऐं किथां मिलंदी। त यादि आयो त मेहराबपुर जे शाही बाज़ार जे तमामु वॾनि जनरल स्टोर्स ते मिल्क राइस ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल आहिनि, जंहिं मथां ख़ुशी जनरल स्टोर मेहराबपुर, फैज़ान जनरल स्टोर मेहराबपुर, कामरान मुग़ल जनरल स्टोर मेहराबपुर, हफीज़ जनरल स्टोर मेहराबपुर, कोरी जनरल स्टोर मेहराबपुर, जावेद जनरल स्टोर मेहराबपुर ऐं अलकरम जनरल स्टोर मेहराबपुर ते पिणु दस्तियाबु आहे।

जानी कमाल तो करी पर नेटवर्क असांखे ॾाढो डिस्टर्ब थो पियो करे सो शामिल वरी बि कोशिशि कंदासीं त कॉल कई वञे माधरत ख़्वाहिं कॉल शामिल कोन पई थी सघे सो वरी बि ट्राई कबी

हा इंतिहाई दुखी दिल सां इहो चवणो थो पए त कॉल शामिल करण में शायदि कोई एरर अची रहियो आहे नेटवर्क जो। वरी बि ट्राए कबी, अञा 11 मिंट आहिनि असां वटि, ॻाल्हि ॿोल बि करे वठूं था थोरी। त पोइ चवण इहो पियो चाहियो से त ज़िद फ़क़त जेको आहे न, हिकिड़ी मेमरी ताईं, यादगिरी ताईं, या कंहिंजो कहिड़ो आहे इंफॉर्मेशन ताईं बहितरु रहंदो आहे, बहितरु लॻंदो आहे ॼाण ताईं। बाक़ी ज़िद कंहिंसां होॾि प्यार में, मोहबत में चङी न आहे। उहो ज़िद ॿियो आहे, ही ज़िद ॿियो आहे, पर असीं अवां सां मिज़ाज मिलाईंदे अवां सां ॻाल्हि ॿोल करण जी कोशिशि कयूं पिया। ऐं प्रोग्राम बि ॿुधंदा रहो, प्रोडक्ट बि इस्तेमालु कंदा रहो। प्यारा माण्हू, प्यारी प्रोडक्ट अवेलेबल आहे ख़ुशी जनरल स्टोर, मैरापुर फैज़ान जनरल स्टोर, मैरापुर कामरान मुग़ल जनरल स्टोर, मैरापुर हफीज़ जनरल स्टोर, मैरापुर कोरी जनरल स्टोर, मैरापुर जावेद जनरल स्टोर, मैरापुर ऐं अलकरम जनरल स्टोर मैरापुर। इन खां अलावा जेकॾहिं जेके दोस्त चई रहिया आहिनि त असां फलाणे हंधि नथी मिले, फलाणे हंधि नथी मिले, वंस अगेन वरी ॿुधाईंदो हलां जिन दोस्तनि हींअर ट्यून कयो आहे जी एफ एम 94 मैरापुर, त हुननि खे ॿुधाईंदो हलां त हेल्पलाइन नंबर, यानी की अव्हां खे ईअं आसान ॿोलीअ में सम्झायां त कंपनी जे ऑनर जो, सी ओ जो नंबर अव्हां खे शेयर करे रहिया आहियूं, जंहिं ते कॉल करे अव्हां प्रोडक्ट खे अवेलेबल कराए सघो था पंहिंजे शहर में। प्रोडक्ट सी ओ यानी की कंपनी जो ऑनर हेल्पलाइन जो नंबर आहे 0300-310-510-9। ऐं इन खां अलावा असांजो कॉलिंग नंबर तव्हांखे यादि ई आहे, पर अनफॉर्चुनेटली अॼु कुझु कॉलिंग शामिल करण में डिफ़िकल्टीज़ थी रहियूं आहिनि, सो इन करे असां अॼु कॉल्स अव्हां जूं कुझु घटि कयूं आहिनि शामिल। अगेन असां जॾहिं वेझो इन खे आणियूं था पिया मोबाइल खे, त पोइ थोरो एरर काफ़ी सारो वधी थो पियो वञे।

जी दोस्तों, कॉल्स भी काफ़ी शामिल थियूं प्रोग्राम में, पर अञा हिकिड़ी उहा चस रहिजी वई, अञा हिकिड़ी तिश्नगी रहिजी वई जंहिंखे पूरो थियणु घुरिजे आहे। पर ठीकु, नेक्स्ट टाइम सुभाणे वरी शामिलु कंदासीं खोड़ सारियूं कॉलूं ऐं ॻाल्हियूं। हींअर ताईं जिन दोस्तनि जूं महबूबनि जूं कॉलूं आहियूं उन्हनि खां हिकु अधु असां सवाल भी पुछा कयोसीं, उन खां अलावा प्रोडक्ट जे हवाले सां बि ॻाल्हि ॿोल कईसीं। मूंखे उमेद आहे अवां यकीन प्रोडक्ट इस्तेमालु करे रहिया आहियो, ऐं जिन दोस्तनि दावा कई आहे त असां प्रोडक्ट लाज़मी वठंदासीं। उहे सुभाणे असांखे फीडबैक ॾींदा कॉल वसीले, टैक्स्ट मैसेज वसीले, त प्रोडक्ट जो छा रिज़ल्ट आहे, या असां सां ॻाल्हि ॿोल करण लाइ पंहिंजनि प्यारनि ताईं प्यार जो पैगाम पहुचाइण लाइ बि कॉल करे सघूं था, पंहिंजी पसंदि जो को गीत ॿुधण लाइ बि कॉल करे सघूं था। इन खां अलावा दोस्तनि जा नाम शामिलु करे सघूं था, असां सां ॻाल्हि ॿोल करे सघूं था। मूंखे बेहद ख़ुशी थींदी आहे जॾहिं मुंहिंजी अवां सां ॻाल्हि ॿोल थींदी आहे। दोस्तों, वक़्तु वेझो अची वियो आहे, 8 मिंट फ़क़ति अॼोके प्रोग्राम जी पुॼाणी में बचिया आहिनि। सो सभ खां पहिरियों त आउं बेहद थो रहंदो आहियां अव्हां जे मुहबत जो, मान जो, ऐं असांजी प्रोडक्ट खे रिस्पॉन्स ॾियण जो। अञा बि जेकॾहिं मूंखे कॉल जॾहिं ज़फ़र इक़बाल साहिब जी ईंदी त बिल्कुलु मैरापुर वारनि ऐं भरपासन वारनि मैरापुर जे जिते जिते असांजी नशरियात ॿुधी वञे थी, जितां जितां असांखे फ़ोन्स कॉल्स आयूं आहिनि, ऐं जिन जिन दोस्तनि अॼु फ़ोन कॉल्स कयूं आहिनि, त सुभाणे उन्हनि जी फ़ोन कॉल जॾहिं अचे त ज़फ़र इक़बाल साहिब जी बि अचे त बिल्कुलु बाबा, इहे सभई दोस्त पहुता ऐं जेको आहे त प्यार जी सेल्फी बि कढियूं मूंसां, ऐं अव्हां जा सलाम बि ॾिनऊं, ऐं जेको आहे त प्रोडक्ट परचेज़ कयूं, ऐं बाद में असां कचहरियूं जुड़िया रहंदासीं इनशाला। की सियारो बि ईंदो, थधि बि ईंदी, रौनक बि थींदी, चांहि जे कप बि हूंदो, सिप बि हूंदी, अव्हां सां मुहबत जूं प्यार भरियूं कचहरियूं बि हूंदियूं, ऐं अव्हां जूं कॉलूं बिल्कुलु बेहद मूंखे वणंदियूं आहिनि भरपूर। ऐं असांजो हिकिड़ो ॿियो प्रोग्राम हूंदो आहे, बल्कि जी एफ एम जा जेके बि जेतिरा बि प्रोग्राम हूंदा आहिनि, अव्हां सभई इंजॉय करे रहिया हूंदा। हिकु अधु चकर मुंहिंजो पंहिंजो जेको आहे त इतफ़ाक़ु थियो, ट्यून कैम जॾहिं मां लिंक ते बि ॿुधी सघूं था, GAFM.net ते अवां वञी करे जेको आहे त जिते जिते रेडियो अवेलेबल न आहे, या जंहिं जंहिं दोस्त खे अवां ॿुधाइणु चाहियो था प्रोग्राम, उन ॾांहुं उहा लिंक उमाणे सघो था, गूगल करे सघो था जीमेल ते, उते गूगल ते GAFM.net इहो लिखंदो त लाइव प्रोग्राम जा अची वेंदा, असांजा 8 स्टेशन अची वेंदा, कहिड़े स्टेशन ते कहिड़ो प्रोग्राम हली रहियो आहे, या कहिड़ो स्टेशन हिन वक़्तु सभिनी सां मर्ज लॻो पियो आहे, कनेक्ट थियो पियो आहे। सो रातो को देरि सां जेको प्रोग्राम थींदो आहे उहे लॻभॻि सभिनी स्टेशन तां कनेक्ट हूंदो आहे, उन में ॾाढियूं अव्हां जी साॻी संगत जूं कॉल्स बि हूंदियूं आहिनि, ॾाढो बेहद ख़ुशी थींदी आहे। माण्हू गुज़ारे जो रिप्लाई उनजो सवाल जो सिंपल जो ॾींदो हलां, जिन दोस्तनि रिप्लाई ॾिनो त शींहं जो ज़िद गिदड़ आहे, बिल्कुलु एग्ज़ेक्टली गिदड़ ई हूंदो शींहं जो ज़िद, छाकाणि त शींहं जो मन मिसाल आहे बहादुर, त जिन दोस्तनि बहादुर मझां उन्हनि बुज़दिल ॾियणु चाहियो त लफ़्ज़ असां बहादुर जो ज़िद कोन पुछियोसीं, त बहादुर जो ज़िद सिधो सऊं बुज़दिल थींदो, पर जॾहिं शींहं जो नाओ अचे त पोइ शींहं माना जानवर आहे, जानवरनि मझां ब्रेव ऐं बहादुर जानवर शींहं आहे, त पोइ जानवरनि मझां ई हिकिड़ो बुज़दिल जानवर बि आहे जेको अक्सर राति जो निकिरंदो आहे, कूकू कंदो आहे ऐं लिकी वेंदो आहे, माण्हू उन खां ॾिदा हूंदा पर हू माण्हुनि खां ॾिदो आहे ऐं अक्सर नज़र बि न ईंदो आहे, रंग बि अहिड़ो अथसि ऐं लिकी वेंदो आहे, सुख ॾियणी पई रहंदो आहे, ॾींहं जो त बिल्कुलु बि कोन निकिरंदो आहे। सो इन करे उनखे बुज़दिल सां भेटा ॾिनी वेंदी आहे, शींहं खे बहादुर सां भेटा ॾिनी वेंदी आहे। सो शींहं जो ज़िद गिदड़ थींदो। बाक़ी अॼोको प्रोग्राम पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो, इन सां गॾु मूं नाचीज़ आबिद चौहान खे पंहिंजे मेज़बान खे इजाज़त ॾींदा ऐं अव्हां इंजॉय कंदा हीअ आख़िरी ख़ूबसूरत प्यार भरो ट्रेक। वरी मिलंदासीं नए प्रोग्राम सां गॾु, सिंध सलामत, साथ सलामत, अलाह निगेबान।

0: वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ में गडियल कौमन की जनरल असेंबली इजलास में शिरकत लाए पहुंची वो वज़ीर आज़म जनरल असेंबली के इफ्तिताही सेशन के खिताब कद
1: गडियल कौमन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस है तो गुजरियल दहाके में शुरू थियल जंगियन तबाहियों का असर छड़िया जंगियों बेहसी से जारी रही शहरियन के निशानों बनाया वो जंगियन में इंसानी हक पामाल करण समेत भुख के हथियार बनाया वो रुगो फौजी ताकत सिक्योरिटी और मुआशी कुवत के इस्तेकाम की जमानत ना है अमन के क्याम लाए सभी के गड़ी कम करना पवता जनरल असेंबली इजलास के खिताब कदे एंटोनियो गुतरेस ताकत जो इस्तेमाल मसलन जो हल ना एंटोनियो गुतरेस ताकत जो इस्तेमाल मसलन जो हल ना

0: वफाकी हुकूमत जो धरने वारे मामले ते पीटीआई से गल करण का इनकार वफाकी वजीर अता तारण है पीटीआई वारन जी गाल बाबत तारीफ सुठी ना है उन्होंने सा गाल करण जो को भी फायदो ना है पेशावर में तकरीब खिताब कंदे मीडिया से गाले अता तारण तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद में अच्छी अमन अमान की सूरत खराब करण की इजाजत न डी वी पीटीआई वारा होश का कम वठन भी सूरत में अड़ा नतीजा सामूँ अची सकन था जो सदा याद रखा उन वक्त वजीर तलाल चौधरी जो चवण हो वानी जो भेनरू पार्टी ते कब्जो कर लाए वो हादसों चाहन थी इस्लामाबाद हाईकोर्ट जो हुक्म न मन खिलाफ कार्रवाई थी।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जोपुर एतमाद मा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ते जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-3592120।
3: माशाला फौजी पाइप फैक्ट्री नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेहरापुर असा वट जगह जो डारू जगह जा पावा पाइप डेढ़ ब चार छह नव बारह इंच में प्लेन कॉलम में मौजूद आहिन। फौजी भाइरन लाइ खुसूसी रियायत होंगी राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 तौकीर अहमद 0306-1623-793।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस

0: कई लेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटो से पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 03201800003।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385569।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश, रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आहिन।
2: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालाणी।
3: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल। 03003204372 02424601100।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न अदा।
2: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
4: मुझे दुकान जी बेट हरंदी?
5: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
4: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
2: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेरापुर।
5: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी।
6: 03013992836।
2: आई मोहम्मद उमेर गोरी। 03219155724।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

चंड ते महफिल सजायो, दिल जी ॻाल्हि करणी आ, रही न दूर तड़पायो, दिल जी ॻाल्हि करणी आ, रही दुनिया में नाहे सा मोहब्बत ऐं सचाई, लबन ते मुर्खा विखरियल दिलन में आ बे आई, चाहत जा चंग वजायो, दिल जी ॻाल्हि करणी आ, चंड ते महफिल सजायो, दिल जी ॻाल्हि करणी आ। कराची का कश्मीर कींझर का कारूंझर ताई सुहिणी सिंधवासिन के आबिद चौहान जो सिक भरियो सलाम कबूल पवे। प्रोग्राम दिल जी गाल सा गड आऊं आया आबिद चौहान, आवां बुधी रहा हो जीए एफएम नेटवर्क।

प्रोग्राम दिल जी गाल ऐं जीए एफएम नेटवर्क जे सभिनी ॿुधंदड़न मानायतन महबूबन दिलरुबा दोस्तन पिरी प्यारन खे वेलकम भलीकार खुशामदीद जी आयानू वशात खे ऐं पखैर रागले।

बहारनि ॿुधायो न चारनि ॿुधायो बहारनि ॿुधायो न चारनि ॿुधायो अव्हां जो पतो अश्क बारनि ॿुधायो बहारनि ॿुधायो न चारनि ॿुधायो अव्हां जो पतो अश्क बारनि ॿुधायो पखियुनि जे परनि में वॾा दर्द आहिनि पखियुनि जे परनि में वॾा दर्द आहिनि संझा जो सिंधूअ जे किनारनि ॿुधायो मिठीअ जे शहर में मुसाफ़िर मरनि था मिठीअ जे शहर में मुसाफ़िर मरनि था अवेला न अचिजो नज़ारनि ॿुधायो चपन सां अव्हां कोन ओरी कहाणी समूरो किसो नेणकारनि ॿुधायो चपन सां अव्हां कोन ओरी कहाणी समूरो किसो नेणकारनि ॿुधायो अञा कंहिं बि ज़ुल्फ़नि खे नाहे पखेड़ियो अञा कंहिं बि ज़ुल्फ़नि खे नाहे पखेड़ियो

अञा कंहिं बि ज़ुल्फ़नि खे नाहे पखेड़ियो मोहिन जे दड़े खे धनारनि ॿुधायो अचनि था इझो ग़म अचनि था अचनि था अचनि था इझो ग़म अचनि था अखियुनि खे इहो इंतज़ारनि ॿुधायो इहो छेर छमको वञे थो बखन ॾे इहो छेर छमको वञे थो बखन ॾे ॾखण खे वणनि जे इशारनि ॿुधायो पुछियोसीं हवा जा ज़ख़्म केरु सिबंदो पुछियोसीं हवा जा ज़ख़्म केरु सिबंदो तुंहिंजो जाम शोरा सितारनि ॿुधायो बहारनि ॿुधायो नचारनि ॿुधायो अव्हां जो पतो अश्कबारनि ॿुधायो

दोस्तों प्रोग्राम में शामिल कंदा से राहत फतेह अली खान जी खूबसूरत आवाज में ही प्यार भरियो गीत किसी रोज मिलो गमे शाम ढले अचो तो गद जी इंजॉय क्यों इन गीत के

दोस्तों वक्त थियो आहे हिकिड़ी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो। ब्रेक खां पोइ वापसि वरंदासीं। ॿुधंदा रहो GFM नेटवर्क।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569। मेहरापुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुशखबरी, पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज़ जे खर्च खां बचो। A1 ऑटोज पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहरापुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक खरीद करियो। स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे। उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 ऑटोज थरी रोड मेहरापुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक रिक्शा, पेट्रोल लोडर, रक्षा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि। राब्ते लाइ मलिक खुशी मोहम्मद 03023295894 ऐं फेस मोहम्मद पहियार 03003118956। A1 ऑटोस मेहरापुर, नालो आहे एतमाद जो।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप, कोटली कबीर रोड मेहरापुर, कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन एम ए DHMS सिंध, RHMP इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह, हर अरबा, खमीस, जुमे, छंछर, आचर ऐं सूम।

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निचो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569 खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
2: अस्सलाम वालेकुम अदा
3: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
3: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
4: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नजगर डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

0: It's 9:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: Har bar ja nandda kadam ik nayi duniya da vadhan ta par polio inan kadman ke roke bhi sage to. इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ए पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जब कतरा जरूर प्यारियो छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था ए इनन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी
3: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है अब जिम्मेदारी हम सब की है हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी सुबह

0: ਵੈਲਕਮ ਭਲੀ ਕਾਰ ਪਿਆਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹਾਲ रेल निकती थी वे दिल जो गाल कॉलर आज लाइन से अस्सलाम वालेकुम केर साईं किथा खां
1: साईं वालेकुम सलाम साईं गुलाम सरवर जरदारी गुलाम मोरे खां साईं
0: गुलाम सरवर जरदारी मोरो खां
1: हां साईं
0: हां वेलकम भली कार प्यारा केड़ा हालन
1: साईं दुआ खैर अला जा संता कुछ कर साईं
0: इवन अमा एडो तकड़ो तकड़ो पे गलायो गाड़ी वणणो आहे रेल निकती थी वने
1: जी साईं
0: माजो काडे तकड़ आए रो जल्दी जल्दी में गलायो पिया तकड़ नाए
1: नाए
0: प्यारा सा गलायो न थरो प्यार मां मुराद ये ना है आवाज एडी हल्की कयो जो बुधण में ना अचे
1: जी बिल्कुल सही
0: गालायो गालायो छा था चवण चाहे ओ पंजे दिल जी गाल क्यों का
1: तां दिल जी गाल या ता अमन हो जे कुछ जड़ो घटो ना हो जे कुर्ब मोहब्बत ता रहूं
0: हां दिल जी गाल ये है त हो जे अमन जड़ो घटो भी ना हो जे
1: सारा जा तनु
0: जी सही
1: सार सही ताल बुदा ना सही
0: बिस्मिल्लाह इरशाद
1: आ गए मिलना है तो मिल जाओ दुनिया के इस चमन में फिर मिलने का क्या फायदा जब लाश हो कन
0: अबो मार छोड़े सफा कप छोड़े
1: हां
0: बस खत्म ही आगते आ है को सिलसिलो
1: खत्म
0: थी हो ना आखरी हुई गाल जदे कफन जी गाल पोती तो पोइन का पुछा रहे दफनाणो
1: जी सही बिल्कुल
0: अल्लाह वांगे हयाती दे वडी जमार दे सेहतमंद
1: वाली अल्लाह करे कुछ जो
0: मोहब्बत जो पैगाम दियो मायूसी जी गाल न कयो भा मरणो बिल्कुल एक नी आ है पर यो हां जो का तो मायूसी अजाई आ दोस्तन जा नाम शामिल करन चाही दो
1: हां सही नाला सही बोरो खान लाखो आए
0: जी
1: आज रामला विस्ते आए भराती की गा
0: जी
1: पठान कर रहा है उस्ताद मारम सही मशवरी आए
0: जी
1: सही गंद
0: बिल्कुल वडी मेहरबानी प्यारा इनन सजी अमा जी संगत के मोजा सलाम जन थैंक यू कुर्ब
1: थैंक वालेकुम सलाम
0: लखत अस्सलाम वालेकुम केर साईं केदा का
1: वालेकुम सलाम आबिद हुसैन यादी मदद
0: सखी पीर मौला अली मदद केर साईं केदा का
1: अदा हादी बस चाचर वाली वाला मदद
0: हादी बस चाचर केता
1: आली वाला घर जो
0: बता साईं साईं मुजो मुजो सखर शहर मुजो सजो पहजो आए हुआ तो सिंध सजी प्रिया जो पाछो है
1: अदा मुजा दिल भर पहवान साहब वडी मामा देखे तो मा सा तद पर दो मा सखन के सुनाणी दो दिल भर आला आबाद कंदई देखो आवाज भलो छोटी हर शहर के जो प्रोग्राम बिजी आए थी एक वीआईपी प्रोग्राम है वीआईपी प्रोग्राम आ पूरी चंद बुदेडी
0: लव यू सर वडी मेहरबानी लख लाइक केर गड पढ़ो हो के जो जिक्र पे क्यों
1: अब वाली मामा दो तो हां वाली मामा
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा
1: वो खैरा
0: दुआओं
1: करा
0: ए वन अल्लाह ऐसा नामा पैजा बुदायो
1: मुझी
0: दिल शामिल क्यों था प्लेलिस्ट में कुछ दोस्तन जा नाम शामिल करना चाहिए दो
1: वालेकुम
0: सलाम सखी पीर मौला कुर्ब साईं लव यू लख लाइक

0: ज़बरदस्त दिलचस्प ॻाल्हियूं थी रहियूं आहिनि, सो कचहरी कंदासीं अवां सां। अस्सलाम वालेकुम, केर साईं किथां खां? हलो हलो साईं, अवां जो आवाज़ु कोन पियो अचे। माज़रत खां आहियूं, आवाज़ कोन अचण जे सबबु ॻाल्हि ॿोल कोन थी सघंदी अवां सां। सो ॻाल्हियूं बि थींदियूं रहंदियूं ऐं अवां जी पसंदि जा ट्रैक बि शामिलु कबो आहे प्रोग्राम में। ऐं अवां खे ख़बर आहे त 10 वॻे बिल्कुलु हिकिड़ो न्यूज़ ब्रेक बि हूंदो आहे, कमर्शियल बि हूंदो आहे। सो इन 3 मिंटनि जे विच में असीं अवां जी फ़रमाइश, अवां जे हुकुम जी तामील कंदे जलाल चांडियो जी ख़ूबसूरत आवाज़ में मुंहिंजी दिलि अवां सां अड़ी आहे। अचो त गॾिजी इंजॉय कयूं हुन ट्रैक खे।
1: दिल वठ न दिलदार वठ, दिल बई जोड़ा वरदात उण तू वजी बजी आवारी घनेरी वात हाणे रूह दे रूह दे।

0: सुनेंगे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।
1: ईरान विचोबर में बदमाश बनर हो हाँ बदमाशी करे न सकंदो। ईरान सा मायतो करण जे दहशतगर्द रिजीम खराब वर्ताव जो मुजाहिरो करे रही आहे। खराब वर्ताव ईरान जे ताकतवर हुजण जी अलामत न पर कमजोर हुजण जी निशानी आहे। ईरानी मैशत तबाह थी चुकी आहे। महंगाई में भी 300% वाध थी वई आहे।
2: Pakistan and India, Armenia and Azerbaijan, and of course the war in Gaza, which as I stated previously includes the return of all hostages, both living and dead. Almost every one of these countries wrote me a letter of thank you. The Prime Minister of Pakistan, terrific man, said that Donald Trump was responsible for saving 30 million lives, and the president of Azerbaijan said President Trump in 6 months did a miracle. It was an absolute miracle that nobody thought could be done.
3: जनरल असेंबली जे इजलास के खिताब दौरान ट्रंप पारां हिकु भेरो ॿीहर पाक भारत जंग ख़तम करण जो ज़िक्र। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जी बि तारीफ़। डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त हू पाक भारत जंग समेत 8 जंगियूं ख़तम करायूं आहिनि। पाकिस्तान जे वज़ीर आज़म बि चयो त हू जंग ख़तम कराए लखे हयातियूं बचायूं।

0: वफाकी हुकूमत जो धरने वाले मामले से पीटीआई से गालू करने का इनकार। वफाकी वजीर तारण जो है पीटीआई वारन जी गालियन बाबत तारीख सुठी ना है, उनन से गालू करने जो को फायदो भी ना है। पिशावर में तकरीब का खिताब करते हैं मीडिया से गालाइंदे तारण चयो तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद में अच्छी अमन अमान की सूरत खराब करने की इजाजत न दिनी वेंदी। पीटीआई वारा होश ना कम वठन भी सूरत में अड़ा नतीजा सामू अची सकन था जो
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो जीए एफएम 94।